मीडियम वेव 326.73 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 जुलाई सन 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:55 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है 918 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में होंगे और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। सुबह के 6:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

अनुराधा पौडवाल के गाए इस शिव भक्ति गीत के बाद आइए सुने लखवीर सिंह लखा का गाया हुआ ये श्याम भजन।

ये भक्ति गीत आप वंदना कार्यक्रम में आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली पेशकश हरिहरण और साथियों के स्वर में।

0: या कहीं बाहर जाने से पहले थान पर धोक अवश्य मारता है। धोक मारने के लिए वह थान के आगे पलाथी मारकर शांत चित्त से बैठता है और अपने मन में उठने वाले विचारों को जानता है। यदि कोई अशुभ विचार मन में चल रहा हो तो इसे अपने इष्ट देव को समर्पित कर देता है। शुभ विचारों को भी साक्षी भाव से देखता है और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है कि आप जैसे सद्गुण मुझ में भी विराजे, मुझ में भी आए। मैं जहाँ भी जाऊँ और मुझसे जो भी कार्य हो वो अच्छे ही हों, अर्थात मुझे आपसे वो रोशनी मिले, वो रास्ता मिले, जिससे मैं बुरे कार्यों से बच सकूं। मेरा मन समता और विद्या में स्थित रहे। हे मेरे देव, आप ही मेरे सब कुछ हैं और मैं आपका हूं। इस तरह से अपने मन को निर्मल चित्त रखते हुए जो भी कार्य किया जाता है वह अपने आप ही सही ही होता है, गलत होने की संभावना न के बराबर रह जाती है। अपने आप सही रास्ते मिलते हैं, सही लोग मिलते हैं जो हमारी सच्चे दिल से मदद करते हैं। लंबे अनुभव से ऐसा जाना गया है कि जैसी हमारे चित्त की चेतना होती है, यानी जैसे हमारे मन में उठने वाले विचार होते हैं जो हमारे शरीर पर होने वाली संवेदनाओं से पैदा हुए होते हैं, जिनकी अपनी स्वयं की एक तरंग होती है, वो तरंग चारों तरफ के वातावरण में फैलती रहती है और यह तरंग अपने आप अपने स्वभाव वाली तरंगों से, यानी अपनी जैसी तरंग से समरस हो जाती है, उससे मिल जाती है। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके, अपने मन में दुर्भावना जगा करके कहीं किसी काम से जाता है तो उसका काम संपन्न नहीं होते देखा गया है। जब वह व्यक्ति सांझ को घर लौटता है तो वह असफलता, अशांति और व्याकुलता लिए हुए ही लौटता है और कहता है, घर से निकलते ही मैंने आज न जाने किसका मुंह देखा, आज कोई भी कार्य संपन्न नहीं हुआ। वह यह नहीं सोचता कि जब मैं घर से गया था तब अशांति, व्याकुलता और बेचैनी ही तो लेकर के गया था और वही तो लेकर के आया हूँ। इसमें किसी परमात्मा, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थिति का क्या दोष है? हम वही पाते हैं जो हम होते हैं। कुदरत और प्रकृति का बंधा बंधाया नियम है जिसे कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। यदि हमें सुख शांति व समृद्धि चाहिए तो इस धोख को कर्मकांड न बना करके इसे विधिवत करना ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम भागते हुए से थान पर गए, तिलक निकाला और भाग गए। यह कर्मकांड है जो कभी भी लाभ नहीं दे सकता। धोक जब लाभ नहीं देगी तो लोग इसे अंधविश्वास मान करके छोड़ भी देंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि थोड़ी देर यानी 10-15 मिनट बैठ करके विधिवत धोक मारी जाए ताकि चित्त की तरंगे शुद्ध हों, जिससे शुद्ध चित्त वाले लोगों से हमारा मिलन हो और धोक का लाभ मिल सके।
1: अभी आप आज का चिंतन सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। प्रातः के ठीक 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर खेती नमस्ते कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय रहेगा पशु आहार में नमक का महत्व। दिन में 12:50 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी मछली पालन के लाभ और तरीकों के बारे में। शाम 7 चौपाल कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे पशु धन के लिए

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:45 हुए हैं। आइए सुने आज का चिंतन।
1: हमारे ऋषि मुनियों ने पारिवारिक सुख शांति के लिए समाज को एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी है, जिसका आधार वैज्ञानिक है। प्रत्येक घर में एक छोटा सा थान या मंदिर बना होता है। घर का प्रत्येक सदस्य अपना दैनिक काम शुरू करने

मीथेन घातक, सब्जियों की शुद्धता बनाए रखें, भोजन को पौष्टिक कैसे बनाएं, साथ ही होंगे गीत भजन और बाजार भाव। सुबह 9:10 पर मरुमंगल कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे रिचपाल डाढ़ी। सुनेगा मानस गान की कड़ी संख्या 317 7:20 पर। सुबह 7:30 पर सुप्रभात में आज के विषय रहेंगे राष्ट्र प्रेम, सफलता के मूल मंत्र और सेवा भाव। 8:45 पर समाचार तरंग हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। हमारे आज के फिल्म संगीत के प्रोग्राम इस तरह से होंगे। सुबह 9:30 पर सुबह 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। आज हम आपको सुनाएंगे अमजद खान पर फिल्माए गए नगमे। गीत बहार फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम होगा दिन में 11 जिसमें आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कुछ और नगमे आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर, शाम 7:45 पर। कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से रात 8:15 पर। महिला जगत कार्यक्रम में 1:05 पर आज चर्चा के विषय रहेंगे घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता, युवाओं में बढ़ रहा वायरल होने का जुनून, रक्तदान भादान और जानेंगे कुछ ब्यूटी टिप्स के बारे में। युवानी कार्यक्रम आज नौजवान साथियों के लिए शाम 5 चर्चा के विषय रहेंगे शिक्षा में तकनीक की भूमिका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और युवा नेतृत्व क्षमता और युवाओं में नैतिक मूल्यों का महत्व। रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक और 10 संसद में प्रश्नकाल के संपादित अंश, ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी का ये सूरतगढ़ चैनल है। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर 918 किलोहर्ट्ज़। एफएम पर यदि आप कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो फ्रिक्वेंसी है 100.1 मेगाहर्ट्ज़। साथ ही आप हमारे कार्यक्रम डीआरएम चैनल पर भी सुन सकते हैं, साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पे। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में होंगे।

0: चेन्नई इत्यस्य पूर्वनिदेशकः वी कामकोटिः, पूर्वशिक्षासचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्तिशृङ्खलाप्रबन्धनविशेषज्ञः अमितलालमीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्यश्रव्यसन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भाविपरीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षासम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोरप्रावधानयुक्तं नूतनविधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीयमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गतशुक्रवासरे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गे परीक्षासु च अनुचित साधनप्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतरदण्डविधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूपविधेयकम् अनुमोदितम्। केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लादजोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारम् अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमानमन्त्रालयैः सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षामन्त्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वं कारगिल विजय दिवस समारोहं सम्बोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्धविराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपतिः ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानाम् 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संडिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई ने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतना उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi

0: अमीनो एसिड और शर्करा का अवशोषण को भी काम करे, और इनके अलावा पशुओं ने नमक अपा आहार का माध्यम से या फिर दूसरा खाद्य पदार्थ का माध्यम से खुआवा, और शरीर में होने वालों जो को चयापचन है जबकि क्रिया है, पहले को नमक पशुओं को आहार खाना में चाव भी उत्पन्न करे, क्योंकि नमक से लार बढ़ने की जिसकी सहायता पशुओं ने मिले और लार से आहार का पचना गवा सहायक हुए। तो इस वास्ते आप मोटा तौर पर केस कहाँ का आपने पशुओं जो को आहार है बिंग लिए नमक की बहुत ज़्यादा जरूरत हो, और अपने टेम सर पशुओं ने नमक है वो देना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ जगह पशु डिख रहे है या फिर कपड़ा लत्ता है या फिर दूसरे जगह कचरा है वो खाना शुरू कर देवे, और अपने इस बात को पता लग जाना चाहिए कि पशुओं ने अब नमक की जरूरत है, और ज़्यादा टाइम तक अगर पशुओं ने आहार गमा नमक ना मिले तो पशु की वह कि लकड़ी है या फिर खुद को पेशाब है खाणो पीणो शुरू कर दे। तो अपना जगह वैज्ञानिक लोग अभी आप बात बताओ कि जगह पशुओं ने आप नमक ना खिलावा वहाँ पशुओं की जो भूख है वह 2-3 सप्ताह बाद गमा कम हो जाए। नमक की कमी से पशु आहार की जो प्रोटीन और ऊर्जा को जो को प्रयोग है वो ठीक से कोनी हुए नहीं, जगह की वजह से पशुओं का जो शारीरिक भार है वो भी कम हो जाए, और दूध देने वाला जगह पशु है वहाँ दूध उत्पादन में भी। बात करें आप भाई लोगों पशुओं ने आप नमक के तरीका से देश का और कितनी मात्रा में देश का, तो जो दूध ना देने वाला जगह पशु है बन आप जो सोडियम की मात्रा है वह 1.67 ग्राम लेके 100 किलोग्राम तक आप भार वाला पशु ने देश का, ये दूध देने वाला जगह पशु है वहाँ खतरा अपन ने 101.4 ग्राम जो को नमक है, और पशु को अगर भार 1 क्विंटल का लगभग है तो आप अभी ने 101.4 ग्राम जो को नमक है वो अपने देना चाहिए है। और जगह पशुओं का वजन में बढ़ोतरी होने लग रही है तो बंगे लिए आपने 1.56 ग्राम यानी कि 150 ग्राम जो को नमक है वो यानी कि यहाँ मांस कहाँ का रोज अगर आपने 1 किलोग्राम भार बढ़ यानी 150 ग्राम जो को नमक है वो 1 किलोग्राम रोज भार बदन वाला जगह पशु है बन आपने देना चाहिए, यानी जगह को भार 150 लेगे 600 किलोग्राम हुआ है तो बन आप 150 ग्राम का लगभग नमक है वो देना चाहिए। अगर गर्भावस्था में पशु है तो बंग लिया आपने 1.5 ग्राम जो को नमक है रोजीना देना है, और जगह को 190 लेगे 270 दिन का गर्भाधान की जो की अवस्था है बा खतरा आपने तो नमक जो को पर्याप्त हुआ है। और जब तक वातावरण का तापमान की बात है तो 25 डिग्री लेगे 30 डिग्री तय है तो बी टाइम आपने 11 ग्राम जो को नमक है वो 100 किलोग्राम भार वाला पशु ने अपने देना है। अगर तापक्रम अपने आसपास को 30 डिग्री के लगभग है तो 44 ग्राम जो को नमक है वो 100 किलोग्राम का भार का पशु ने अपने देना चाहिए। और इनके अलावा जो अपने कुकड़ पालन भाई लोग कर रखे है तो कुकड़ है मुर्गी पालन है बांगे लिए भी आहार गा पर्याप्त नमक होने की बहुत ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि पर्याप्त नमक अगर टाइम पर आप ना देवा तो बंग की कमी चुकी हुए कि वृद्धि दर रुक जाए और अंडा देने की क्षमता है मुर्गियों गा वह कम हो जाए। और इनके अलावा भाई लोगों अगर कुकड़ पालन का माँ आहार का माँ पा नमक की जी मात्रा है वह पर्याप्त रूप से ना रखा, जगह की वजह से हो जाए कि कुकड़ है मुर्गा है वे एक दूसरे का पंख नोचना शुरू कर देवे, तो इस वास्ते अपने समझाना चाहिए कि अने नमक की जरूरत है। और मोटा तौर पर माना तो एक एक युवा पशु गाय है या फिर भैंस है बिना पा एक दिन का माँ साधारणतः लगभग 13 ग्राम साधारण नमक की जरूरत हो, और वैज्ञानिक आ बात बताओ है कि 500 किलोग्राम प्रति ब्यांत दूध देने वाली जी गाय है या भैंस है बिना लगभग 30 ग्राम नमक है वो रोजाना अपन ने देना चाहिए। इनके अलावा गोवंश है भैंस है बकरियां है या फिर भेड़ है बंग दाणा का माँ नमक की जी मात्रा है 1% तक अपा मिला सका, और कुकड़ का दाणा का माँ 0.5% की दर्शू नमक अपा मिला सका। तो इन तरिया आप पशुओं का आहार गमा मुर्गी पालन गमा नमक है जो को वो आहार गमा देना चाहिए ताकि अपना जगह पशु है वे बढ़िया गुजारो कर ले और अच्छा दूध उत्पादन भी आपने मिलते रहे, और नमक की वजह से भाई लोगों के एक पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया बने रहे। तो आप आता हूँ ध्यान रखना ऐसा प्रणाम मैं चालू राम राम सा राम राम।
1: पशु आहार में नमक का महत्व खेतिहरा वास्ते कार्यक्रम में अभी किसान भाई इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। आइए सुनते हैं एक राजस्थानी लोक भजन।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। प्रातः के ठीक 7:20 हुए हैं। आइए सुने रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 317। लंका कांड की आज की इस कड़ी को स्वर दिया है सुरेश वाडकर के साथ रविंद्र साठे ने।

लंका की सुरक्षा हेतु चार विशाल द्वार हैं। अतः सुग्रीव, जांबवान, विभीषण आदि से मंत्रणा करके वानर सेना के चार दल बनाए गए। सैन्य दल श्री राम के चरणों में सिर नवाकर पर्वत शिखरों जैसे भीमकाय अस्त्र शस्त्र लेकर चारों दिशाओं से लंका पर चढ़ दौड़ते हैं। लंका में कोहराम मच जाता है, किंतु मदांध रावण ये समाचार सुनकर हंसता है। इस आक्रमण को वानरों की ढिटाई बताकर राक्षसों को आदेश देता है कि विधाता ने घर बैठे वानरों के रूप में जो भोजन भेजा है वे उसका उपभोग करें। राक्षस सेना के योद्धा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वानर सेना पर टूट पड़ते हैं। परकोटे पर वे बादलों की तरह छा जाते हैं। वातावरण में नफीरी, भेरी और रणवाद्यों का निनाद गूंज उठता है।

अभी आप मानस गान की कड़ी संख्या 317 सुन रहे थे। गायक स्वर था रविंद्र साठे के साथ सुरेश वाडकर का। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। 7:30 हुए हैं। कार्यक्रम सुने सुप्रभात।

सभी सुनने वालों को आज नमस्कार संजय वैद्य की ओर से। मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य जीवन हमें दूसरों की सेवा के लिए मिला है। हालांकि इस

लाखों तरह के जीव जंतु हैं, लेकिन मानव को उनमें सबसे बुद्धिमान माना गया है। और सेवा का जो अवसर है वो मनुष्य को ही प्रदान किया गया है। हालांकि मानव ने अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से ऐसे जंतुओं को अपना गुलाम बना लिया है जो मानव की सेवा करते हैं, लेकिन वो सेवा उनके दबाव में की जाती है। हाथी मनुष्य को अपनी सेवा देता है तो अपने अंकुश के बल पर, किसी गधे को या किसी गाय को, घोड़े को हांका जाता है तो मनुष्य अपनी ताकत के बल पर हांकता है और तब वो मनुष्य की सेवा करते हैं। लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने दूसरों की सेवा के लिए बनाया है और कहते हैं कि सेवा करने से मेवा मिलता है, यानी आपका जो दूसरा लोक है वो भी इस जीवन के साथ साथ संवर जाता है। निस्वार्थ सेवा से उसका पुण्य कभी ना कभी तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उस पुण्य के साथ साथ मनुष्य को किसी दुखी प्राणी की सेवा करके जो आत्मिक शांति और संतोष मिलता है उसे ना तो किसी मूल्य में आंका जा सकता है और ना ही उसे शब्दों में बयान किया जा सकता है। दूसरों की सेवा करने से आत्मसंतुष्टि के साथ साथ उसके अहंकार का विनाश होता है। व्यक्ति मैं की भावना से निकलकर मेरा और अपना भावना की ओर प्रवेश कर जाता है। प्राणी मात्र की सेवा करके एक व्यक्ति में सद्गुणों का निर्माण होता है, उसमें सेवा के संस्कार पैदा होते हैं और वही संस्कार वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी सौंप के जाता है। सेवा भाव एक ऐसा गुण है जो मनुष्य की आत्मा में निहित है, वो उसकी आत्मा को निर्मल करता है। और जब बिना किसी स्वार्थ के साथ हम दूसरों के काम आते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं, तो भाईचारे की भावना का विकास होता है। और जिस थ्योरी को लेकर इस समाज की, मानव समाज की रचना की गई थी, उसका जो मूल बिंदु है उसका भावार्थ भी यही है कि मनुष्य अपने कार्यों के साथ साथ दूसरों की सेवा का भी कार्य करे, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। यदि एक सरकारी अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करता है, दूसरों की सेवा के लिए जो दायित्व उसे सौंपे गए हैं, तो वो भी एक सच्ची सेवा है, चाहे उसे सरकार के द्वारा उसका प्रतिफल भी क्यों न दिया जा रहा हो। इसी तरह से अनेक समाज सेवी संस्थाएं भी काम करती हैं, जो परोपकार के कार्य करती हैं, दूसरों की सेवा के लिए शिविर लगाती हैं और पीड़ित मानवता की मदद के लिए वो सदैव तैयार रहती हैं। मनुष्य समाज में सेवा का एक बड़ा अवसर हर कदम पर हमारे सामने खड़ा रहता है। ये हम पर है कि हम उस अवसर का किस तरह से लाभ उठाते हैं, और जो भी ईश्वर ने हमें सामर्थ्य सौंपा है, शरीर में ताकत दी है, दिमाग में बुद्धि दी है, या हमें दूसरों की सेवा के लिए जो संपत्ति दी है उसका सदुपयोग करके हम जरूरतमंद के काम आ सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो दूसरों के लिए सेवा करता है, परोपकार करता है, ईश्वर उसकी मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। जो हम दूसरों में बांटते हैं वो 100 गुना होकर हमें कभी न कभी तो वापस मिलता ही है।

दोस्तों, जीते तो सभी हैं और सभी अपने लिए ही जीते हैं, चाहे वो मनुष्य है, कोई जीव है, जंतु है। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है, उसे समाज में एक उत्कृष्ट स्थान मिलता है। और यदि वो जीवन देश के लिए जिया जाए, अपनी जान की बाजी देश की आज़ादी के लिए, उसकी रक्षा के लिए लगा दी जाए, तो फिर उससे बड़ा देश प्रेम बड़ा और क्या हो सकता है।

जीवन अर्पित कर देता है उसे समाज में एक उत्कृष्ट स्थान मिलता है। और यदि वो जीवन देश के लिए जिया जाए, अपनी जान की बाजी देश की आज़ादी के लिए, उसकी रक्षा के लिए लगा दी जाए, तो फिर उससे बड़ा देश प्रेम बड़ा और क्या हो सकता है। मिथिली शरणगुप्त ने लिखा है, वे हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है। अभी हाल ही में हमने विजय दिवस मनाया, यानी कारगिल की विजय का उत्सव हमने मनाया, और हम जानते हैं कि इस कारगिल के युद्ध में भी कितने ही देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की सीमाओं की रक्षा की थी। देश के प्रति प्रेम हम सबका एक दायित्व भी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य भी है। कहते हैं ना कि अपने कुल की रक्षा के लिए अपने आप को निछावर कर दें, समाज की रक्षा के लिए अपने कुल को निछावर कर दें, लेकिन यदि देश पर संकट आता है तो उसके लिए समाज को, जान पांत को पीछे छोड़कर देश के विकास के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। एक राष्ट्र का निर्माण उसकी सीमाओं से नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की देशभक्ति से, उसकी सांस्कृतिक विरासत से भी होता है। देश प्रेम की भावना एक हर निवासी में होनी आवश्यक है। देश प्रेम को किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। हर व्यक्ति अपने कार्यों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करता है तो उसका देश प्रेम है। हर नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार का सहयोग करता है, सरकार के चयन में अपनी भूमिका निभाता है। जाति प्रथा, देश प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत, ये जो कुरीतियां हैं, इनसे बचकर दूसरों को इनके प्रति सजग करके भी हम अपने देश प्रेम का निर्माण कर सकते हैं। हमारे सामने जो समस्याएं हैं, चाहे अशिक्षा की हो, बेरोजगारी की हो, निर्धनता की हो, सामाजिक कुरीतियों की हो, भ्रष्टाचार की हो, इनके विरुद्ध एक लड़ाई छेड़कर, एक आंदोलन करके भी हम अपने देश सेवा का परिचय दे सकते हैं। राष्ट्र का हर व्यक्ति, चाहे वो महिला है, पुरुष है, बच्चा है, वृद्ध है, किसान है, मजदूर है, शिक्षक है, कर्मचारी है, चिकित्सक है, यानी किसी भी पेशे का व्यक्ति एक सीमाओं पर तैनात सैनिक से कम नहीं है। हर व्यक्ति के प्रति देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा देश है जो विश्वगुरु रहा है और जिसने हमेशा शांति का, अहिंसा का, भाईचारे का संदेश दुनिया को दिया है।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, कार्य को करने के प्रति लगन होनी चाहिए।

चाहिए, उसके लिए निरंतरता, दृढ़ संकल्प, समय का प्रबंधन और स्वयं पर अटूट विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। कड़ी मेहनत के साथ साथ आपको उस विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि यदि आप उस कार्य में असफल भी हो जाते हैं तो उस असफलता से ना घबराते हुए बार बार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यदि आपकी सोच सकारात्मक है, आप में आत्मविश्वास है, धैर्य के साथ अनुशासन है, ऐसा कोई कारण नहीं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। सफलता का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसे नकारात्मक पहलू भी आते हैं जिससे घबरा कर मनुष्य प्रयास करना छोड़ देता है, या दूसरों की बातों में आकर उस लक्ष्य की प्राप्ति से विमुख हो जाता है, और तभी तो उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। लोग क्या कहते हैं, दुनिया यदि किसी भी तरह से आपके आत्मविश्वास को डिगाने का प्रयास करती है तो उन बातों पर कभी भी ध्यान ना दें। एक छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी। एक पहाड़ी पर कुछ मेंढक चल रहे थे। उन्हें यह कहा गया था कि कुछ दिनों बाद इस भूमि पर सूखा पड़ने वाला है, और पहाड़ी के जो दूसरी पार है वहाँ भोजन के, जल के अटूट भंडार हैं। तो सभी मेंढक उस पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। रास्ता दुर्गम था। लोग कहते थे कि इस पहाड़ी पर चढ़ना नामुमकिन है। कई मेंढकों ने प्रयास किया, और जो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति थे, जो मेंढक थे, वो पीछे से चिल्लाते थे कि ये नहीं होगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, वापिस आ जाओ, मत चढ़ो। लेकिन एक युवा मेंढक लगातार किसी की मेंढक की बात सुने बिना चढ़ता रहा, और आखिर उसने उस पहाड़ी को पार कर लिया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसने किसी भी नकारात्मक आवाज को नहीं सुना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम विफल हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। इन सभी बातों को बिना सुने वो अपने लक्ष्य की ओर चलता रहा, और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अपनी मंजिल को प्राप्त किया। इसलिए कहते हैं कि यदि दृढ़ लगन है, आत्मविश्वास है, लक्ष्य के प्रति यदि आपका विश्वास है, तो निस्संदेह सफलता आपके कदम चूमती है। यही सफलता का एक मूल मंत्र है।

इस गीत के साथ ही आज का सुप्रभात कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, उसके बाद अंग्रेजी में और उर्दू में समाचार होंगे और 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम समाचार तरंग।

0: रहे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों की

0: साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों की गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली

0: और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
1: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
0: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024.

0: हकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल आज कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तहान में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमे को मरकजी काबीना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मुसवदे को मंजूरी दी थी, ताकि पेपर लीक और इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्त तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट के सभी अरकान से अपील की है कि वो इम्तिहानात की इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि नौजवान नस्ल की आवाज़ सुनकर और तलबा के मुस्तकबिल के लिए वजीर आज़म मोदी की तरफ से किए गए तारीखी फैसले के बाद वो सभी अरकान पार्लियामेंट से अपील करते हैं कि वो आज बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। एक रिपोर्ट।
1: इस बिल में पेपर लीक के किसी भी केस से निपटने के लिए सख्त सजाओं पर मबनी शिकायतें शामिल की गई हैं। इस बिल में 7 अहम तरामीम की गई हैं, जिनका मकसद कानून लागू करने में खामियों को दूर करना, खसूसी अदालती निज़ाम कायम करना और फौजदारी मुकदमात में तेज़ी लाना है। इस बिल में तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए एक सख्त फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है, जिसका मकसद 2024 के फ्रेमवर्क में खातिरख्वाह बेहतरी लाना है। रियासती सरकारों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की इंतज़ामिया को, सेशन अदालतों को खुसूसी टास्क फोर्स अदालतों के तौर पर नामजद करने के अख्तियार दिए जाएंगे, जो मज़कूरा कानून के तहत जराइम के खिलाफ ख़ास तौर पर कानूनी कार्रवाई अंजाम देंगी। बिल की शिकों के मुताबिक खुसूसी टास्क फोर्स की अदालतें रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात की सुनवाई करेंगी, जिनके लिए लाजमी होगा कि वो फर्द जुर्म दाखिल किए जाने की तारीख से 3 माह के अंदर अंदर मुकदमे का फैसला सुनाए। न्यूज़ डेस्क से कौमुदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तहानात की इस्लाहात के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकणी की क़यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे, ताकि आइंदा इम्तिहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तिहानात का निज़ाम काबिल एतबार, शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये टास्क फोर्स साबिक IB डायरेक्टर तपन डीका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तिहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शिकों वाला एक नया बिल पेश करेगी। जनाब मोदी ने मुकाबला जाति इम्तिहानात की दयानतदारी और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के हुकूमत के अज़्म को भी उजागर किया।
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मजबूत बनाएं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से विकसित दरख्शां गांव पर प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। वजीर आजम ने मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क की तामीर में नौजवानों के बढ़ते हुए रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि जब नौजवान समाज की निचली सतह पर हकायक से वाबस्ता होते हैं, तो सबकी शमूलियत वाली तरक्की की जानिब भारत के सफर को मुस्तहकम बनाते हैं।
3: विकसित वाइब्रेंट विलेज की ये यात्रा सबको जोड़ने और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है, और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा, उतना ही वो भारत को सरलता

0: से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
1: वजीर आजम ने विकसित दरक्षा गांव प्रोग्राम के बारे में कहा कि ये कदम नौजवानों को तहरीक देने के लिए उठाया गया है ताकि वो मुल्क के सरहदी गांवों का दौरा करें, उन्हें समझें और इस सिलसिले में सरगर्म हों। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में नौजवानों ने जबरदस्त जोश व खरोश जाहिर किया और तकरीबन 3 लाख नौजवानों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिनमें 400 से ज्यादा नौजवानों को मुंतखब किया गया है।
0: विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है। विकसित भारत के निर्माण की यात्रा लगातार चल रही है और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज साबिक सदर जमहूरिया और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक दूरंदेश और रोशन ख्याल शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने भारत को एक तरक्की याफ्ता, खुद कफील और मजबूत भारत बनाने का ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि मुल्क की टेक्नोलॉजी से मिसाइल तैयार करने तक और भारत के खलाई प्रोग्रामों को नई बुलंदियों तक ले जाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की खिदमात को भारतीय साइंस की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। कौम आज साबिक सदर जमहूरिया और नामवर साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। उन्होंने भारत के खलाई और मिसाइल के तरक्याती प्रोग्रामों में एक कलीदी रोल अदा किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। उनका 2015 में आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर कलाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के खलाई और मिसाइल प्रोग्राम का मेमार बताया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के यौम तासीस पर सभी फौजी एहलकारों, अफसरों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि CRPF मुल्क को बाइख्तियार बनाने और उसकी सलामती में मुसलसल सरगर्म अमल है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन हमलों का सिलसिला रोके रखा, जिससे तकरीबन 2 हफ्ते से जारी फौजी कार्रवाई के बाद एक अबूरी जंगबंदी के बारे में ताज़ा मुज़ाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप सिफारती कोशिशों का मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हालिया हफ्तों में हर सतह पर बातचीत में सरगर्म रहे हैं। ईरानी फौज के एक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरान से खित्ते में जवाबी हमले रोक दिए हैं और जब से अमेरिका ने अपनी कार्रवाई बंद की है पिछली 2 रातों से कोई हमला नहीं किया गया है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में भी आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, गुजरात खित्ते, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, पंजाब, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम का इम्कान है। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को मुल्क के लिए सोने का पहला तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग जुमरे में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेटलिफ्टर ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वेटलिफ्टिंग में भारत ने चांदी के भी मजीद 2 तमगे हासिल किए हैं। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि प्रीति पवार खवातीन के 54 किलोग्राम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों के क्रिकेट में कल हरारे में तीसरे और आखिरी टी20 बैनल

अभी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत की तरफ से जीत के लिए 193 रन का निशाना रखा गया था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 157 रन बना सकी। इससे पहले भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम, हिफाजती इकदाम और अवामी बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा सेहत आम्मा के माहिर और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर कंट्रोल के कौमी मरकज के साथ डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय धारीवाल और एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 0112342100 और 0112331444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289 0940 44

0: मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 0112342100 और 0112331444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #askEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये दी खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने इम्तिहान में इस्लाहात पर टास्क फोर्स कायम करने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इम्तिहानी इस्लाहात के लिए आला सतही कमेटी के क्याम का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, नंदन नीलकनी कमेटी की सरबराही करेंगे, हुकूमत तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल कोशां। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर वज़ीर आज़म के बयान की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, खलाई शोबे में निजी शराकत दारों का मुस्बत नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, ट्रंप का अमरीकी फ़ौज को ईरान पर जारी हमले रोकने का हुक्म, दो हफ्तों से जारी जंग थमा, ईरान ने भी हमले रोके। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, प्रहलाद जोशी ने वजारत तालीम का चार्ज संभाला, मल्लाह बोहिर असवद इलाके में काम करने से पहले खसूसी एहतियात बरतें, वजारत खारजा का बयान। गुजरात महाराष्ट्र और उड़ीसा में बारिश का रेड अलर्ट।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर, हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकानी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारत की माया नाज वेटलिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। इसी के साथ ये खबर।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल है, 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे समाचार तरंग।
3: मैं हूँ आपके साथ सालिहा, स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन। क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आप सुन रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग।

0: श्रोताओं, मानसून का मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडक तो लेकर आता ही है, लेकिन इसी मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार, दस्त और पानी जनित कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और इसी पर बातचीत और हमें और ज्यादा जानकारी देने के लिए, साथ ही आमजन को जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रवीण असवाल जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि मानसून के दौरान कौन कौन सी बीमारियां जो है, कहते हैं कि ये बहुत बीमारियों का मौसम है, लेकिन खास तौर पर कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं?
1: मानसून एक तापमान में परिवर्तन का समय भी है और खास बात यह है कि मानसून में मॉइस्चर और टेम्परेचर की वजह से कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस का बीमारियों का होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जनरली हम जानते हैं कि सर्दियों में वायरल डिजीजें ज्यादा हो जाती हैं और गर्मियों में बैक्टीरियल डिजीज ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन मानसून के इस समय में कई बार हमें दोनों तरह की बीमारियां देखने को मिलती है और इसलिए हमें विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ती है।
0: सर, डेंगू और मलेरिया की बात करें तो ऐसा होता है कि हर साल ऐसा लगता है जैसे मामलों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, तो एक आम आदमी को इनसे बचाव के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
1: डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं और जैसा कि हमने बात किया, मानसून के दौरान जगह जगह जो पानी का स्रोत बन जाते हैं उसमें मच्छर ब्रीड करता है, यानी उसका प्रजनन होता है, मच्छरों की संख्या

0: पड़ती है। इसलिए मानसून से पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि मच्छर की संख्या को कम किया जाए, उसको लार्वा को खत्म किया जाए ताकि मच्छर ज्यादा नहीं बन सके। अब ये जो मानसून के दौरान मच्छरों की संख्या ज्यादा हो जाती है और संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उसमें मलेरिया डेंगू होने की संभावना रहती है। हर साल हमारे यहाँ मलेरिया डेंगू में कमी आ रही है। हमारे पास जांच सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा होने के कारण हम छोटे छोटे से गांव कस्बे ढाणी में भी रोगियों की पहचान कर उनको समुचित उपचार दिलाने में लगातार प्रयत्नशील हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो अभी आपने बताया कि एंटी लार्वा गतिविधियों के बारे में कि मच्छरों की बढ़ोतरी को रोका जाए क्योंकि इससे आमतौर पर ये रोग होते हैं, लेकिन अगर हम सांस की बीमारियों की बात करें, श्वसन रोगों की, तो क्या इनकी संभावना भी इस मौसम में ज्यादा रहती है?
0: ऐसा मैंने बताया, आर्द्रता और तापमान में कमी के कारण कुछ बैक्टीरिया और वायरस के रोग ज्यादा प्रोलिफरेट होते हैं। हमारे देश में और प्रदेश में भी जैसा कि हम जानते हैं स्वाइन फ्लू या मिक्स वायरस या कोविड का केसेस हमारे यहाँ रिपोर्ट हुए थे। अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें श्वसन रोगों विशेषकर स्वाइन फ्लू कोविड के लक्षण वाले खांसी जुकाम जिन्हें हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, खांसी जुकाम बुखार बदनदर्द सिरदर्द ऐसा लक्षण हो और सांस से संबंधित कोई परेशानी हो तो चिकित्सक से सलाह इन रोगों के लिए भी लिया जाना आवश्यक।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि मच्छरों से होने वाली बीमारियों के अलावा, इसके अलावा पानी से भी इन दिनों काफी इन्फेक्शन बढ़ जाता है, खाने पीने की चीजों में भी किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए?
0: मानसून के दौरान जो श्वसन रोग हैं, जल जनित रोग हैं, जल दूषित होने की संभावना की वजह से उसमें सामान्य तौर पर उल्टी, दस्त, पीलिया या जिसे हम हेपेटाइटिस ए और ई बोलते हैं जो जल जनित रोगों से फैलते हैं, या हैजा, कोलरा, इनकी संभावना रहती है। इसलिए शुद्ध जल इस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: अक्सर ऐसा भी देखने में आता है डॉक्टर साहब कि जब मौसम बदलता है और सर्दी जुकाम या बुखार या ऐसी कोई चीज होती है तो लोग अपने आप ही दवाई लेना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये सुरक्षित है?
0: देखिए, ये आमजन के लिए समझने की और सावधानी की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें चिकित्सक की सलाह के बिना दवा नहीं लेनी चाहिए। कई बार इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे हमें लक्षण आते हैं तो एक आम धारणा होती है कि वो कुछ दिनों तक के लिए स्वयं ही उपचार करने की कोशिश करते हैं या फिर आसपास की किसी दवा की दुकान से लाके और इलाज करते हैं, लेकिन ये कई बार बड़ा गंभीर हो सकता है, इसलिए चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी है। ड्रग पॉलिसी जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कुछ दवाओं को तो शेड्यूल एक्स में भी डाला गया है, यानी वो तो काउंटर पर भी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी विशेष सावधानियों की जरूरत होती है। जैसे मान लो यदि किसी को डेंगू की संभावना है और वो ब्रूफेन लेते हैं तो उससे डेंगू में हालात बिगड़ने की संभावना रहती है, इसलिए जनरली में डेंगू में की संभावना में पैरासिटामोल ही दवा दी जाती है। तो ऐसे और भी तकलीफ हैं जिनमें स्वयं दवा लेना कई बार भारी हो सकता है, इसलिए चिकित्सक की सलाह से ही दवा लिया जाना उचित होता है और ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए इंतजाम भी हैं कि कुछ दवाइयां जो शेड्यूल एक्स में डाली हुई हैं वो काउंटर पर मिलती भी नहीं।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना कि सेल्फ मेडिकेशन से बचना है, अपने आप अपनी समझ से दवाई नहीं लेनी है, बल्कि आप ये क्या बताना चाहेंगे कि किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हमें हाई ग्रेड फीवर है और हमारे रोगों से मलेरिया डेंगू से के जो लक्षण हैं कि हाई ग्रेड फीवर आया या डेंगू में आंखों के पीछे दर्द होता है या बॉडी एक होता है या जॉइंट पेन है, ऐसे एक साथ लक्षण यदि तीव्र गति से आते हैं तो हमें तुरंत दिखाना चाहिए, और यदि हल्का बुखार आया है तो हमें घर पे कुछ सावधानी रहते हुए हम आराम से भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। ये जनरली देखने को मिला है किसी भी बीमारी में कि लोग बाग विलम्ब करते हैं और जब वो काफी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं तो उन्हें दवाइयां भी ज्यादा लेनी पड़ती है या उन्हें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है या आईवी ड्रिप लगाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि लक्षण हो तो चिकित्सक से संपर्क करें और प्रारंभिक जो जांच है वो कराएं ताकि आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़े या कोई और तरीका ड्रिप लगाना या एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़े।
1: सर, ये तो हुई एक सामान्य सी जानकारी। अगर हम विभाग के लिहाज से बात करें तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जो है इस मौसम में कौन कौन से खास अभियान चलाता है या क्या खास व्यवस्थाएं करता है?
0: जी हाँ, देखिए, जैसा कि आज हम इस माध्यम से जन सामान्य को मौसम बीमारियों के बचाव, उपचार, नियंत्रण के लिए जानकारी दे रहे हैं, इसी प्रकार और भी कई माध्यम हैं हमारे जिनके लिए जन सामान्य को हम जानकारी देते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है कि गांव-गांव में हमारी जो मेडिकल टीम है वो घर-घर जाकर संदेश भी देते हैं।

0: और यदि कोई बुखार का रोगी मिलता है तो उसकी मलेरिया जांच के लिए ब्लड स्लाइड भी लेते हैं। ये सब निशुल्क होता है। हम ये संदेश देते हैं कि किस प्रकार वो मच्छर जनित बीमारियों से बचें, यानी खुला पानी नहीं रहने दें जिसमें मच्छर ब्रीड करता है, प्रजनन करता है, मच्छर की संख्या बढ़ेगी। इसी प्रकार ऐसे वस्त्र पहने कि शरीर पूरा ढका रहे ताकि मच्छर के काटने की संभावना नहीं रहे। डेंगू का जो मच्छर है वो अक्सर दिन के समय काटता है, तो हमें दिन के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और हमारे घर के आसपास छत पर जो कुछ कबाड़ है, वहां एक चम्मच भी पानी पड़ा हुआ है तो मच्छर उसमें प्रजनन कर सकता है, मच्छरों की संख्या बढ़ सकती है। तो हमें मच्छर के प्रजनन को रोकना है, मच्छर के काटे जाने को रोकना है, और यदि कोई लक्षण हो तो तुरंत दिखाना है। इसी प्रकार यदि श्वसन रोग होता है तो हमें उसमें आराम करना है, हाइड्रेशन लेना है और चिकित्सक से सलाह करनी है, और चिकित्सक से सलाह के बाद ही दवा लेनी है। इसी प्रकार यदि जल जनित रोग हो तो शुद्ध जल का उपयोग करना है। शुद्ध जल का मतलब हुआ कि कांच के गिलास में वो आर पार दिखना चाहिए, उसको स्वादहीन होना चाहिए और गंधहीन होना चाहिए। और यदि जरा सी भी शंका हो तो हम किसी भी पानी को शुद्ध जल बना सकते हैं, 20 मिनट तक उसको उबाल कर ठंडा करके उसको पिए तो वो एक शुद्ध जल बन जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जो विभाग का दूर दराज की ढाणियों तक या गांवों तक जो नेटवर्क है वो किस तरह से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से सशक्त होता है?
0: विभाग में हर 1000 की आबादी पर आशा बहन जी उपलब्ध हैं, जो प्रतिदिन सर्वे करके और बीमार लोगों को आइडेंटिफाई चिन्हित करने की कोशिश करती हैं और उनको सेंटर पर, हायर सेंटर पर जांच या चिकित्सक सलाह के लिए रेफर करती हैं। उसके ऊपर ANM बहन जी होती हैं, वो एक सब सेंटर पर बैठती हैं, वो भी फील्ड सर्वे करती हैं, और यदि बुखार का कोई रोगी मिलता है तो आशा बहन जी भी ब्लड स्लाइड लेने का प्रयोजन है, वो लेके जांच करवा लेती हैं, और ORS जैसे दस्त रोग में ऐसा कुछ उपाय भी उनके द्वारा किया जाता है।
1: अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से बात करें, बच्चों की, महिलाओं की और खासतौर पर गर्भवती महिलाओं की या बुजुर्गों की, तो इस मौसम में उन्हें अपनी आयु वर्ग के हिसाब से क्या खास सावधानियां रखनी चाहिए?
0: इसे हम मेडिकल में वल्नरेबल ग्रुप यानी जोखिम भरा ग्रुप बोलते हैं। इस जोखिम ग्रुप में बच्चे, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध और जो पहले से बीमार हैं यानी कोमोरबिड हैं, ये विशेष जोखिम वाले वर्ग हैं, इन्हें विशेष सावधानी की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं गर्भवती महिलाओं का हम कितना समाज में भी हमारी प्रवृत्ति है, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार विभाग में भी उनके लिए अनेक कार्यक्रम संचालित हैं। तो ये जो वर्ग हैं इनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उन्हें भी संक्रामक रोग होने के चांसेज और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेज ज्यादा होते हैं, इसलिए इस वर्ग को विशेष सावधानी की जरूरत होती है।
1: क्या इसके लिए जांच जरूरी है? ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, आमतौर पर कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके लक्षण समान होते हैं, तो इसके लिए जांच करवाना ही जरूरी है? और ये जांच और इलाज की सुविधा एक आम आदमी को कहाँ कहाँ उपलब्ध है?
0: जांच की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क है, निःशुल्क दवा भी दी जाती है, लेकिन जांच कब करना है, जांच की आवश्यकता कब है, ये चिकित्सक का काम है, वो समझते हैं। और हमें ये भी समझना है कि इन्वेस्टिगेशन टेस्ट जो हम जांच करते हैं ये एक चिकित्सक के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता है। चिकित्सक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके लक्षण देखकर उसका एक जो निदान, डायग्नोसिस वो तय करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। वो उस बेसिस पर अपने सपोर्ट या और कुछ देखने के लिए जांच कराते हैं, लेकिन एक चिकित्सक के लिए जांच सब कुछ नहीं होता। पेशेंट को एग्जामिन करना और उसका जो ट्रीटमेंट वो प्रेस्क्राइब करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है।
1: इस मौसम में यानी मानसून में विभाग की ओर से क्या इन बीमारियों का प्रबंधन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं?
0: निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमने सभी जिलों में डायरेक्शन जारी की गई जो इस मौसम में मच्छर जनित रोगों, जल जनित रोगों और श्वसन रोगों के संबंध में क्या क्या सावधानी हो, और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसा कि मैंने बताया आशा और ANM है, इनको भी आमुखीकरण एक बार हर साल की तरह फिर से हम करते हैं। हालांकि ये निरंतर काम होता है लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक नहीं हो जाए इसके लिए हम बार बार आमुखीकरण करते हैं, विशेषकर इस मौसम के लिए।
1: कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा जानकारी भी थोड़ा लोगों में भय व्याप्त कर देती है। जब हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं, कई बार नए नए वायरस के बारे में पता चलता है, या इन दिनों बात हो रही है चांदीपुर वायरस की, तो ये क्या है और इसकी रोकथाम के लिए, इसके संक्रमण से बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
0: जी हाँ, चांदीपुरा वायरस डिजीज है, और जैसा कि राजस्थान और गुजरात दो स्टेट आपस में बॉर्डर स्टेट हैं, गुजरात में ये हाईली एंडेमिक है यानी चांदीपुरा के बड़े सारे केसेस पाए जाते हैं। राजस्थान हमारे

0: लिए एंडेमिक नहीं है चांदीपुरा रोग, लेकिन चूंकि हमारे बॉर्डर वाले लोग वहां गुजरात जाते हैं इस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।
1: क्या अमूमन ये बच्चों में देखने को मिलता
0: इसका
1: है?
0: इसका प्रभाव बच्चों में ज्यादा होता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रभाव ज्यादा होता है, और ये एक सैंड फ्लाई मक्खी है उसके काटने से होता है। तो यदि सैंड फ्लाई मक्खी है और वो इन्फेक्टेड है और वो बच्चों को काटती है तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, लेकिन यदि समय रहते तुरंत चिकित्सक को दिखाया जाए तो उपचार भी संभव है। हालांकि इसमें यदि विलंब किया जाए तो इसमें मृत्यु दर ज्यादा है।
1: डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि मॉनसून का जो ये मौसम होता है आनंद लेने का होता है, लुत्फ लेने का, तो वो अपनी सेहत का ध्यान भी रख सकें, स्वस्थ रहें और मॉनसून का आनंद भी ले सकें? क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
0: मानसून का आनंद लें बहुत जरूरी है, लेकिन वो आनंद लगातार रहे इसके लिए सजग रहें, चिकित्सा कर्मियों की बात सुने और समय रहते चिकित्सक को दिखाएं, विलंब नहीं करें।
1: तो हमारे प्यारे श्रोताओं, याद रखें, साफ सफाई, साफ पीने का पानी, मच्छरों से बचाव और समय पर डॉक्टर की सलाह और जांच मानसून में स्वस्थ रहने की, अपनी सेहतमंद अपने आप को रखने की, ये सबसे बड़ी कुंजी है। और अगर बुखार या किसी भी तरह के किसी रोग के कोई लक्षण दिखाई दे तो स्वयं दवा लेने की बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से संपर्क करें। आज के अंक में बस इतना ही। समाचार तरंग का ये अंक आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा पतंजलि कुमार, रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, संपादन रितिका गुप्ता, संयोजन डॉ. जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़, इसके साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में आज लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए और प्रदेश में 2 दिन मानसून कमजोर रहने का अनुमान। 29 जुलाई से मानसून के फिर से सक्रिय होने से कई स्थानों पर बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। कार्यबल में पूर्व खुफिया ब्यूरो निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व शिक्षा सचिव अनिता कारवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीना भी कार्यबल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आज संसद में परीक्षाओं से संबंधित कड़े कानूनी प्रावधानों वाला एक नया कानून पेश करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने

0: प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता की रक्षा करने और लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इसके माध्यम से पूर्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में इन एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समझौतों को धरातल पर उतारना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने भूमि आवंटन और अन्य स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव स्तर पर एमओयू के नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ निवेशकों से लगातार संवाद बनाए रखने को कहा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर भी बैठक की। उन्होंने कहा कि ये दिवस विश्वभर में बसे राजस्थानियों और उनकी मातृभूमि के बीच संबंधों को और मजबूत करने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों से लगातार संवाद बनाए रखने और नए चैप्टर्स जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से प्रवासियों को प्रदेश के विकास और निवेश में भागीदारी का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री अधिक से अधिक प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी के लिए विभिन्न शहरों में रोड शो करने और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सेक्टोरल सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र के प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष कार्यक्रम शेखावाटी में ही आयोजित किया जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा, शोध और नवाचार से स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने ये बात एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उपाधियां और मेधावी छात्रों को पदक प्रदान किए। राज्य मंत्री ने कहा कि एम्स जोधपुर निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने युवा डॉक्टरों से सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण की भावना के साथ समाज की सेवा करने का आह्वान किया।
2: एम्स जोधपुर आज हमारे देश के टॉप 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में से एक है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। यहाँ पांचवें दीक्षांत समारोह में 900 बच्चों को, जो जिसमें हमारे MBBS के डॉक्टर्स हैं, PG डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, सभी को उनके डिग्रीज और मेडल्स दिए गए हैं।
0: जैसलमेर के रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र में पहली बार 3 गोडावण चूजों को नवनिर्मित रिवाइल्डिंग टनल में छोड़ा गया है। वन विभाग ने इसे गोडावण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। डेजर्ट नेशनल पार्क के ACF अशोक सिंह ने बताया कि अब तक कैप्टिव ब्रीडिंग केंद्र में तैयार होने वाले चूजे इंसानों की देखरेख में बड़े होते थे, जिससे उन्हें जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में कठिनाई होती थी। उन्होंने कहा कि रिवाइल्डिंग टनल का उद्देश्य चूजों को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाना है, ताकि उन्हें भविष्य में सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा जा सके और उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ सके।
3: जो ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर तैयार हुए हैं, उनको फील्ड में रिलीज करने के लिए पहले रिवाइल्डिंग स्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ट्रांसपोर्ट करने के बाद में लगभग उनको 4 महीने उसमें रखा जाएगा। उनको फील्ड में सर्वाइवल की ट्रेनिंग मिलने के

0: बाद में फिर फील्ड में रिलीज करने का प्लान है। जीआईबी के रामदेरा में जो बेडिंग सेंटर है उसके पास में ही रिवर्डिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है, जिसका पैमाना 160x64x14 मीटर है।
1: प्रदेश में दो दिन मॉनसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कल से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी के आसार हैं। वहीं 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून के फिर सक्रिय होने और पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी वर्षा का अनुमान है। इस बीच पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बरसात हुई। जालौर, सीकर, हनुमानगढ़ के संगरिया और आबूराज में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जैसलमेर में करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई। डूंगरपुर और पाली में आज रिमझिम बरसात दर्ज की गई। सवाईमाधोपुर में बरसात का दौर बंद है, लेकिन हाड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश से चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। जिले के झरेल के बालाजी रपट पर करीब 1 फीट पानी बहने से मार्ग बाधित है। भारत की मीराबाई चानू ने ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलो भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलो के रिकॉर्ड का तोड़ प्रदर्शन के साथ ये पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। भारत ने भारोत्तोलन में 2 रजत पदक भी जीते। ऋषिकांत सिंह और राजा मुथु पंडी ने ये पदक प्राप्त किए। उधर विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर भारत की अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी बन गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में आज लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। और प्रदेश में दो दिन मॉनसून कमजोर रहने का अनुमान। 29 जुलाई से मॉनसून के फिर से सक्रिय होने से कई स्थानों पर बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। आइए सुने राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। आज कलाकार हैं हरिशपाल डाढ़ी।

मरुमंगल कार्यक्रम में भी आप ऋषपाल ढाडे की गाई राजस्थानी लोक रचनाएं सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। आइए कार्यक्रम सुने फिल्म संगीत। पहला गीत बाज फिल्म से, जिसे गाया रूप कुमार राठौर के साथ साधना सरगम ने। महबूब के लिखे गीत की धुन तैयार की है इस्माइल तरबार ने।

अय्यप सुनील तौहीन फिल्म में आशा भोसले के साथ बप्पी लाहिड़ी को। गीत लिखा नक्श लायलपुरी ने, संगीत तैयार किया बप्पी लाहिड़ी ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला नगमा हमने चुना है फिल्म प्यार मोहब्बत से। इस गीत को गाया अलका याग्निक महेश ने, शब्द आनंद बख्शी के, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में सुनिए मजरूह का लिखा गीत। पुकार फिल्म के लिए इस गीत को स्वर दिया है सोनू निगम के साथ अनुराधा पौडवाल ने।

जिस दिन से वो डॉन बन गया डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया, और क्या कहूं मैं, सारा जहां था उसके कदमों में।

0: सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन के 10 बजे हैं। कार्यक्रम सुने आज के फनकार। सभी सुनने वालों को आज नमस्कार, संजय बैद की ओर से। दोस्तों, आज दिन है 27 जुलाई का, और आज का दिन एक ऐसे अभिनेता के लिए याद किया जाता है जिन्हें उनके खुद के नाम से कम बल्कि उनके पर्दे के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। जिस तरह से अमरीश पुरी को लोग मोगैम्बो के नाम से जानते हैं, अजीत को लोयन के नाम से, बिल्कुल एक ऐसे ही फिल्मी खलनायक जिन्हें लोग अमजद खान के नाम से कम गब्बर सिंह के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जी हाँ, शोले में अमजद खान की गब्बर सिंह की भूमिका आज 50 वर्ष के बाद भी उनके चाहने वाले के दिलों में, या कहें तो सभी सिने प्रेमियों के दिलों में एक ऐसी खौफनाक तस्वीर पैदा करती है कि उस खौफ से आज भी दर्शक उबर नहीं पाए हैं। आज दिन है अमजद खान का, क्योंकि आज ही के दिन यानी 27 जुलाई के दिन 1992 में, यानी अब से 34 वर्ष पूर्व, वो हमसे बिछड़ गए थे। मात्र 52 वर्ष की उम्र में अमजद खान ने फिल्मी दुनिया में वो नाम हासिल किया, वो प्रसिद्धि पाई जिसके करीब बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे ही नगमे सुनवाएंगे जिन्हें अमजद खान पर फिल्माया गया, और उसमें बहुत से गीत ऐसे भी हैं जिन्हें पर्दे पर भी अमजद खान ने गाया। लेकिन शायद आप जानते हों, अपने फिल्मी कैरियर में अमजद खान ने एक गीत को पर्दे के साथ साथ पर्दे के पीछे भी अपनी आवाज़ दी थी। ये फिल्म थी सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी। जी, इस फिल्म में वाजिद अली शाह की भूमिका अमजद खान ने निभाई थी, और एक छोटे से गीत को उन्होंने अपनी आवाज़ भी दी थी। 1977 में बनी इसी फिल्म के इस गीत के साथ हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको अमजद खान की आवाज भी सुनने को मिलेगी।
1: तरप तरप सगरी रैन गुजरी, कौन देश गयो सावरिया।
2: बेशक याद है।
3: आप जानते हैं हमने ये गीत कब और कहां रचा था?
2: जी नहीं।
3: यही इस तख्त पर, और वो भी भरे दरबार में। सारा मंजर एक तस्वीर की तरह हमारे सामने है। एक आदमी हमारे सामने हाथ बांधे खड़ा है, उसकी फरियाद सुनी जा रही है कि अचानक एक बड़ी अनोखी बात होती है। हमारे कानों में उसकी आवाज आना बंद हो जाती है, और उसके बजाय

आवाज आपने सुनी अमजद खान की। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 में पेशावर में हुआ था। उनके पिता अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता थे जिनका नाम था जयंत। जयंत एक लंबी चौड़ी कदकाठी के इंसान थे। अभिनय अमजद खान की रगों में था। उन्होंने स्कूली शिक्षा जब प्राप्त की तो वहाँ नेशनल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। वो राजनीति में भी रहे, वहाँ कॉलेज में महासचिव के पद पर वो चुने गए और उसी दौरान वो एक थिएटर कलाकार के रूप में काम करते थे। बाद में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और अनेक थिएटर समारोहों में उन्होंने अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में अनेक पुरस्कार भी जीते। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अलावा अमजद खान फारसी भाषा के भी जानकार थे और उन्होंने फारसी साहित्य में भी एक पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की थी। अमजद खान का फिल्मी कैरियर आरंभ हुआ जब वो 11 साल के थे। 11 साल की उम्र में फिल्म नाजनीन में उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। उसके बाद अब दिल्ली दूर नहीं, माया इन फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं भी निभाई थी, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिली थी वो शोले से मिली जो 1975 में आई थी। रमेश सिप्पी की फिल्म के बाद अमजद खान ने कभी भी अपने कैरियर में मुड़कर नहीं देखा और अपने अंत समय तक वो फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहे। उन्हीं पर फिल्माया गया और पर्दे पर उन्हीं के द्वारा गाया गया याराना फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, जो फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन के साथ 1981 में। इस गीत को गाया मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने, शब्द अनजान ने लिखे, संगीत राजेश रोशन ने तैयार किया। इसमें अमजद खान एक नेवी के कर्मचारी के रूप में बच्चों के साथ पर्दे पर गीत गाते नजर आते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अमजद खान ने एक व्यासक के रूप में 1973 में आई फिल्म हिंदुस्तान की कसम में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में जब रमेश सिप्पी ने उन्हें शोले में गब्बर के रूप में कास्ट किया तो उस फिल्म में गब्बर की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने चंबल के डाकुओं पर एक पुस्तक आई थी जिसे लिखा था तरुण कुमार भादुरी ने और पुस्तक का नाम था अभिशप्त चंबल। इस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा ताकि वो चंबल के डाकू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और उनकी मेहनत सफल हुई, शोले एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। इस फिल्म में चाहे अमिताभ बच्चन रही हों, हेमा मालिनी रही हों, संजीव कुमार और धर्मेंद्र जैसे उम्दा कलाकार रहे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो बटोरी वो अमजद खान ने बटोरी। शोले एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हर कलाकार का कोई ना कोई डायलॉग फेमस रहा था जो आज भी 50 वर्ष बाद हमें याद हैं, लेकिन फिल्म के जो सबसे ज़्यादा डायलॉग फेमस हुए वो फिल्म शोले और वो अभिनेता गब्बर सिंह यानी अमजद खान। अमजद खान के द्वारा बोला गया गब्बर सिंह के बारे में हर डायलॉग आज भी हमें उतना ही याद है जितना हम इस फिल्म को जब पर्दे पर देखते हैं हमें याद रहता है। कुछ डायलॉग

का यदि हम जिक्र करें उसमें, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। होली कब है, कब है होली, कितने आदमी थे, 6 गोली और आदमी 3, बहुत बेइंसाफी है। यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो मां कहती है, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, जो डर गया समझो मर गया, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। बहुत याराना लगता है। अनेक और भी उनके डायलॉग हैं, एक दो और हम आपको बता दें। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तेरा क्या होगा कालिया, क्या समझ कर आए थे, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। अनेक ऐसे डायलॉग जो आज भी हमें शोले में उनकी भूमिका की याद दिलाते हैं। इसी फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा देते हैं। हालांकि एक गीत पिक्चराइज किया गया हेलन पर, पर्दे पर गाया जलाल आगा ने, लेकिन चूंकि अमजद खान इस भूमिका में उस अड्डे के सरदार के रूप में नजर आते हैं, इसलिए ये गीत हम आपको सुनाना चाहते हैं। गीत को गाया आरडी बर्मन ने, बोल लिखे आनंद बख्शी ने, और इसका मधुर संगीत आरडी बर्मन ने तैयार किया। आप इस गीत का आनंद लें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अमजद खान एक अभिनेता के रूप में तो अपनी पहचान रखते ही हैं, इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया था। 1980 में उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। उनकी जो एक पहली फिल्म थी अधूरे आदमी, ये 1982 में बनी थी लेकिन आज तक ही रिलीज नहीं हो पाई। पहली फिल्म ही उनकी अधूरी रह गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने चोर पुलिस और अमीर आदमी गरीब आदमी का निर्देशन किया। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई। एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे अमजद खान। खलनायक के साथ साथ अनेक फिल्मों में उन्होंने चरित्र अभिनेता के रूप में भी अभिनय किया था। अगला गीत जो हम आपको सुनवाते हैं उसमें अमजद खान पर यह गीत पूरा का पूरा फिल्माया गया। फिल्म का नाम संतोष जो आई थी 1989 में। इस गीत में वो एक जेल के कैदी के रूप में गीत गाते हैं। गीत क्या, ये तो एक कव्वाली है जिसे महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज़ दी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस कव्वाली को लिखा संतोष आनंद ने, आवाज़ महेंद्र कपूर की।

जिस वक्त कोई मुस्कुराता चेहरा घबराता है, उस वक्त दिल इकबाल का शेर दोहराता है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आज के फनकार, आप इस कार्यक्रम में आज अभिनेता अमजद खान पर फिल्माए गए नगमे सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से अपने साथी संजय बैद के साथ। दोस्तों, अमजद खान को अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए कई सम्मान भी मिले। उन्हें 1976 में BFJ अवार्ड से शोले फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें दादा फिल्म जो 1980 में आई थी और याराना, इन दोनों फिल्मों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1986 में आई फिल्म माँ कसम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल का पुरस्कार भी उन्हें मिला। अमजद खान ने चाहे अनेक फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई हो, लेकिन कई फिल्मों में उन्होंने एक अच्छे इंसान की भूमिका भी निभाई। ऐसी ही एक फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है 5 कैदी। इस गीत को गाया किशोर कुमार ने। 1981 में फिल्म आई थी। इस गीत में अमजद खान महेंद्र संधू के साथ अपनी माँ, जिसकी भूमिका सुलोचना ने अभिनीत की, उनके साथ पर्दे पर यह गीत गाते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, अमजद खान को पर्दे पर देखकर चाहे लोगों के दिलों में एक भय क्यों न कोंधता रहा हो, लेकिन उन्होंने खलनायक के अलावा अनेक फिल्मों में हास्य कलाकार के रूप में भी काम किया था, जिसमें चमेली की शादी, पाताल भैरवी जिसमें जितेंद्र उनके पॉजिट थे, लव स्टोरी जो कुमार गौरव के साथ थी, कुर्बानी फिरोज खान के साथ, और रेखा की प्रसिद्ध फिल्म उत्सव, माँ कसम। ये अनेक ऐसी फिल्में थी जिसमें उन्होंने हास्य अभिनेता के रूप में भी लोगों को गुदगुदाया था। माँ कसम फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, जिसे अमित कुमार ने गाया, गीत अनजान ने लिखा, संगीत बप्पी लहड़ी ने तैयार किया। ये गीत पर्दे पर अमजद खान गाते हैं और साथ में अभिनय करते हैं प्राणा।

0: जीना है तो आजा प्यारे संग मेरे, कभी कभी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जीने का भी ले ले।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: दोस्तों, अमजद खान अपने साथी कलाकारों के अधिकारों के प्रति भी सजग रहे। उनमें चूंकि नेतृत्व क्षमता थी, इसलिए वो सिने आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, जहां उन्होंने अभिनेताओं के कल्याण के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उन शोषण से बचाने के लिए कार्य किए। अमजद खान एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें 2022 में आउटलुक इंडिया पत्रिका ने 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में स्थान दिया था। इसके अलावा उन्हीं के द्वारा अभिनीत फिल्म शोले को फोर्ब्स द्वारा भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शनी में शामिल किया गया था। अमजद खान ने अनेक भूमिकाओं में अपने अभिनय से जान डाल दी थी। उन्हीं पर फिल्माया एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है प्यारा दुश्मन। 1980 में ये फिल्म आई थी। गीत को गया किशोर कुमार के साथ आशा भोंसले ने।

शब्द रचना अनजान की, संगीतकार बप्पी लाहिड़ी, और इस गीत को फिल्मी पर्दे पर गाया अमजद खान के साथ अभिनेत्री विद्या सिन्हा ने।

मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अभिनय करने वाले अमजद खान ने दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया था। उन्होंने रामानंद सागर की निर्देशित गुजराती फिल्म वीर मंगतावलो जो 1976 में आई थी उसमें एक छोटी मोटी भूमिका अदा की थी। इसके अलावा उन्होंने 1988 में मर्चेंट आइवरे की अंग्रेजी फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी एक अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में अभिनय किया था। 1986 में वो कमल हसन के साथ एक तमिल फिल्म विक्रम में भी नज़र आए थे। अपने अंतिम समय तक अमजद खान फिल्मों में सक्रिय रहे। हालांकि एक दुर्घटना में जब वो घायल हो गए थे तब उन्हें काफ़ी स्टेरॉइड दी गई थी और उसके बाद उनका वज़न बढ़ता गया था, लेकिन बढ़ते वज़न के बावजूद उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा और 1992 में हृदयाघात से मृत्यु होने से पहले तक वो फिल्मों में सक्रिय रहे। उनकी कई फिल्में अधूरी भी रह गई थी जिन्हें बाद में पूरा भी किया गया। चलते चलते मन्ना डे और आशा भोंसले का गाया आनंद बख्शी का लिखा गीत हम आपको सुनवाते हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये फिल्म आई थी 1982 में जिसका नाम था तेरी मांग सितारों से भर दूँ।

0: आज के फनकार। अभी आपने फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुना। आज के फनकार थे अभिनेता अमजद खान, और अब अपने साथी संजय बैद को कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुने आप ही की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम गीत बहार।

सो तो अभी आपने मशाल फिल्म का ये गीत सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ थी, पसंद आप सभी की। कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षित और अभिषेक श्रीवास्तव। खरगोन सनाउद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा और चंद्रेश वर्मा। बिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल और इनके साथी। संगरिया से श्याम मिड्ढा और सुमन मिड्ढा। भाटापारा दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पार्श्वमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवाना खान, आयशा, सबिहा, अनस और रेहान। नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। हांडीखेड़ा सरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंद्रा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन भारद्वाज। सांगली जत शहर से अल्ताफ हुजरे, शेफुल्लाह, इबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। भांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, पसंद आप सभी की। मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णवानंद, सत्यनानंद। गांव कलाना भादरा हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युदो कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, किड़ूराम जोया, हनुमान सारण और सुनील पाईवाल शर्मा। मुरादाबाद दूलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके साथी। चक

आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत, पसंद आप सभी श्रोताओं की। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके साथी। बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनके साथी। शेरवाली स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। गांव आरायण से डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया और इनके साथी। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। कंवर कॉलोनी बड़वा खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। श्रीकर्णपुर से पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया और आयन बाबू। हनुमानगढ़ टाउन से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और जिशान खान। गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सारण, मोनिका और मनीष सहारण। आइए सुने आप सभी की पसंद पर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में इंदिवर का लिखा ये गीत, संगीतकार राजेश रोशन, फिल्म का नाम है कामचोर।

कामचोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आवाजें अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की। फिल्म का नाम है जानवर। पसंद आप सभी की। तहसील भादरा अनूपसैर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल राघव, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, फूसाराम मील, महावीर लोहरा, ममता, मीतू गीतू और इनके परिवार के लोग। पायलकला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापत, मानक उषावाला,

और इनके साथी नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार साई गायकवाड़। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबई सिल्लोड छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके और यगेश घोटके। पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। चक 58 NP रायसिंह नगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरबंस, बनवारी, गोपी, ललित, नरेंद्र मीनाक्षी और इनके परिवार के लोग। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, आरती गोरी और ओम कुमार सुरलकर। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी है सनावद से शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बोडाना ने। मुजफ्फरनगर यूपी से रेणु शर्मा और विशेष शर्मा। बहलोल नगर से हरीश हैरी, जगतार जैरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर मान, हरविंदर मान और राज सिंह प्रीत मान। बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग और इनके साथी। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। कर्णवीर हाउस भुच्चो कैचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, कर्णवीर करण, दीपेंद्र वीरेंद्र, कुलदीप, सीमू एकम दमन और अभिजोत। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बहार आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम का अगला गीत सुने, पसंद आप सभी की। फरमाइश हम तक पहुंची है श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जोनी बंसीवाल, धनराज बंसीवाल और इनके साथी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। गांव ममना, जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और देवांशी विश्वकर्मा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता। बिरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश, सन्नी भावसार। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रेणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल और सुरेंद्र भादु। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम।

हाशमी, मोहम्मद तौसीफ़ हाशमी और मोहम्मद तैमूर हाशमी। सूरतगढ़ से लेखराज जी, पवन कुमार, सुरजीत सिंह, रवि कुमार, कुंदन लाल और साक्य। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार साईं गायकवाड़। बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर बंदरलाल वर्मा। नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तर्ड, कृष्ण मुकेश तर्ड, रामचंद्र तर्ड, कपिल देव तर्ड और हिमानी जाखड़। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, हुसैन हसन अब्बासी, रसीद वारसी, शहनाज अब्बासी, अमन अब्बासी और यसफ अब्बासी। आदर्श नगर बठिंडा से इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमन, गुरमंत कौर, मन्नू और इनके साथी। स्टेट आसाम से हितेंद्र दास। बठेना दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकर्ण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा, बंटी और बबली वर्मा। गांव ढाणी लाल खां नोहर से जावेद खां, अरमान खां, इरमान खां, सीमा बानो, विनोद खां और इनके साथी। सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिहा जुबैर, अंजुमन खान और इनके साथी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये और तन्मय गजभिये। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, निपी साहनी और श्रीमती सुनीता साहनी। स्वतः आपके पत्र हम तक पहुँचे हैं। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, शशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। डबावाली हरियाणा से जेके बकोलिया, श्रीमती सुनीता बकोलिया, संजय अनिल और मीनू बकोलिया। श्रीगंगानगर से नेकीराम बांसीवाल, जोनी बांसीवाल, धनराज बांसीवाल, लविस और तन्नू। चक 16 एमओडी मंडी गोलूवाला से राजपाल रामस्वरूप, बलबीर सिंह, हरि सिंह, राहुल, अभिजीत और सुनील सिहाग। आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फराज, फरहान और फारिया ताहिरा। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्ण जैन, राकेश जैन और इनके साथी। गांव घमंडिया से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति, शिवम ढोकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढोकिया, इवा धारिनिया। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल, पुरोहित, मोनी पारीक और भूपेंद्र पारीक। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक और इनके साथी। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और इनके साथी। अलीका डब्बावाली से रूप सिंह लाखोत्रा, करमजीत लाखोत्रा, सरबजीत लाखोत्रा, रानी सोनू और रजनी। गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित, हेमंत और अंजू बेनीवाल। नई आबादी अबोर पंजाब से डिंपल सोनी, संतोष सोनी, राखी सोनी, कोमल सोनी और रिद्धि सोनी। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किंसुक खन्ना और बेबी दीपांशी इंदौरा। मलोट पंजाब से ये पत्र हम तक पहुंचा है। विकास इंदौरा, गैरी इंदौरा, सतीश मिकलानी, सीमा, साइना और अनमोल। छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्रेंगी से ये पत्र पहुंचा। लिखने वाले हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निबान शर्मा। आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

खूबसूरत फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, पसंद आप सभी की। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीला देवी, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। गांव कल्याण मलका, बठिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर सचनूर और मनिंदर। व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार, शाही श्रीमती संतोष शाही, राजश्री गौरव शाही और इनके साथी। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। बोड़सरा छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वे भी विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांश साहू। मालवा रेडियो श्रोता संघ परमिलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया शोभा, राहुल ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। चकपंद्रह पीएस से के आर भाटिया, प्रेरणा भाटिया, डिंपल भाटिया और रोशनी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। रायसिंह नगर से सोहनलाल जांगिड़, सुनील, संजय, नरसी और प्रवीण कुमार। उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी, बाबू भाई चांदीवाला। चौटाला हरियाणा

से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, राजू प्रजापत और इनके साथी विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर और जयपाल यादव, गांव खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा, ऊपरकोट मोहला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान अबान अब्बासी और इनके परिवार के लोग, मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष, विश्वजीत, मोहनलाल प्रजापत और इनके साथी, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, गंज डुंडवारा यूपी से बीपी गौतम, सरिता गौतम और इनके साथी, बीड़ शहर से नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी, जयश्री, महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूबल और बीपी कुल थे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, स्वरु शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। आप सभी की पसंद पर सुनिए हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज़।

इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी नोहर हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार, कालू मिस्त्री और इनके साथियों ने।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी कार्यक्रम गीत बहार। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद गजलें आप सुनेंगे 12:30 पर। आज आप सुनेंगे चंदन दास की गाई चंद गजलें। 12:50 पर कार्यक्रम सुनिएगा खेत खलिहान। दिन में 1 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में आज जानकारी के विषय रहेंगे घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता, युवाओं में बढ़ रहा वायरल होने का जुनून, रक्तदान, महादान और ब्यूटी टिप्स पर।

दोपहर समाचार आप सुना करते हैं दिन में 2 बजे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। 2:30 पर आप सुनेगा फिल्म संगीत। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम दिन में 3 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में सुनिएगा जानकारी, शिक्षा में तकनीक की भूमिका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर चर्चा, नेतृत्व क्षमता और युवा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बातचीत।

कार्यक्रम विवरण आप सुना करते हैं संध्या 6 बजे, 6:05 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम सिराय की चौपाल। कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7 बजे, 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म की जानकारी और गीत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात 10 बजे संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी। ये थे हमारे आज के प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम, उनका विवरण और प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सभी फौजी भाइयों की सेवा में हमारा प्यार भरा नमस्कार। फौजी भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म LOC कारगिल के इस गीत के साथ, आवाज़ें सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत दिया अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है बॉर्डर।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीतकार आर डी बर्मन, फिल्म का नाम है कुदरत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए सुने चंदन दास की गाई चंद गज़लें।

सूरत में अपनी भूल गया, तुझको देखकर हर आईने में तू नजर आए तो क्या करूं, हर पल तुम्हारी याद सताए तो क्या करूं, तुम बिन कहीं करार न आए तो क्या करूं। अभी आपने सुनी चंदन दास की गाई ये गजल। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने ये गजल।

0: मिस्टी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी मछली पालन के लाभ व तरीके।
1: खेत खलिहान सुनिए सगले किसान भैया ने सुनील भाई की ओर से मोकली राम राम। किसान भाइयों, आज खेत खलिहान में अपन बात करा मछली पालन के लाभ और तरीकों के बारे में। तो आज के टाइम में अपन देखा के जिका कृषि है और बिंगा सा एक धंधा है, बम में जो मछली पालन है बहुत ही लाभदायक है। आप इनमें कम टाइम में अपन ज़्यादा मुनाफो कमा सका। इनका लाभ की बात करा तो एक तो की है भी उच्च मुनाफो हुआ इशू, ज़्यादा अपन लाभ प्राप्त हुआ कम टाइम में और कम समय की फसल तैयार होने के कारण। जिसका दूसरा पारंपरिक खेती का तरीका है बांगी तुलना में अपन इशू ज़्यादा मुनाफा उठा सका। दूसरा लाभ वो है कि बाज़ार में प्रोटीन एर ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर जो कि मछलियाँ हैं बांगी हमेशा मांग बनी रहे, तो वो भी अपन एक बहुत मोटो फायदा है। और सागे सागे की है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिसी सरकारी योजनावां है बांगे तहत अपना तालाब निर्माण सारू बीज सारू और जका फीड है मछली को इंग सारू अपना 40-60 सैकड़ा ती सब्सिडी भी ले सका। और सागे सागे एक फायदा वो ही है कि अपने करके जिया कोई बंजर भूमि पड़ी है बेकार भूमि पड़ी है जठे पानी भराव की समस्या हुए तो इन जमीन ने अपना मछली की खेती सारू उपयोग में ले सका, तालाब बना के बटाओ काम कर सका। और सागे सागे एक फायदा वो भी है कि मछली पालन का सागे सागे अपा या बतख पालन है डेयरी फार्मिंग है अंग सागे जोड़ के आप जो काम करा तो कम खर्चे के अंदर आपने दुगनी आय प्राप्त हो जाए। बात करा अपा मछली पालन के तरीकों की तो आज अपा देखा का अपने जिया जगह है बजट है पानी की उपलब्धता है आ चीज़ा ध्यान के अपा जका तरीका है मान अपना सका। जिया पहलो तरीको है मान लो पारंपरिक तालाब विधि को, इनमें क्या है जका पुराना लोकप्रिय तरीका है इनमें जमीन खोद के एर प्राकृतिक तरीकों कृत्रिम तालाब भी अपना बना सका और बठेंगी खेती कर सका। इन सारों अपा जिया राऊ है कतला है मृगल जो कि मछलियाँ है तिलपिया है पेंगीशियस है इसी मछलियाँ अपा अठे आराम छू इन तरीके छू पाल सका। दूसरो तरीको है बायोलोक तकनीक। इन तकनीक के अंदर किसान भाइयों कम जगह और कम पानी जका लोगों का न हो है बठे आ तकनीक बहुत ही बढ़िया रहे। कम जगह के अंदर और कम पानी में अपा इशू मछलियाँ की ज़्यादा पैदावार ले सका। इनमें कि मोटा मोटा टैंक बना के बांग अंदर के एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया हुए बे छोड़ी जाए बे बैक्टीरिया की एक रह जो मछली को मल हुए नहीं बिना के प्रोटीन युक्त भोजन में बदल दिए और बे मछलियाँ की है खानती रहे। तो इशू अपन लाभ वो है कि एक तो पानी खपत अपने कम हुआ और दूसरा जो दाने पर खर्चो लगे भी में 30-40% तक अपने बचत हो जाए। तीसरी जो कि अपनी तकनीक है किसान भाई वो है RAS तकनीक। इन अंदर घर के अंदर या शेड के अंदर जो कि आ तकनीक काम में लीजिए जैठे पानी की बार बार फिल्टर करके साफ करो जाए। इनमें किया कम जगह के अंदर आप ज़्यादा मछली पालन कर सका। इनको बस एक नुकसान है कि थोड़ा अपने जब पाएंगी शुरुआत करा तो अपन थोड़ा सो खर्चों की है ज़्यादा लगानो पड़े। केज कल्चर की बात करा तो इनमें जिया मोटा तला जलाशय है नदियां हैं या झीला हैं बठे की है विशेष प्रकार का जाल आवे है बंगो प्रयोग करी जाए और बंग अंदर मछलियां पाली जावे। ये तो एक किसान भाइयों तरीकों की बात। तो कोई भी अपना धंधो करा तो बिंग सारों पहला अपन की है प्रशिक्षण होना जरूरी है और जका भी मैं जो अपन के समान चाहिए है कि तो ज्ञान चाहिए बंग उन्होंने बहुत ही जरूरी है जिसमें अपना जो की है व्यवसाय सफल हो सके। तो सफलता के महत्वपूर्ण तो चरणों की बात करा तो पहलो की चरण है प्रशिक्षण को है। तो कोई भी व्यवसाय शुरू करा तो अपना जका नज़दीकी KVK है कृषि विज्ञान केंद्र है या राज्य मत्स्य विभाग है अठू 3-7 दिन को जो व्यवहारिक प्रशिक्षण अपन है जरूर लेना चाहिए और फिर जठा

0: मान लो काम करने लाग रहे हैं, बट को जो को पानी है, माटी है, बिंगो जो को पीएच मान है जो को 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए, इनकी जांच करानी चाहिए। और जो कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा हुए, इन्हें भी अपन टेमो टेम देखते रहना चाहिए। और हमेशा ही कि है उन्नत का बीज है, फिश फिंगर्स है, बंग अपन विश्वसनीय एच रिशू खरीदना चाहिए और स्वस्थ बच्चों को प्रयोग करना चाहिए। और बाना टेमो टेम की है जो को गुणवत्तापूर्ण भोजन है, जो को हमेशा के पानी के ऊपर तैर तो रहे ईशो भोजन अपन देना चाहिए। और प्राकृतिक आहार का जो का संतुलित है बिने बना के रखना चाहिए। किसान भाइयों, मछली पालन में छोटी सी जापान लापरवाही करा तो अपने बहुत मोटो नुकसान हो सके। एक सफल और लाभदायक मछली फार्म चलान खातर सारू अपने कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, जल गो प्रबंधन की बात करा तो मछलियाँ का स्वास्थ्य और विकास सारू अपन अच्छा पानी को प्रयोग करना चाहिए, जगह को पीएच स्तर की है 6.5 से 8 के बीच रहे। और इन आप हमेशा की है जो डिजिटल मीटर है आशू नाप तो रहना चाहिए। और ऑक्सीजन की मात्रा है तो आप 5 mg प्रति लीटर होनी चाहिए। और सुबह के टाइम की ऑक्सीजन कम हुए इन सरु तो अपन की एरेटर जो आवैबिंग प्रयोग करना चाहिए। और पानी के रंग की बात करा तो तालाब को जो पानी है वो हल्को हरे होना चाहिए, जो प्राकृतिक भोजन की मौजूदगी दिखावे, और पानी बहुत गहरो और गंदो नहीं होना चाहिए। आहार की बात करा तो मछलियाँ ने बांगे वजन के हिसाब से संतुलित आहार देना चाहिए। और ओवर फीडिंग यानी ज़्यादा दानों कदी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो को बच्चेड़ो दानो है वो तालाब के तले में बैठ के बैठे सड़जिए एर बैठे अमोनिया गैस पैदा करे। प्रोटीन की जो कि छोटी मछलियाँ हुए तो उन्हें ज़्यादा जरूरत हुए अने 30 से 35% तक आप प्रोटीन देना चाहिए। और मोटी जो कि मछली है इन्हें 24 से 28% तक प्रोटीन देना चाहिए। और जो को दाने देने को टाइम है वो सुबह और शाम होना चाहिए। और हमेशा ही उन्नत बीज को चयन करना चाहिए, जो को अपने प्रमाणिक हैचरी या बटन से लेना चाहिए। और बीमारियां से बचाने सारू तालाब के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट है या नमक को पानी है वो डालते रहना चाहिए। बीज को आकार कम से कम 3 से 4 इंच होना चाहिए। और रोग नियंत्रण सारू की है हमेशा तालाब को चक्कर लगा के अपने निरीक्षण करना चाहिए। जिया मान लो मछलियाँ सुस्त दिखे या पानी के सतह पर आगे मुँह बागे सांस लेवे, तो इन तरह की विशेष जकी अपने समस्या दिखाई दे तो अपने गौर करना चाहिए। और पानी की शुद्धता बनाए सारू हमेशा के चूनों को प्रयोग करना चाहिए। साल में 2-3 बार अपने तालाब के अंदर चूनो जको आवे वो जरूर डालना चाहिए। और एक बात गौर ध्यान रखना चाहिए कि क्षमता से ज़्यादा मछली न रखनी चाहिए। जब भीड़ भाड़ हो जाए मान लो तालाब के अंदर तो कि मछलियाँ के अंदर तनाव की स्थिति पैदा हो जाए, बीचों की बीमारी है भाभी फैलन को डर है। और सुरक्षा और बाजार की बात करा तो जहाँ बुगला है, चील है या सांप है, तो ये चीज का जानवर है मछलियाँ नुकसान पहुँचावे, तो तालाब के ऊपर आपने जो बर्ड नेट है लगाना चाहिए और चारों मेर की है बाढ़ कर देनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा जानवर तालाब के अंदर न बढ़ सके और मछलियाँ ने नुकसान न पहुँचावे। और बाजार की मांग की बात करा तो अपन हमेशा ही अपना जो क्षेत्र है बिंगी मांग के हिसाब से जो कि नस्ल आवे वह पालनी चाहिए, ताकि आप अपने जो का नेड़ा बाजार है बठे ले जा सकें और बांगी जो कि मांग है पूरी कर सकें, ताकि अपन की ज़्यादा मानो भाड़ियों भी न लागे और खर्चो भी न उठानो पड़े और अपने कम लागत के अंदर अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाए। तो आम बातों को जका भाई मान लो मछली पालन को रोजगार करना चाहे वाने विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज खातिर इतो ही, थारे सुनील भाई ने दिवा गया राम राम सा राम राम।
1: खेत कल्याण कार्यक्रम में अभी किसान भाई सुन रहे थे जानकारी मछली पालन के लाभ व तरीके। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, दिन का 1 बजने वाला है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। लोकसभा में आज सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य प्रश्न पत्र लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करना है। विधेयक पेश होने के कुछ ही देर बाद विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष से विधेयक पर चर्चा में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि ये छात्रों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है और परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम है। सुप्रीम कोर्ट कल नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बल के कथित अत्यधिक प्रयोग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में पुलिसकर्मियों पर हमले के संबंध में उनके परिजनों की ओर से दायर अलग याचिका पर भी साथ में सुनवाई करने पर सहमति जताई है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि शांतिपूर्ण और कानून सम्मत विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह मामले में न्यायालय की सहायता करेंगे। अजमेर की आनासागर झील के संरक्षण और प्रदूषण रोकने के लिए 22 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से कार्य शुरू किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज वैशाली नगर में इस परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत झील में गिरने वाले नालों की ट्रिपिंग प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि गंदा पानी झील में ना पहुंचे। परियोजना में झील के संरक्षण और पर्यावरण सुधार से जुड़े अन्य कार्य भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे जल गुणवत्ता में सुधार होगा और आनासागर झील की प्राकृतिक सुंदरता के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 12 जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के तहत पात्र युवाओं के पंजीकरण के लिए आज से विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर बालमुकुंद आसवानी अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के शुरू होने के 5 दिन में ही 5,000 से अधिक युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। राज्य में इस योजना का पायलट चरण फिलहाल केवल 12 जिले और जयपुर की बगरू विधानसभा क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2026 के लिए भीलवाड़ा जिले में रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार नगर निगम भीलवाड़ा के वार्ड संख्या 1 से 35 तक के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रतिमा देवठिया को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं उपखंड अधिकारी और तहसीलदार भीलवाड़ा को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोटा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा प्रशिक्षण को अधिक व्यवहारिक और सुरक्षित बनाने के लिए अत्याधुनिक स्किल लैब स्थापित की गई है। करीब 2,14,00,000 रुपए की लागत से तैयार ये लैब प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अपनी तरह की पहली सुविधा है। इसमें अत्याधुनिक मैनिकिन और सिमुलेशन आधारित उपकरणों के माध्यम से मेडिकल विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नीलेश कुमार जैन ने बताया कि इससे विद्यार्थियों को वास्तविक मरीजों पर उपचार शुरू करने से पहले सुरक्षित वातावरण में अभ्यास का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आबूराज में 9, जवाजा में 5 और कुंभलगढ़ में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़।

एफएम बैंड 100.1 MHz पर, डीआरएम चैनल 909 KHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

आंचल में ममता लिए हुए, नैनों से आंसू पिए हुए, सौंप दे जो पूरा जीवन, फिर क्यों आहत हो उसका मन, फिर क्यों आहत हो उसका मन। कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को सविता कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, एक नारी माँ, बेटी, बहन, पत्नी और बहुत से रिश्तों में हर किसी के जीवन का हिस्सा है। बिना नारी के इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज भले ही नारी आधुनिक हो चुकी है, पर अपने अंदर ममता, स्नेह, प्रेम और करुणा कभी मिटने नहीं देती। पर इसी करुणा की मूर्ति पर अत्याचार और हिंसा होना अभी भी बंद नहीं हुआ है। इसके विरुद्ध कानून बने हैं, पर कानून का रास्ता अपनाने की बजाय कई महिलाएं हिंसा को सहती रहती हैं। बहनों, घरेलू हिंसा का मतलब हम मारपीट या पिटाई से लेते हैं, पर घरेलू हिंसा में मानसिक प्रताड़ना, अपशब्द कहना, यौन उत्पीड़न, ये सभी शामिल हैं। घरेलू हिंसा के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक और आर्थिक बहुत से रूप हैं। घरेलू हिंसा घर में किसी के साथ भी हो सकती है, पर हमारे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जिसमें पुरुषों को अधिक अधिकार और महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। इसी असमानता के कारण महिलाओं को अत्याचार सहना पड़ता है। दहेज प्रथा, गरीबी, नशे की लत, बेरोजगारी और सामाजिक रूढ़िवादिता भी घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण हैं। ज़्यादातर महिलाएं सामाजिक बदनामी के डर से, परिवार टूटने के डर से और आर्थिक निर्भरता के कारण हिंसा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती। बहनों, घरेलू हिंसा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है और परिवार के साथ साथ समाज को भी प्रभावित करती है। बहनों, इसकी रोकथाम के लिए कानून बनाए गए हैं, पर जागरूकता की कमी के चलते उसका भी प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता। अधिकतर महिलाओं को तो घरेलू हिंसा का मतलब भी पता नहीं है। केवल कानून बनाने से कुछ प्रभावी निर्णय नहीं आते। समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को और परिवार के हर सदस्य को इसकी जागरूकता होनी चाहिए। कानून भी तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक लोगों की सोच में बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए नारी शिक्षा का प्रचार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तता बेहद ज़रूरी है। बहनों, इसके अलावा सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं और सरकार को साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए। जागरूकता अभियान, परामर्श सेवाएं और सहायता केंद्र पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करते हैं। समाचार पत्र और मीडिया भी इस विषय पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बहनों, घरेलू हिंसा एक सामाजिक समस्या है, तो इसका समाधान भी सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। समाज में समानता, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही इस समस्या को कम किया जा सकता है और एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज का निर्माण किया जा सकता है। बहनों, हमें बस करना ये है कि जब किसी पर घरेलू हिंसा हो, तो चाहे हम परिवार का सदस्य हों या पास पड़ोस का, हमें उस गलत के विरोध में सजग रहना है और हिंसा को रोकना है और उचित कार्यवाही करवानी है। इसलिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

युवा शक्ति संचित करो, मन में रहे विचार, राष्ट्र वही उन्नत हुआ, युवा जिसके आधार। बहनों, हमारे युवा हमारा भविष्य हैं, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। आने वाला समय उन्हीं का है और ऐसे में देश की, समाज की और परिवार की अपेक्षाएं उनसे बहुत बढ़ जाती हैं। पर आज युवा सतही तौर पर मजबूत बनकर जीना नहीं चाहता, वह तुरंत परिणाम चाहता है और इसी चाह में युवाओं में सोशल मीडिया पर वायरल होने का जुनून तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण जल्दी प्रसिद्धि की चाह, लाइक्स व्यूज़ का आकर्षण और डिजिटल पहचान बनाने की दौड़ है। यह प्रवृत्ति मानसिक स्वास्थ्य और वास्तविक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। बहनों, इस प्रवृत्ति के बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे कि रातों रात मशहूर होना और डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाने की लालसा होना, ये सभी इसमें शामिल हैं। युवाओं के मन में जल्दी ही प्रसिद्ध होने का जुनून हो जाता है। इसके चलते लाइक्स व्यूज़ और कमेंट्स ना मिलने पर हीन भावना और डिप्रेशन का शिकार होना आम बात हो गई है। आज का युवा अगर प्रसिद्ध ना हो पाया तो वह अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेता है। बहनों, कुछ युवा प्रसिद्धि पाने के लालच में खतरनाक स्टंट करने लगते हैं या फिर सड़कों पर जोखिम भरे वीडियोस बनाने लगते हैं, जिसके चलते कई युवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये स्पष्ट तौर पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, पर युवा इसे समझना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें प्रसिद्ध होना है। इसी के चलते युवा अपना बेशकीमती समय बर्बाद कर देते हैं, वे रचनात्मकता को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं और ट्रेंडिंग सामग्री के पीछे दौड़ते हैं। बहनों, कुछ युवा तो जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चलाना नहीं जानते, वे भी खुद को हीन समझकर अवसाद का शिकार हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे पिछड़ गए हैं और इस समाज का हिस्सा नहीं है। बहनों, इसके लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से जागरूकता फैलानी चाहिए। हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं, उन्हें हम यूं ही जाने नहीं दे सकते। इस मानसिक परिस्थिति से बाहर लाना और सभ्य समाज का निर्माण करना हमारा कर्तव्य है और हमारे युवाओं का भविष्य है। इसलिए बच्चों को जागरूक करें, उन्हें समय दें और विवेकशील बनाएं। तो आइए सुनते हैं इसी के साथ ये प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, दान देना हमारे देश की प्राचीन संस्कृति है। दान में वस्तु का मूल्य नहीं देखा जाता, दान में मन का भाव, श्रद्धा और नम्यता देखी जाती है। दान देने से सुख प्राप्ति की धारणा जुड़ी है, क्योंकि इससे मन को संतोष मिलता है। बहनों, दान में सिर्फ वस्तुएं ही नहीं दी जा सकती, इसमें हम अपने शरीर के अंगों का दान भी कर सकते हैं, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर रक्तदान भी कर सकते हैं। रक्तदान तो किसी के जीवन को बचाने के लिए किया गया सर्वोत्तम दान है। अगर हमारे शरीर में प्राण है तो हर तरह का दान दिया जा सकता है, पर यदि हमारे शरीर में प्राण ही ना हो तो दान कैसा। इसी बात को ध्यान रखकर रक्तदान सबसे महान दान माना गया है, क्योंकि यह किसी मरते हुए प्राणी को जीवन देता है। बहनों, रक्तदान की आवश्यकता किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति या फिर नवप्रसूताओं को होती है। इस समय दिया गया रक्तदान सभी दानों से सर्वोच्च होता है। रक्तदान करने के लिए व्यक्ति का स्वयं स्वस्थ होना आवश्यक है। दानकर्ता को स्वयं कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए या फिर कोई संक्रमण नहीं होना चाहिए। साथ ही उसे अपने ब्लड ग्रुप की भी जानकारी होनी चाहिए। सामान्य रूप से 18 से 65 वर्ष की आयु का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। बहनों, हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकारें, स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस सोसाइटी, गैर सरकारी संगठन और बहुत सी सामाजिक संस्थाएं समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करती हैं।

महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रक्तदाताओं और ज़रूरतमंद मरीजों को जोड़ने के प्रयास भी बड़े हैं। इन पहलों से रक्तदान को जन आंदोलन बनाने में मदद मिल रही है। मैंने रक्तदान को व्यापक बनाने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। युवा रक्तदाता के रूप में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए युवाओं को बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बनना चाहिए। बहनों, रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है और इसे केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि रक्तदान को मानवता की सेवा का सबसे सरल, प्रभावी और महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। एक छोटा सा प्रयास किसी अजनबी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है और उसके परिवार को बड़ी राहत पहुंचा सकता है। रक्तदान समाज में सेवा, सहयोग और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने का अवसर है। इसका जरिया बने और नेकी की राह पर चलें। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, सुंदरता का कोई मापदंड नहीं होता। सुंदरता हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे आचरण से आती है। संघर्ष करता व्यक्ति हमेशा ही सुंदर दिखता है, पर बाहरी तौर पर हमारी त्वचा और हमारे बालों को विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। समय समय पर इनका भी ख्याल रखा जाना बेहद ज़रूरी है। नियमित देखभाल और पोषण से त्वचा स्वस्थ, सुंदर और चमकदार बनती है। त्वचा को स्वस्थ, सुंदर और चमकदार बनाने के कुछ उपाय जान लेते हैं। बहनों, त्वचा को जब अंदरूनी पोषण मिलता है तो वह त्वचा पर दिखाई भी देता है। इसलिए जितना हो सके पोषण से भरपूर भोजन खाना चाहिए। हरी सब्जियां, सलाद, सूखे मेवे और फलों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। इससे शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर सब मौजूद रहेगा, जिससे त्वचा स्वस्थ रहेगी। बहनों, पानी का सेवन भी त्वचा के लिए फिल्टर का काम करता है। साफ पानी का सेवन हमें स्वस्थ भी रखता है और त्वचा को कांतिमय भी बनाता है। पानी पीने से शरीर का अंदरूनी कचरा पसीने के रूप में निकल जाता है, जिससे त्वचा साफ रहती है। इसलिए पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। बहनों, काम के तनाव से, चिंता से या फिर बढ़ती उम्र से हमारी त्वचा बेजान हो जाती है, जिसके लिए हमें पर्याप्त नींद लेना भी ज़रूरी है। पर्याप्त गहरी नींद से त्वचा को पोषण मिलता है, आराम मिलता है, जिससे त्वचा स्वस्थ दिखाई देती है। त्वचा से जुड़े कुछ और टिप्स हम जानेंगे। आइए सुनते हैं पहले ये प्यारा सा गीत।

बहनों, गीत से पहले हम त्वचा की देखभाल के बारे में बात कर रहे थे। प्रदूषण और गर्मी के चलते त्वचा को बहुत हानि पहुंचती है। बारिश, गर्मी और उमस के मौसम में पसीना बहुत आता है, जिससे त्वचा बेजान सी हो जाती है। इससे बचाव के लिए दिन में 3 से 4 बार पानी से मुंह धोना चाहिए और रात को सोते समय भी चेहरा अच्छे से धोकर सोना चाहिए। इससे त्वचा का पसीना साफ होता रहेगा और चेहरे पर रूखापन नहीं रहेगा और चेहरे के पोर्स भी खुल जाएंगे। बहनों, गर्मी और उमस में बाल भी रूखे, बेजान और फ्रिजी हो जाते हैं। इसके लिए हफ्ते में बालों को कम से कम 2 बार तो धोना ही चाहिए और धोने से पहले अलसी का जल बालों पर आधा घंटा लगाना चाहिए। इससे बाल रेशमी, मुलायम और बिना चिपचिपे होंगे। बस ऐसे ही ब्यूटी टिप्स की मदद से हम अपना और अपनी त्वचा का ख्याल रख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इसी के साथ ये प्यारा सा गीत।

बहनों, मौसम के अनुसार रसोई में भी विशेष एहतियात बरतनी पड़ती है, वरना रसोई घर में नुकसान हो जाता है। और एक गृहिणी की कुशलता है कि वह नुकसान नहीं होने देती। बहनों, बारिश के मौसम में नमी बढ़ने से डिब्बे में रखा नमक भी गीला सा लगता है और सिल सा जाता है। इससे बचाव के लिए नमकदानी में या नमक के डिब्बे में चावल के कुछ दाने डालकर रख देने चाहिए। इससे नमक गीला नहीं होता और ख़राब भी नहीं होता। बहनों, इस मौसम में हर सब्जी की जान कसूरी मेथी भी नमी पकड़ लेती है और गीली हो जाती है। तो जब इसका इस्तेमाल करना हो, तब गर्म तवे पर कुछ सेकंड इसे सेक लें या फिर से कुरकुरी हो जाएगी और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहनों, इस मौसम में चीनी, नमक, बिस्किट, स्नैक्स, इन सभी को कांच के एयर टाइट जार में रखना चाहिए। ये जल्दी नमी नहीं पकड़ते और ताज़ा रहते हैं। इस मौसम में आटा भी जल्दी ख़राब होने लगता है। इसके बचाव के लिए आटे में तेज पत्ता डालकर रखना चाहिए। इससे आटा नमी नहीं पकड़ेगा और उसमें कीड़े भी नहीं आएंगे। बस ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बारिश के मौसम में अपना रसोई घर संभाल सकते हैं। और सुनते हैं इसी के साथ ये प्यारा सा गीत।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।

0: में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
5: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर

0: टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
1: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
3: भारत रत्न डॉक्टर APJ

0: ये अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
3: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
1: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

जीने की राह फिल्म का गीत सुना, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा गीत, संगीतकार SD बर्मन। फिल्म का नाम है गाइड।

संगीतकार शंकर जयकिशन, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, फ़िल्म का नाम है धरती।

धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज, मजरू के लिखे गीत को संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।
1: ये आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। फिल्म का नाम है मिलन।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनें जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज़ में फिल्म सावन को आने दो का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त करने की श्रीपाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 3 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण उर्दू सर्विस के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज़ होता है।

0: मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन निलेकानी की क़यादत में आला अख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील दिए जाने का ऐलान किया है। हुकूमत ने लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पेश किया। अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी कार्रवाइयां रोकने के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। ISSF आलमी कप में ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में भारत की निशानेबाज ईशा सिंह ने सोने का तमगा जीता है, मनु भाकर को कांसे का तमगा मिला और 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन निलेकानी की क़यादत में एक आला अख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तिहानात को काबिल भरोसा बनाया जा सके। ये टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डीका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामकोटी पर मुश्तमिल होगी।

अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृतलाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज अपोजिशन पार्टियों पर ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने और सरकारी इम्तहान से मुतालिक बिल पर बहस से बचने का इल्जाम लगाते हुए उनकी शदीद नुक्ताचीनी की है। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल उन अफराद के खिलाफ सख्त और मुकर्रर वक्त में सजा का तरीक़ाकार फराहम करेगा जो पेपर लीक में मुलव्वस पाए जाएंगे। जनाब रिजिजू ने कहा कि ऐसे अहम मामले पर बहस से बचने से मुल्क के तलबा को गलत पैगाम जाएगा। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर जोर दिया कि वो तलबा के जज्बात का एहतराम करें और मुजवजा कानून पर एक तामीरी बहस में शामिल हों। सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल का मकसद सरकारी इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के एक्ट 2024 में तरमीम करना है। दोपहर 12 बजे पहले इल्तवा के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलुकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मस्कूरा बिल ऐवान में पेश किया। बिल पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान नीट मामले पर तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई पर बहस का मुतालबा करते हुए अपनी नशस्तों से खड़े हो गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अरकान नीट मामले पर बहस का मुतालबा कर रहे थे और ऐवान में पेश किया गया ये बिल इसलाहत की जानिब एक इब्तदाई कदम है। उन्होंने कहा कि यह बिल नहायत अहमियत का हामिल है और इस पर जामे बहस जरूरी है जो ऐवान की इज्तिमाई राय और कौम के जज्बात की अक्कासी करेगी। जनाब बिरला ने अरकान से अपील की कि वो अपने ख्यालात और तजावीज पेश करें ताकि मुल्क के इम्तिहानात के निजाम से मुतालिक मसाइल के मौसर हल के लिए मुनासिब इकदाम किए जा सके। उन्होंने तमाम अरकान से ताउन करने और इस अहम बिल पर बहस में सरगर्मी से हिस्सा लेने की भी दरख्वास्त की। ताहम अपोजिशन अरकान तलबा के एहतजाज पर मुबैना पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामा आरई जारी रहने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। आज भारत के साबिक सदर जमहूरिया और नामवर साइंसदान भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर अब्दुल कलाम दुनिया के अजीम तरीन असातजा में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने भारत के दिफाई और खलाई तहकीक के फरोग में इंतहाई अहम रोल अदा किया। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के शहर रामेश्वरम में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में महारत हासिल की। उन्होंने भारत के पहले घरेलू सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV की तैयारी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से नुमाया किरदार अदा किया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को कामयाबी के साथ सतह जमीन से करीब मदार में पहुंचाया और भारत को खलाई मुल्कों के खुसूसी क्लब में शामिल किया। साबिक सदर जमहूरिया ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों की तैयारी और उन्हें अमली तौर पर मौसर बनाने में भी अहम रोल अदा किया। उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के बाहमी ताउन के जरिए अहम टेक्नोलॉजीज में मुल्क की खुद किफालत को मुस्तहकम किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम मुल्क के मुमताज साइंसदानों में शुमार होते हैं। उन्हें 23 यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों की जानिब से एजाजी डॉक्टरेट की डिग्रियां अता की गईं। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें सदर मुंतखब हुए। एक छोटे से शहर से लड़के ने मुल्क के सदर बनने तक का उनका यह सफर हमेशा नौजवानों के लिए हौसला अफजा और मिशाल राह रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खत्म हफ्ता में अमेरिका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर फौजी हमले रोके जाने के पेश नज़र आलमी खाम तेल की कीमतों में आज 5% से ज़्यादा की कमी आई। ब्रेंट खाम तेल का आलमी इशारिया 5.3% गिरकर 91 अमरीकी डॉलर और 68 सेंट फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल में 5.4% से ज़्यादा की कमी आई। ईरान की जानिब से इशारा दिए जाने के बाद कि जब तक अमेरिका भी फौजी कार्रवाई रोके रखता है तब तक वो मजीद हमले नहीं करेगा, जिससे इस

0: बात की उम्मीद पैदा हो गई है कि इस महाजराई का एक सिफारती हल निकल सकता है। इसके पेश नज़र खाम तेल की कीमत में कमी आई है। ईरान की पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने यूक्रेन को खबरदार किया है कि खबरों के मुताबिक बुहराए कैस्पियन में एक ईरानी कमर्शल बहरी जहाज पर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ईरान पर किसी भी हमले की कीमत चुकानी होगी और उन्होंने यूक्रेन से कहा कि वो जवाबी कार्रवाई का सामना करेगा। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकची की जानिब से यूक्रेन पर बहरी जहाज पर हमले का इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद उनकी ये राय जरी सामने आई है, जिसमें एक मल्ला हलाक और एक दीगर जख्मी हो गया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब अराकची ने यूक्रेन के सदर व्लादिमिर जेलेंस्की पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमले का हुक्म दिया था। इससे पहले ईरान ने तेहरान में यूक्रेन के कारगुजार नाजिमुल उमूर को इस वाक़े पर बाज़ाब्ता एहतजाज दर्ज करने के लिए तलब किया था। नागालैंड में जारी मानसून से मुतालिक वाक़यात के सबब बड़े पैमाने पर सड़क रबते में रुकावट पैदा हो जाने के पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में भारतीय फिजाइया फंसे हुए लोगों को बाहिफाजत निकालने की खातिर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। शूटिंग में आज चीन के हांगजू में ISSF आलमी कप के खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में भारत की ईशा सिंह ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने ओलंपिक मेडल याफ्ता मनु भाकर को पीछे छोड़ दिया और मनु भाकर को कांसे का तमगा मिला। 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स हर किसी के लिए तहरीक का बायस है, जिससे इसमें शामिल होने वाले मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। इस 7 रोज़ा टूर्नामेंट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, केन्या और जमैका जैसे ममालिक के शिरकत करने का इम्कान है, जो कई जुमरों में मुकाबला करेंगे। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन निलेकानी की क्यादत में आला अख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील दिए जाने का ऐलान किया है। हुकूमत ने लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी कार्रवाइयां रोकने के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। ISSF आलमी कप में खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में भारत के निशानेबाज ईशा सिंह ने सोने का तमगा जीता है, मनु भाकर को कांसे का तमगा मिला और 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामाइन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मदन मोहन की मौसीकी सजाए नगमा फिल्म है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे।

आरजू फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया था शंकर जयकिशन ने। और सामने जी आप सुनिए फागुन फिल्म का नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, नगमा निगार कमर जलालाबादी, मौसीकार ओपी नैयर।

फिर ये तड़प कैसे, इतना तो बता जाना। फिर ये तड़प कैसे, इतना तो बता जाना।

0: रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: सामिन इस्लाम के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम कहकशां। आज इस प्रोग्राम में सुनिए धड़कन फिल्म की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है मोहतरमा इमराना शाहीन ने।

अंजलि यानी अदाकारा शिल्पा शेट्टी एक अमीर बाप की बेटी है और देव यानी अदाकार सुनील शेट्टी एक गरीब लड़का। देव अपने वालिद के बारे में कुछ नहीं जानता। अंजलि और देव एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं।

और फिर एक दिन देव अंजलि को अपनी माँ से मिलवाने लेकर जाता है। वहां अंजलि को पता चलता है देव का बचपन बहुत तकलीफ में बीता था। उसकी माँ ने अंजलि को सारी हकीकत बताकर उससे वादा किया कि वो हमेशा देव का साथ निभाएगी। अंजलि को देव के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है। इधर वो जैसे ही घर लौटती है, उसके वालिद उसे बताते हैं वो दिल्ली में उसका रिश्ता तय करके आए हैं। ये खबर सुनकर वो घबरा जाती है और वो उसी वक्त अपने वालिद से कहती है, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैंने किसी और से वादा किया है। ये कहकर वो अपनी और देव की मोहब्बत के बारे में बता देती है। अंजलि की जिद के आगे इसके वालिद को झुकना पड़ता है और वो उसी वक्त अंजलि से कहते हैं कि वो देव से मिलना चाहते हैं। उधर अंजलि देव को घर बुलाती है अपने वालिद से मिलवाने के लिए, लेकिन देव की गरीबी देखकर उसके वालिद उसको बेइज्जत करते हैं, जिससे देव का दिल टूट जाता है। लेकिन जाते वक्त वो अंजलि से कहता है, वादा करो कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। उस वक्त अंजलि उसको समझा कर घर भेज देती है और अब वो तय करती है कि अपने घर को छोड़कर वो देव के पास हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है

उसके वालिद कहते हैं, ये जो इज्जत हमने बरसों की कड़ी मेहनत के बाद बनाई है, हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। तुम चाहो तो उसे अपने पैरों तले कुचल कर जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले मुझे मार कर जाओ। मैंने तुम्हें हमेशा बेटा समझा, लेकिन मैं भूल गया था, बेटी कभी बेटा नहीं बन सकती। उस वक्त अपने वालिद का दर्द उनके कहे अल्फाज से अंजलि एकदम से टूट जाती है। उसे एहसास होता है वो उनका दिल दुखाकर जिस रास्ते पर जा रही है वहां वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। और उसी पल अंजलि देव से जाकर कहती है, मैं अपने वालिदैन का दिल नहीं तोड़ सकती, मैं वही शादी करूंगी जहां वो चाहते हैं। देव उसकी ये बात सुनकर उससे याद दिलाता है, उसने उसकी माँ से वादा किया था कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। तब अंजलि उससे कहती है, मैंने भी अपने वालिदैन से वादा किया है। अंजलि के इस इनकार को सुनकर देव उससे कहता है, अब वो इसके बिना जी नहीं पाएगा। मगर अंजलि उसकी बात सुनकर उससे कहती है, एक रिश्ता खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। ये कहकर अंजलि देव की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। ये खबर सुनकर देव की मां मर जाती है। उधर अंजलि और राम यानी अदाकार अक्षय कुमार की शादी हो जाती है।

अंजलि जब शादी होकर राम के घर आती है तो वहां देखती है उसकी सौतेली माँ और भाई बहन सब राम की दौलत को हड़पने के लिए साजिश रच रहे हैं। वो इस बात को राम से कहती है तो राम उसकी बात पर यकीन नहीं करता कि उसके घर वाले उसे झूठी मोहब्बत का दिखावा करते हैं, क्योंकि राम एक फर्माबरदार लड़का था। इधर अंजलि के साथ राम की माँ भी बहुत बदसलूकी करने लगती है, लेकिन राम हर बार उसको समझा देता है।

तंग आकर एक दिन अंजलि अपने दिल की बात उससे बता देती है कि वो ये शादी करना नहीं चाहती थी। तब राम उससे वादा करता है, हम दोनों दोस्तों की तरह रहेंगे।

0: शिकायत पता चलती है तो वो अपने घर
1: हम बात
0: के
1: कर रहे थे चंचल
0: साफ
1: भरोसे की, भरोसे की और बहुत सारे संदेश आए हैं। आगे उसमें ये लिखा है एक हमारे एक श्रोता ने कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा।
2: क्या बात है।
1: और एक और संदेश कुछ इसी शायराना अंदाज में है कि रिश्ते दिल टूटने से नहीं भरोसा टूटने पर बिखेरते हैं।
2: बहुत कहते ना कि छोटे में इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है। और एक और बड़ा अच्छा संदेश है, इसमें लिखा गया है कि कोर्स की किताब में सुदर्शन द्वारा रचित कहानी हार की जीत पड़ी थी, जो हमें सिखाती है धोखाधड़ी से भले ही क्षणिक जीत मिल जाए लेकिन अंततः इंसान इंसानियत और सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी में डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े रोजी बनाकर बनकर हत्या लेता है तो बाबा भारती कहते हैं कि तुम ये घोड़े को ले जाओ पर ये बात किसी को बताना मत। लोगों को गरीब बेसहारा लाचार

0: आंखों पर से भरोसा उठ जाएगा और कोई कभी किसी की मदद नहीं करेगा। ये कहानी सबने पढ़ी होगी और वाकई में बहुत अच्छा संदेश देती है ये कहानी।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारा संदेश ये आया है, ये कहता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। दूसरों पर भरोसा करना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वयं को भरोसेमंद बनाना है। जब हम हर परिस्थिति में अपने दायित्व निभाते हैं और लोगों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं तभी लोग निसंकोच हम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम केवल दूसरों से भरोसे की अपेक्षा न करें बल्कि स्वयं ऐसे इंसान बने जिस पर हर कोई हम पर विश्वास कर सके।
0: इसी तरह से एक और संदेश है, इसमें हमारे श्रोता का कहना है कि आज सुबह मेरा रेडियो खराब हो गया था तो रेडियो सुनना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, पर सुबह एक व्यक्ति दुकान पर आया जो रेडियो मरम्मत करना जानता था। वो कोई सामान लेने आया था तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज मेरा रेडियो नहीं बज रहा है, तो उसने मुझे बड़ा पक्का विश्वास दिलाया कि मैं एक घंटे के बाद आ रहा हूँ और सही कर दूंगा।
2: पर राम और अंजलि की शादी की पार्टी होती है, उसी पार्टी में देव अपनी दोस्त के हाथ अंजलि को बहुत कीमती तोहफा भिजवाता है।

0: एक व्यक्ति दुकान पर आया जो रेडियो मरम्मत करना जानता था। वो कोई सामान लेने आया था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज मेरा रेडियो नहीं बज रहा है। तो उसने मुझे बड़ा पक्का विश्वास दिलाया कि मैं एक घंटे के बाद आ रहा हूँ और सही कर दूंगा।
1: पर राम और अंजलि की शादी की पार्टी होती है, उसी पार्टी में देव अपनी दोस्त के हाथ अंजलि को बहुत कीमती तोहफा भिजवाता है। इस तोहफे को देखकर वो दोनों हैरान थे, लेकिन इस बात से अभी तक अनजान थे कि देव की गिनती बहुत रईस आदमी में होती है। और फिर एक दिन देव अपने घर एक पार्टी रखता है, उसमें राम और अंजलि को भी बुलाता है। अंजलि जब इस पार्टी में आती है तो वहां देव की बिजनेस पार्टनर शीतल यानी अदाकारा महिमा चौधरी से देव के बारे में पता चलता है।

उस पार्टी में देव अंजलि से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। मजबूर होकर अंजलि उससे मिलने जाती है। तब देव उसे कहता है वो आज तक उसे नहीं भुला सका है। उससे मिन्नत करता है कि वो उसके पास लौट आए, लेकिन अंजलि साफ इनकार कर देती है। बस यही बात देव को नागवार गुजरती है और वो उसके देवर के साथ मिलकर राम के बिजनेस में पार्टनर बन जाता है। नतीजा ये होता है कि एक दिन राम के सारे कारोबार पर बाबी का कब्जा हो जाता है और उधर उसकी हवेली नीलाम हो जाती है। उसको खरीदने वाला देव होता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी राम खामोश रहता है। वो अंजलि को लेकर अपने ड्राइवर के यहाँ रहने लगता है। उसको बेघर देखकर देव बहुत खुश था।

अंजलि के वालिद को जब ये बात मालूम पड़ती है तो वो अंजलि से मिलने आते हैं। तो उसके घर में देव को देखकर वो अब समझ जाते हैं राम को घर से बेघर करने वाला देव है। गुस्से में आकर वो देव को बुरा भला कहते हैं और अब अंजलि से मिलकर उसे देव की सारी बात बता देते हैं। उन दोनों की बातें राम सुन लेता है, लेकिन वो अंजलि से नाराज नहीं होता, बल्कि समझाते हुए कहता है, जो बीत गया वो कल था, अब हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। इधर देव हर पल अंजलि के इंतजार में था कि कब वो उसके पास लौटे।

रहे थे। लेकिन अंजलि दिल ही दिल में कुछ और तय कर चुकी थी। वो अब देव से आखिरी बार ये कहने के लिए जाती है, तुम सिर्फ मेरे दोस्त थे। उससे इल्तिजा करती है, मेरा घर बसने दो, हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ। उसकी ये बात सुनकर देव उसे कहता है, मैं हार गया, ये कैसे हो सकता है? कोई इतनी मोहब्बत करे और उसे ठोकरे और दर्द के सिवा कुछ न मिले, मैं कैसे मान लूं? मैं जीत कर भी हार गया, राम हार कर भी जीत गया। उसकी ये बातें राम सुन लेता है और वो उसी वक्त देव से कहता है, कौन कहता है तुम हार गए? दो इंसानों के बीच दुश्मनी नहीं दोस्ती भी हो सकती है। तकदीर ने एक पल में तुम्हारे सारे ख्वाब तोड़ दिए, तो मैं कैसे तुम्हें अपना दुश्मन मान लूं? आज राम की इन बातों से देव को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ चुका था, जो भी हुआ वो तकदीर का लिखा था। अपनी गलती का एहसास होते ही अब वो शीतल के साथ वापस लंदन जाने का फैसला करता है। देव शीतल के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है और इधर राम अंजलि के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगता है।

कहकशां प्रोग्राम में सामान्य भी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया था मोहतरमा इमराना शाहीन ने। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी सजाए नगमा फिल्म है आन मिलो सजना।

काशी फिल्म का नाम आप सुन रहे थे यासिर देसाई की आवाज़ में, नगमा निगार थे शब्बीर अहमद, मौसीकार धीरज कुमार। और अब सुनिए आशिकी टू फिल्म का नगमा अंकित तिवारी की आवाज़ में, जिसे मौसीकी सजाया है अंकित तिवारी ने, नगमा निगार संदीप नाथ।

और प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सूरज और चांद फिल्म का नगमा, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

पर इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ईरान पर किसी भी हमले की कीमत चुकानी होगी और उन्हें यूक्रेन से कहा कि जवाबी कार्रवाई का सामना करें। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराकची की जानिब से यूक्रेन पर बहरी जहाज पर हमले का इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद उनकी ये रायजनी सामने आई है, जिसमें एक मल्ला हलाक और एक दीगर जख्मी हो गया। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब इराकची ने यूक्रेन के सदर जेलेंस्की पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमले का हुक्म दिया था। इससे पहले ईरान ने तेहरान में यूक्रेन के कारगुजार नाजिमुल उमूर को इस वाक़े पर बाज़ाब्ता एहतियात दर्ज करने के लिए तलब किया था। ख़त्म हफ्ते में अमेरिका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर फौजी हमले रोके जाने के पेश नज़र आलमी खाम तेल की कीमतों में आज तकरीबन 6% की कमी आई। ब्रेंट खाम तेल की आलमी इशारिया 6.1% गिर कर 90 अमरीकी डॉलर 87 सेंट फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल में 5.8% से ज़्यादा की कमी आई और ये 84 अमरीकी डॉलर और 14 सेंट फी बैरल हो गया। ईरान की जानिब से इशारा दिए जाने के बाद कि जब तक अमरीका भी फौजी कार्रवाइयाँ रोके रखता है तब तक वो मजीद हमले नहीं करेगा, जिससे इस बात की उम्मीद पैदा हो गई कि इस महाज आरई का एक सिफारती हल निकल सकता है। इसके पेश नज़र खाम तेल की कीमत में कमी आई है। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लगने से तकरीबन 3 लाख लोगों को जंगलाती इलाकों से निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। इधर आग बुझाने वाला अमला तेजी से फैलने वाली आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। फ्रांस में तकरीबन 2,20,000 लोगों को निकालकर महफूज मकाम पर पहुँचाया जा चुका है, जबकि आग के शोले तारीखी शहर बॉर्डोएक्स के नहवा की तरफ बढ़ रहे हैं। भयानक आग से एटलांटिक साहिल पर कैफ्रीज जजीरे नुमा तबाह हुआ है और आग शहर के तकरीबन 15 किलोमीटर अंतर तक फैल गई है। ब्रोडेक्स के मेयर थॉमस कैंजेव ने बताया कि फिलहाल शहर से लोगों को निकालने का कोई मंसूबा नहीं, लेकिन हुक्काम सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए हैं। फ्रांस के वजीर खारजा वजीर दाखला लॉरेंट नूज ने कहा है कि अगर आग काबू से बाहर है और ब्रोडेक्स के शहरी इलाके की तरफ बढ़ रही है, उन्होंने सूरतहाल को इंतहाई गैर साजगार बताया। रात में पुलिस मार्स प्राइम और सीएस कस्बों में घर घर गई और उसने एहतियात के तौर पर वहाँ रहने वालों को बचाया। पड़ोसी मुल्क स्पेन में 75,000 से ज़्यादा लोगों को निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है, जबकि 30,000 लोगों को घरों के अंदर रहने का हुक्म दिया गया है। स्पेन के वजीर आजम पेट्रो सांचेज ने अवीला सूबे में आग से मुतासर इलाकों का दौरा किया, जबकि मैड्रिड और टेलीडो के साथ साथ 3 वस्ती सूबे मुतासर हुए। उधर हंगामी तौर पर आग बुझाने वाला अमला आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तहानात की असलाहत के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकानी की क़्यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स इम्तहानात की असलाहत पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तहानात को काबिल भरोसा बनाया जा सके। ये टास्क फोर्स साबिक IB डायरेक्टर तपन डिगा, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोडी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। आज भारत साबिक सदर जमहूरिया और नामवर साइंदा भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर अब्दुल कलाम दुनिया के अजीम तरीन असातिज़ा में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने भारत के दिफाई खलाई तहकीक के फ़रोग में इंतहाई अहम रोल अदा किया। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के शहर रामेश्वरम में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग महारत हासिल की। उन्होंने भारत के पहले घरेलू सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV की तैयारी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से नुमाया किरदार अदा किया, जिसने जुलाई सन 1980 में रोनी सैटेलाइट को कामयाबी के साथ सतह ज़मीन से करीब मदार में पहुँचाया और भारत को खलाई मुल्कों के खसूसी कलम में शामिल कराया। साबिक सदर जमहूरी ने अग्नि और पृथ्वी मिज़ाइलों की तैयारी और उन्हें अमली तौर पर मौसर बनाने में भी अहम रोल अदा किया। उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के बाहमी तआवुन के जरिए अहम टेक्नोलॉजीज़ में मुल्क की खुद किफालत को मुस्तहकम किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम के मुमताज़ साइंसदान में शुमार होते हैं। 29 यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों की जानिब से एजाजी

0: डायरेक्टरेट की डिग्रियां अता की गईं। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें सदर बने। एक छोटे से शहर के लड़के से मुल्क के सदर बनने तक का उनका सफर हमेशा नौजवानों के लिए हौसला अफजा मिसाल ले रहा है। उनकी बरसी हमें उनकी अवदार, कामयाबी और फलाफानी वरसे की याद दिलाती हैं। ग्लासगो में दौलत मुश्तरक खेलकूद मुकाबले में भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने मुल्क के लिए सोने का तमगा जीता। उन्होंने खवातीन के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग जुमरे में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर रिकॉर्ड कायम किया। पैरा पावर लिफ्टर जानदू कुमार ने टूर्नामेंट के इफ्तिताही दिन मर्दों के हैवी वेट मुकाबले में कांसे का तमगा जीतकर मुल्क को पहला तमगा दिलाया। शूटिंग में आज चीन के हांगशू में ISSF आलमी कप के खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में भारत की ईशा सिंह ने सोने का तमगा जीता। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। मुश्तरक अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जारी कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ाम आयद किए हैं। ईरान की पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज ने बोहरा कैप्सिम ने एक ईरानी कमर्शल बहरी जहाज पर हमले के लिए यूक्रेन को खबरदार किया है। खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पज़ीर होती हैं। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम युवाणी के साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फिल्मी गीत और साथ ही दोस्तों हम करेंगे कुछ विषयों पर चर्चा। तो लीजिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों, शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, यह कहा गया नेल्सन मंडेला के द्वारा। तकनीक स्वयं में महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वह मानव को कितना बेहतर बनाती है। दोस्तों, शिक्षा के स्वरूप, पद्धति और पहुंच को पूरी तरह बदल दिया है। इस विषय पर हम बात करेंगे, शिक्षा में तकनीक की भूमिका। साथियों, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही। कभी शिक्षा केवल पुस्तकों, ब्लैक बोर्ड और कक्षा तक ही सीमित थी, लेकिन आज इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, AI टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल संसाधनों ने सीखने सिखाने की प्रक्रिया को नई दिशा दी है। कुछ दशक पहले तक कक्षा में शिक्षक पढ़ाते थे और विद्यार्थी केवल सुनते थे। शिक्षा का केंद्र शिक्षक होता था, लेकिन आज शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी बन गया है। टेक्नोलॉजी ने शिक्षा को संवेदात्मक बना दिया है। आज विद्यार्थी वीडियो देख सकते हैं, डिजिटल मॉडल समझ सकते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, वर्चुअल लैब में प्रयोग कर सकते हैं, अपनी गति से सीख सकते हैं। दोस्तों, COVID-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि जब विद्यालय बंद हो गए, तब तकनीक ने शिक्षा को रुकने नहीं दिया। ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्चर, डिजिटल नोट्स और वर्चुअल मीटिंग्स ने शिक्षा की निरंतरता बनाए रखी। इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि शिक्षा तकनीक केवल एक विकल्प नहीं बल्कि शिक्षा की आवश्यकता बन चुकी है। हमारे देश जैसे विशाल देश में हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना एक बड़ी चुनौती। दोस्तों, तकनीक ने इस चुनौती को काफ़ी हद तक कम किया है। आज दूर दराज के गांव में

हर एक विद्यार्थी भी इंटरनेट के माध्यम से श्रेष्ठ शिक्षकों के व्याख्यान सुन सकता है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा, स्वयं, ई पाठशाला, पीएम विद्या विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। इससे आर्थिक और भौगोलिक बाधाएं भी कम हुई है। यदि शिक्षा तक पहुंच सबकी होगी, तभी विकास सबका होगा। दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा ने सीखने के अवसरों का विस्तार किया है। इससे समय की बचत, कहीं भी सीखने में सुविधा, कम खर्च, रिकॉर्डेड लेक्चर और व्यक्तिगत गति से अध्ययन किया जा सकता है। आज लाखों विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के कारण पारंपरिक कक्षाएं स्मार्ट क्लासरूम में बदल रही हैं। इन कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, ऑडियो वीडियो सामग्री, डिजिटल कंटेंट, इन सभी का यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों, जब विद्यार्थी किसी विषय को देखकर और सुनकर समझते हैं, तो उनकी समझ और स्मरण शक्ति दोनों बढ़ती है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि यदि भूगोल में ज्वालामुखी के बारे में केवल पढ़ाया जाए तो समझ सीमित हो जाएगी, लेकिन यदि उसका 3D वीडियो दिखाया जाए तो अवधारणा और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। आज AI शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणालियाँ व्यक्तिगत सीखने की योजना बनाती है, कमजोर विषयों की पहचान बनाती है, त्वरित प्रतिक्रिया करती है, अभ्यास प्रश्न तैयार करवाती है। दोस्तों, तकनीक तभी सफल है जब मनुष्य की क्षमता को बढ़ाए और उसका स्थान ले। पहले पुस्तकें सीमित संख्या में उपलब्ध होती थी, आज डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से लाखों पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध है। विद्यार्थी किसी भी समय और कहीं भी अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकता है। इससे ज्ञान तक पहुंच आसान हुई है। तकनीक ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा के नए द्वार खोले हैं। स्क्रीन रीडर, ऑडियो बुक्स, स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी, सांकेतिक भाषा के वीडियोस, इन साधनों ने दोस्तों शिक्षा को अधिक समावेशी बनाया है। जहाँ टेक्नोलॉजी के अनेक लाभ हैं, वहीं कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा, मानवीय संपर्क में कमी। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी शिक्षक का स्थान ले लेगी, लेकिन यह धारणा सही नहीं। टेक्नोलॉजी केवल एक साधन है, शिक्षक ही वह मार्गदर्शक है जो विद्यार्थियों को सही दिशा देता है। एक कंप्यूटर जानकारी दे सकता है, लेकिन प्रेरणा नहीं। एक ऐप आपको उत्तर बता सकता है, लेकिन जीवन के मूल्य नहीं सिखा सकता। दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि ज्ञान तक पहुंचाने का मार्ग होता है। शिक्षा में टेक्नोलॉजी की भूमिका जरूरी है। यह शिक्षा को अधिक सुलभ, प्रभावी और रोचक, समावेशी बनाती है। दोस्तों, शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है। टेक्नोलॉजी उस पासपोर्ट को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने वाली शक्ति। जो युवा टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना सीख जाता है, वह केवल अपना भविष्य नहीं बदलता, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। दोस्तों, एक छोटे से गांव का छात्र आर्थिक रूप से कमजोर था। उसके पास महंगी कोचिंग का साधन नहीं था। उसने इंटरनेट और निशुल्क ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया। यूट्यूब पर लेक्चर्स देखे, ऑनलाइन टेस्ट दिए, डिजिटल नोट्स बनाए। लगातार मेहनत के बाद उसने प्रतियोगी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। यह कहानी बताती है कि यदि इच्छा शक्ति हो तो तकनीक सफलता का सेतु बन सकती है। लीजिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बातों का सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा। आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रेरक विचारों से प्रेरित संदेश। आज हम याद कर रहे हैं भारत के महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जिनकी पुण्यतिथि हमें उनके विचार, उनके जीवन और उनके योगदानों को फिर से स्मरण करने का अवसर देती है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम का जीवन किसी प्रेरक कहानी से कम नहीं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर के एक परिवार में हुआ। उनके पिता नाव चलाने का कार्य करते थे और परिवार भी आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था। लेकिन दोस्तों, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, कलाम जी ने सपने बहुत बड़े देखे थे। वे बचपन से ही आकाश की ओर देखते और सोचते थे कि उड़ान भरना कैसे होता होगा। दोस्तों, उनके भीतर विज्ञान के प्रति गहरी जिज्ञासा थी। एक बार उन्होंने कहा था, मैं हमेशा अपने सपनों को पंख देने में विश्वास करता था, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दोस्तों, डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही प्राप्त की। बाद में उन्होंने तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस इंजीनियर की पढ़ाई की। उनकी पढ़ाई का सफर आसान नहीं था, आर्थिक कठिनाइयाँ थी, संसाधनों की कमी थी। लेकिन दोस्तों, उनके भीतर सीखने की आग कभी खत्म नहीं हुई। एक शिक्षक ने एक बार उन्हें कहा कि वे औसत छात्र हैं, लेकिन कलाम जी ने इसे चुनौती के रूप में लिया और अपने जीवन को असाधारण बना दिया। डॉक्टर कलाम ने DRDO और इसरो में काम करते हुए भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया। वे भारत के SLV-3 प्रोजेक्ट के प्रमुख थे, जिसने भारत के पहले उपग्रह रोहिणी को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। उनका मानना था कि विज्ञान मानवता की सेवा के लिए है, विनाश के लिए नहीं। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो जनता के बीच रहना पसंद करते थे, विशेषकर युवाओं के बीच। वे कहा करते थे, युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी हमेशा बच्चों से संवाद करते, बच्चों को सपने देखने के लिए प्रेरित किया करते। डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा योगदान केवल विज्ञान या राजनीति तक सीमित नहीं था दोस्तों, बल्कि उन्होंने करोड़ों युवाओं के मन में आत्मविश्वास जगाया। वे मानते थे कि हर युवा में अपार क्षमता होती है, बस उसे सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। उनका प्रसिद्ध विचार, अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो मुझे लगता है कि 3 प्रमुख लोग यह कर सकते हैं, माता, पिता और शिक्षक। एक प्रेरक प्रसंग जब कलाम ने छात्र को बदला। दोस्तों, डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़ी एक प्रेरक घटना। एक बार एक

छात्र ने उनसे कहा कि वह जीवन में असफल महसूस कर रहा है और आगे कुछ नहीं कर पाएगा। कलाम जी ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुमने कभी पेड़ को देखा है? वह धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक दिन विशाल बन जाता है। तुम्हें भी समय देना होगा। उन्होंने उस छात्र को एक छोटा सा कार्य दिया, हर दिन एक नया विचार लिखना। दोस्तों, कुछ वर्षों बाद वही छात्र एक सफल वैज्ञानिक बना और उसने कहा कि उसकी सफलता का बीज कलाम ने बोया था। दोस्तों, डॉक्टर कलाम शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं मानते, बल्कि वे इसे चरित्र निर्माण का साधन भी मानते थे। वे कहते थे, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनाना भी है। उनका मानना था कि यदि शिक्षा में नैतिकता और मूल्य नहीं, तो वह अधूरी है। डॉक्टर कलाम ने कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी, जिसमें प्रमुख है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख, इग्निटेड माइंड्स, जागृत युवा मन, इंडिया 2020। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे। वे हमेशा की तरह युवाओं को प्रेरित कर रहे थे और तब उन्होंने कहा, सपने देखो, सपने सोचो, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा था जो बहुत गरीब परिवार से था। उसने पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। डॉक्टर कलाम ने भी अपने भाषण में जो लाइन कही थी, उस बच्चे ने वो सुना और इस वाक्य ने उस बच्चे की ज़िंदगी बदल दी। उसने पुराने अखबारों से पढ़ाई करना शुरू किया, दूसरों से किताबें मांगी, इंटरनेट से जाकर विज्ञान के वीडियो देखे। कई वर्षों की मेहनत के बाद वह बच्चा एक इंजीनियर बन गया। जब अपने गांव में लौटा तो उसने कहा, अगर डॉक्टर कलाम जी न होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। दोस्तों, डॉक्टर कलाम हमेशा युवाओं से कहते थे, बड़े सपने देखो, कठिन परिश्रम करो, असफलता से मत घबराओ, ईमानदारी से आगे बढ़ो। वे मानते थे कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। डॉक्टर कलाम का जीवन विज्ञान और तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, हमेशा वह कहा करते थे, तकनीक तभी उपयोगी है जब वह मानवता की सेवा करे। उनका विचार था कि विज्ञान एक सुंदर उपहार है, लेकिन इसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वे एक विचार थे, एक प्रेरणा थे, एक ऐसा प्रकाश थे जो आज भी करोड़ों दिलों को रोशन कर रहा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कभी बाधा नहीं बनती, सपने कभी छोटे नहीं होते, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने दिखाए उनके दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। उनके कहे गए विचारों में एक विचार कि यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, नेतृत्व वह नहीं जो पद से मिलता है, नेतृत्व वह है जो विचारों से जन्म लेता है। एक सच्चा नेता वह है जो दूसरों को अपने सपनों में शामिल कर ले। एक प्रेरणादायक विषय नेतृत्व क्षमता, जो हर युवा के जीवन, उनके भविष्य और व्यक्तिगत निर्माण की गहराई से जुड़ा है। लीजिए हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल्स की। एक विचार, एक दृष्टि और एक जिम्मेदारी। नेतृत्व यानी लीडरशिप केवल किसी पद, किसी कुर्सी या किसी अधिकार का नाम नहीं। दोस्तों, लीडरशिप मीन्स वास्तविक अर्थ है दूसरों को प्रेरित करना, सही दिशा दिखाना, सामूहिक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। एक लीडर वह नहीं जो रास्ता जानता है, एक लीडर वह है जो रास्ता बनाता है। इट मीन्स जिम्मेदारी लेना, निर्णय क्षमता रखना, दूसरों को साथ लेकर चलना और सबसे ज़रूरी है स्वयं उदाहरण बनना। हर बड़ा लीडर सबसे पहले स्वयं का नेतृत्व करना सीखता है। यदि व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। दोस्तों, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा नेता बनता है। स्वयं नेतृत्व के लिए ज़रूरी है आत्म अनुशासन, समय का प्रबंधन और सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच और साथ ही निरंतर सीखने की इच्छा। आत्मविश्वास नेतृत्व की रीढ़ होता है। दोस्तों, बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकता। एक प्रसिद्ध विचार है कि आत्मविश्वास वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है, और एक लीडर वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर निर्णय ले सके और अपनी टीम को आगे बढ़ा सके। दोस्तों, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से, प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। संचार केवल बोलना नहीं बल्कि सुनना भी होता है। पहले सुनता है, फिर समझता है और फिर बोलता है। यह एक विचारक होता है। संचार कौशल में शामिल है स्पष्ट भाषा होना, सक्रिय होकर सुनना, सहानुभूति और प्रभावी अभिव्यक्ति। नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है सही समय पर निर्णय लेना। एक गलत टीम को प्रभावित कर सकता है एक निर्णय, जबकि एक सही निर्णय सफलता की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, निर्णय लेने की क्षमता ही नेता को भीड़ से अलग बनाती है। कोई भी लीडर अकेले सफल नहीं होता, सफलता हमें

हमेशा टीम के सहयोग से मिलती है। एकता में ही अनेकता सबसे बड़ी शक्ति होती है। टीम वर्क वह ईंधन है जो साधारण लोगों को असाधारण परिणाम तक पहुंचा सकता है। नेतृत्व का अर्थ केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होता है। पहले जिम्मेदारी लेना और बाद में श्रेय देना। दोस्तों, असफलता नेतृत्व का हिस्सा है। एक महान नेतृत्व का नेता ने असमानताओं का सामना भी किया होगा। असफलता अंत नहीं है, एक नई शुरुआत होती है। और एक लीडर वही होता है जो सफलता से सीख कर आगे बढ़ता है। प्रेरणा वह चिंगारी है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। और दोस्तों, नेतृत्व कई प्रकार की हो सकता है। लोकतांत्रिक, स्वेच्छाचारी, परिवर्तनकारी और सेवक नेतृत्व। आज के समय में युवाओं के लिए नेतृत्व क्षमता बहुत आवश्यक हो चुकी है। इसे विकसित करने के लिए समूह गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, जिम्मेदारियाँ स्वीकार करें, नए थॉट्स, नए विचारों को अपनाएं, पॉजिटिव रहें और असफलताओं से सीखते चले जाएं। युवा वही है जो नेतृत्व करने का साहस रखता है। नेतृत्व केवल संगठन तक सीमित नहीं, वह समाज में भी जरूरी बनता चला जा रहा है। एक अच्छा लीडर समाज में समानता लाता है, विकास को बढ़ावा देता है, सभी लोगों को एकजुट रखता है। नेतृत्व समाज को जोड़ने की कला होता है। दोस्तों, नेतृत्व को एक दिन में सीखी जाने वाली कला नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहने वाली प्रक्रिया है जिससे सीखना, समझना और आगे बढ़ना शामिल है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो नेतृत्व क्षमता को विकसित करना अत्यंत आवश्यक हो चुका है हम सभी के लिए। एक सच्चा लीडर वही है जो अपने सपनों से पहले दूसरों के सपनों को पूरा करने में विश्वास रखता है। नेतृत्व वह नहीं जो दूसरों पर शासन करे, नेतृत्व तो वह है जो दूसरों को आगे बढ़ने की शक्ति दे। लीजिए, बातों का सिलसिला तो आगे भी चलता रहेगा। इसी विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: दोस्तों, भविष्य उन्हीं का है जो तकनीक को समझते हैं और उसे मानवता के हित के लिए उपयोग करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को सोचने की शक्ति देती है, लेकिन दिशा मनुष्य के विवेक से मिलती है। हम बात कर रहे हैं युवाणी के इस कार्यक्रम में एक कुछ और नए विषय पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और युवा। दोस्तों, जो हमारे वर्तमान और भविष्य की गहराई को प्रभावित कर रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और युवा, अवसर, चुनौतियां और भविष्य की दिशा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने मशीनों, कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह विकसित कर दिया है, वे मानव की तरह सोच सके, सीख सके, निर्णय ले सके और समस्याओं का समाधान कर सके। AI वह विज्ञान है दोस्तों, जो मशीनों को सीखने की क्षमता देता है, लेकिन समझने की जिम्मेदारी मनुष्यों की होती है। आज AI हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है। मोबाइल फोन की वॉइस असिस्टेंट, सोशल मीडिया एल्गोरिदम, ऑनलाइन सर्च इंजन, चिकित्सा निदान प्रणाली और यहाँ तक कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी। दोस्तों, आज का युवा केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का निर्माता भी है। AI ने युवाओं के लिए नए अवसर के द्वार खोले हैं। जो युवा तकनीक को समझता है, वही भविष्य की दिशा की ओर अग्रसर हो सकता है आज के युग में। AI ने युवाओं के लिए नए करियर विकल्प, स्टार्टअप अवसर, डिजिटल स्किल और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के रास्ते भी खोले हैं। अब शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रही, AI ने सीखने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। AI ट्यूटर से सहायता ले रहे हैं बच्चे और व्यक्तिगत सीखने के अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा अब दीवारों में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में सांस ले रही है।

एआई आधारित शिक्षा सीखने को आसान बनाती है, ज्ञान को अधिक प्रभावी बनाती है और साथ ही दोस्तों व्यक्तिगत गति के अनुसार शिक्षा देती है। हर टेक्नोलॉजी क्रांति कुछ दरवाजे बंद करती है, लेकिन उससे कहीं अधिक नए दरवाजे खोलती है। एआई रचनात्मकता को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे नई दिशा देता है दोस्तों। एआई केवल गणना करने वाली मशीन नहीं है, रचनात्मकता में भी सहायता कर रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते ही होंगे कि संगीत भी बना रही है, चित्र और डिज़ाइन भी तैयार कर रही है, लेखन में सहायता कर रही है, यहाँ तक कि फिल्म निर्माण में भी इसका उपयोग हो रहा है। तकनीक का सही उपयोग मानव जीवन को सरल और बेहतर बनाता है। जहाँ अवसर होते हैं वहाँ जिम्मेदारियाँ भी उतनी ही बड़ी होती है दोस्तों। एआई का उपयोग केवल तकनीकी नहीं बल्कि नैतिक प्रश्न भी है कि एआई का यूज़ मानवता के हित में हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और डेटा का दुरुपयोग न किया जाए। दोस्तों एक विचार है कि मशीन सुझाव दे सकती है, लेकिन विवेक मनुष्य के पास होता है। मनुष्य इसका यूज़ कैसे करे, सोच समझ कर करे और एआई पर पूरी तरह भी निर्भर न होकर करे। आज के समय में युवाओं के लिए एआई कौशल सीखना ज़रूरी हो गया है। इसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग की समझ और डिजिटल साक्षरता यह ज़रूरी हो गए हैं। जो युवा सीखता है वही कल नेतृत्व कर सकता है। आज के इस डिजिटल युग को हम देखकर यह कह सकते हैं, भविष्य भी उन लोगों का है जो टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। दोस्तों एआई मानव बुद्धि का विस्तार है, प्रतिस्थापन नहीं। सत्य की पहचान करना ही डिजिटल युग का सबसे बड़ी समझदारी मान सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता न तो पूरी तरह अच्छी है और न ही बुरी है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं दोस्तों। यदि हम इसे सही दिशा में यूज़ करें तो यह जीवन को आसान बनाएगी, समाज को विकसित करेगी और भविष्य को उज्जवल बनाएगी। जो तकनीक को समझता है वही आने वाला कल को गढ़ता है। इन्हीं प्रेरक विचारों के साथ इस विषय को हम यही समाप्त करते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत और उसके बाद हम कुछ और नए विषय पर चर्चा करेंगे।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित युववाणी कार्यक्रम। मेगावाट 918 किलो हर्ट्स, DRM 909 किलो हर्ट्स, FM 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।

मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होता है दोस्तों, और नैतिकता उसका सबसे उज्जवल आभूषण। ज्ञान तभी सार्थक है जब नैतिकता के प्रकाश से प्रकाशित हो। हमारे व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरी समाज, राष्ट्र और मानवता के भविष्य को दिशा देता है नैतिक मूल्य। दोस्तों, नैतिक मूल्य जीवन के वे सिद्धांत जो हमें सिखाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये मूल्य हमारी सोच, निर्णय लेने की क्षमता, आचरण को दिशा देते हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा, सम्मान, जिम्मेदारी और दूसरों के साथ किया गया हमारा व्यवहार, अनुशासन। दोस्तों, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। शक्ति यदि नैतिकता से रहित हो तो वह विनाश का कारण बन सकती है। आज का युवा केवल करियर या सफलता तक सीमित नहीं, बल्कि समाज का भी निर्माता है। इसीलिए सभी युवाओं के लिए जरूरी है सही निर्णय लेने की क्षमता, दूसरों के प्रति सम्मान कीजिए और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। आज के तेजी से बदलते समय में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पहले से कहीं और बढ़ जा चुकी है। जहां नैतिकता कमजोर होती है, वहां समाज भी असंतुलित होता जाता है। और दोस्तों, नैतिक मूल्यों की सबसे पहली पाठशाला हमारा परिवार होता है। माता पिता हमें सिखाते हैं सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों के प्रति स्नेह और जिम्मेदारी का निभाना, कैसे दूसरों के साथ अनुशासन के द्वारा पेश आना। परिवार वह वृक्ष होता है दोस्तों, जिसकी जड़ें नैतिकता से ही सींची जाती हैं। ईमानदारी भले ही धीरे धीरे चलती है, लेकिन वह हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाती है। लीजिए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में एक और अगला फिल्मी गीत।

1789 में आज ही के दिन अमेरिका में विदेश विभाग की स्थापना की गई। आज के दिन 1921 में कनाडा के वैज्ञानिकों ने पहली बार सिद्ध किया कि इंसुलिन रक्त में शर्करा को निरंतर करती है। 1940 में आज ही के दिन प्रसिद्ध कार्टून चरित्र बक्स बनी ने पहली बार आधिकारिक रूप से पर्दे का पर्दार्पण किया। लीजिए दोस्तों, ये तो थी आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनाते हैं आपको एक आखिरी आज के युवानी कार्यक्रम का फिल्मी गीत।

दोस्तों, इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं, बल्कि यह वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख विषयों, भारत और विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, प्रमुख घटनाओं को।

लीजिए दोस्तों, आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करने की पूजा वर्मा को दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सहराइकी। ग्रामीण श्रोता कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे शाम 7 बजे। इसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे पॉलीथीन घातक पशुधन के लिए, सब्जियों की शुद्धता बनाए रखें, भोजन की पौष्टिकता कैसे बनाएं। इसके अलावा उपलब्ध होने पर मौसम और बाजार भाव की भी जानकारी दी जाएगी। शाम 7:45 पर सुनेगा फिल्म संगीत। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 8:15 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत में कुछ गजलें सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। हमारे दिल्ली और जयपुर केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे शाम 6:40 पर। संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और खेल जगत रात्रि 10 बजे। ये थे हमारे सभा के शेष कार्यक्रम। आइए अब सुने हमारे कल प्रसारण होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए प्रातः है 7:10 पर खेती हर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा पशुओं के आहार में नमक का महत्व। दिन में 12:50 पर खेत खलिहान में सुनेंगे जानकारी जिसका विषय रहेगा फर्टिगेशन अपनाएं उपज बढ़ाएं। चौपाल सुनेंगे शाम 7 बजे। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे करें, जीवाणु खाद के फायदे, प्रकाश पास फेरोमेन ट्रैप का प्रयोग और सुनेंगे भेंट वार्ता। पृथ्वीराम सी भेंट करेंगे संजय वैद जिसका विषय रहेगा उर्वरकों का संतुलित उपयोग। मानसगण सुनेगा सुबह 7:20 पर। इसमें आज अब कल सुनेंगे भाग संख्या 318। सुप्रभात का समय रहेगा सुबह 7:30। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे स्वतंत्रता सेनानी हमारे आदर्श, राष्ट्र सेवा, जल ही जीवन है। सुबह 10 बजे कार्यक्रम सुनेंगे गा मेरे मन गा। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 9:30, 11 बजे, दोपहर 2:30 और रात्रि 8 बजे। एक ही शीर्षक से ये कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 12:05 पर। शीर्षक रहेगा मोहब्बत। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम शाम 5 बजे। इसमें विषय रहेंगे दहेज प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा, पारिवारिक मूल्य, प्लास्टिक मुक्त भारत, स्वच्छ भारत अभियान और आज का इतिहास। राजस्थानी लोकगीतों और भजनों का कार्यक्रम गुरबंद सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा सुनेगा रात्रि 10 बजे। ये थे हमारे कल प्रसारण होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सहराइकी।

अपनी माँ को मैं समर्पित करना चाहना। तो तुसा भी सुनो, भुन दे मछाणी रन दाने जग पर देसियां को, भुन दे मछाणी रन दाने वांदियां राइयां को, भुन दे मछाणी रन दाने जग पर देसियां को, दाने भुनो नी कुरड़ कितो नी, दाने भुनो नी वे ओए होए, कुरड़ कितो नी वैर तना नी लाने, वो भुन दे मछाणी रन दाने जग पर देसियां को, भुन दे मछाणी रन दाने वांदियां राइयां को, लोकां दे भुन दिए पीलियां कणकां, लोकां दे भुन दिए वे ओए होए, पीलियां कणकां साडे जो निमाणे, वो भुन दे मछाणी रन दाने जग पर देसियां को, भुन दे मछाणी रन दाने वांदियां राइयां को। आओ एक बिया बहुत सोहना गीत, ओ नीली छतरी आ।

कहीं को रज कोई भुखा मरें दें, कहीं को जल दी चीर के सदें दें, कहीं को चंगा भला मार मुकें दें, कीड़े पत्थरां विच तू पालें, हिन तेडे खेड निराले, ओ नीली छतरी आले। कोई डाढ़ा कोई हीणा क्यों है, कोई चतर कोई शोदा क्यों है, कोई तोला कोई मासा क्यों है, कोई कोड़ा कोई पताशा क्यों है, कई चिट्टे हैं कई काले, हिन तेडे खेड निराले, ओ नीली छतरी आले। सदींदा ता है तू न्यायकारी, वंड काणी तू करेंदा क्यों है, कहीं को हिकनी नसीब थींदा, कहीं को अजड़ देंदा क्यों है, कई बन गए बखता आले, हैन तेडे खेड निराले, ओ नीली छतरी आले।

चले। कहीं को कुड़ी मुची खुश चा करें दे, कहीं को ढेर गमा दे चा दे, कहीं दी पकी हुई फसल पुसें दे, कहीं दे

0: तेरे खेड निराले। हाँ
1: हुणे तुसां सिराए की कावे पाठ सुणदे पए हवे। कावे पाठ करेंदे पए हन कमल नयन वर्मा। सिराए की भैणो भरावो, मेडा ख्याले तुहाको कवितावां पसंद आईयां होसो, ते प्रोग्राम दे अखीर विच मैं तुहाको एक सिराए की गीत सुणवेंदी पई हां। गीत बहु वधिया है, चस घिन्नो।
2: वाह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी कई बार बाधित। राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी जज 31 जुलाई और 1 अगस्त को जयपुर पीठ में मुकदमों की सुनवाई करेंगे। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए फूड पार्कों और एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टरों में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर। और बंगाल की खाड़ी से उठे नए मानसूनी तंत्र से राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार स्थगित की गई। शोर शराबे के बीच ही लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। पेपर लीक की रोकथाम के लिए लाए गए इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने और उसकी गरिमा बनाए रखने की अपील की।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र की कार्रवाई पेपर लीक मुद्दे और छात्र आंदोलन को लेकर लगातार बाधित हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के सभी जज 31 जुलाई और 1 अगस्त को जयपुर पीठ में मुकदमों की सुनवाई करेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सहित सभी 39 न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय शांति मध्यस्थता सम्मेलन का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
2: 52 ऐसे देश हैं जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज से संबंधित हैं और इन सभी में मुख्य तौर पर ब्रिटिशर्स जो थे, जब उन्होंने जब कानून लाया अपने इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो भी कानून लाया गया उसमें हम सभी उसी कानून से गवर्न हो रहे थे। तो हमारे सैद्धांतिक रूप से इन सभी देशों में जो प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है उनमें समरूपता है, तो हम कॉमन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करने वाले देश हैं, इसलिए हम कॉमनवेल्थ के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इन सभी देशों की आज के समय में जो मीडिएशन है, मीडिएशन ड्राइव है, उसके अंदर जब प्रासंगिकता को हमने देखा।
0: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज पाली जिले के दौरे पर रही। उन्होंने सोजत में शहरी सेवा फॉलोअप शिविर का जायजा लिया और पात्र लाभार्थियों को जमीनों के पट्टे वितरित किए। उपमुख्यमंत्री ने मारवाड़ जंक्शन ओवरब्रिज तथा सिरियारी, सरवाड़ और शिवसागर नदी पर बने पुल तथा विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देने के लिए आज जयपुर में मंथन किया गया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव एपी दास जोशी की मौजूदगी में हितधारकों की बैठक हुई। बैठक में राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने पर जोर दिया गया। फूड पार्कों और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टरों को बढ़ावा देने के साथ ही नई तकनीक के उपयोग और कारोबारियों को बेहतर सुविधा देने पर चर्चा की गई। बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों, एमएसए

0: एमएसएमई, एफपीओ, निर्यातकों, स्टार्टअप्स और बैंकिंग क्षेत्र तथा अन्य स्टेक होल्डर्स ने अपने सुझाव दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक में मिले सुझावों के आधार पर जरूरी पहल की जाएगी। केंद्रीय सचिव श्री जोशी ने कहा कि राजस्थान में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन तथा प्रसंस्करण क्षमता विस्तार करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। राजस्थान नदी बेसिन और वाटर रिसोर्सेस प्लानिंग अथॉरिटी की आज जयपुर में बैठक हुई। इसमें राज्य के जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में जल सुरक्षा, पीने के पानी की आपूर्ति और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए सभी 11 संबंधित विभागों के साथ चर्चा की। उन्होंने सभी को समन्वय के साथ मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर बेसिन की समग्र परियोजना तैयार करने तथा फसल चक्र और सतही जल के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 1990 के दशक के बाद से ही सभी 16 नदी बेसिन योजनाओं को समय के अनुसार अपडेट किया जा रहा है। इसके तहत आधुनिक तकनीक, जल दक्षता और नहरी सुधारों पर बल देते हुए सिंचाई कमांड क्षेत्र में बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे नए मॉनसून तंत्र का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा। इससे पूर्वी राजस्थान में कल से और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में परसों से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। ये सिलसिला 2 अगस्त तक बना रहेगा। मौसम विभाग ने कल 24 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज राजधानी जयपुर में भी कुछ स्थानों पर छितराई बारिश हुई। सवाईमाधोपुर सहित कई जगह लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल रहे। पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम ने रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने डॉक्टर कलाम को एक प्रेरणादायक शिक्षक के रूप में याद किया।
1: 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर कलाम को नमन करते हुए कहा कि विज्ञान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के लिए उनमें अद्वितीय समर्पण था। उनके आदर्श और विचार आज भी करोड़ों युवाओं को बड़े सपने देखने और उनको साकार करने की प्रेरणा देते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का आज 88वां स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर CRPF कर्मियों के अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। अपने शुभकामना संदेश में श्री मोदी ने माओवाद के खतरे को समाप्त करने में CRPF के प्रयासों को विशेष बताया। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और चुनौतीपूर्ण हालात में नागरिकों की सेवा CRPF कर्मियों के लिए सर्वोपरि रही है। एक रिपोर्ट।
2: देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक CRPF गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका दायरा राज्य पुलिस से अलग और व्यापक होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता, दंगा नियंत्रण, आतंकवाद और उग्रवादी रोधी अभियानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में CRPF को तैनात किया जाता है। दुर्गम क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में शांति बनाए रखने, नागरिकों की रक्षा करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस पर सलाम। सलेहा गाजी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर भाजपा की ओर से 29 जुलाई से समरसता संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान अगले 20 साल

0: अगले साल 20 फरवरी तक चलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने बताया कि गुरु रविदास के जन्म स्थान वाराणसी में कल कलश पूजन होगा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष को समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया है। 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 यानी गुरु रविदास जी के जयंती तक लगभग 7 माह तक एक राष्ट्रीय अभियान समरसता संकल्प अभियान के नाम से चलाया जाएगा।
0: प्रदेश भर में समरसता संकल्प अभियान के तहत हरि कीर्तन, सत्संग और विचार गोष्ठियां रखी जाएगी। अजमेर में आज से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण संबंधी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। 4 दिन के इस प्रशिक्षण का आयोजन राजस्व मंडल में हो रहा है। मंडल निदेशक बीना वर्मा ने बताया कि इसमें राज्य के सभी 41 जिलों के सांख्यिकी विभाग और भू अभिलेख शाखाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से GCES पोर्टल पर फसल कटाई प्रयोग को सही रूप से दर्ज करने के बारे में बताया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज भी कई बार बाधित। राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी जज 31 जुलाई और 1 अगस्त को जयपुर पीठ में मुकदमों की सुनवाई करेंगे। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए फूड पार्कों और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टरों में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर। और बंगाल की खाड़ी से उठे नए मानसूनी तंत्र के असर से राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं राजेश सोनी। वागड़ अंचल के बांसवाड़ा जिले में पिछले महीने स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़ी कई गतिविधियां हुई। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों के साथ चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत हरिदेव जोशी रंगमंच में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में पचपदरा से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण देखा गया। जिले के विभिन्न विभागों में चयनित 1530 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर इन कार्मिकों से पूरी निष्ठा के साथ जनसेवा करने का आह्वान किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण कर हाल ही में हुई प्रसूताओं की मृत्यु की घटनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया, मरीजों से बातचीत की और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले के 84 चिकित्सा संस्थानों में विशेष शिविर लगाए गए। इनमें 4682 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और आवश्यक स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य विभाग ने नियमित जांच और संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक भी किया। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था शुरू की गई। प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी और महिला स्वास्थ्य कर्मी गर्भवती महिलाओं को भर्ती से लेकर प्रसव, उपचार और डिस्चार्ज तक आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएंगी। इस पहल का उद्देश्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दिनों मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ और डिप्टी CMHO डॉ. राहुल डिंडोर ने स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता, अभिलेखों और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण MCHN दिवस की गतिविधियों की जांच की और आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बांसवाड़ा जिले को राज्य स्तर पर सम्मान मिला। जनसंख्या स्थायित्व के विभिन्न मानकों में जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं पीपीआईयूसीडी सेवाओं में भी राज्य में पहला स्थान हासिल करने पर जिले को प्रशस्ति पत्र और 4 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने आंबाबाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। यहां 700 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने पौधरोपण के साथ उनकी नियमित देखभाल का भी संदेश दिया। जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन जारी रहा। इन शिविरों के माध्यम से पालनहार योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाया गया। कई पंचायतों में फॉलो अप शिविर लगाकर लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन VBG रामजी के तहत तलवाड़ा पंचायत समिति की माकोद ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय जनसम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर उक्त कार्यस्थल पर योजना के तहत कई कार्यों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में रोजगार गारंटी, डिजिटल व्यवस्था और ग्राम विकास से जुड़े कार्यों की जानकारी दी गई। इसमें श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने पिछले दिनों जनजातीय आश्रम छात्रावासों का निरीक्षण कर भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया गया। जिले में राजनीतिक गतिविधियां भी देखने को मिली। कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे। उन्होंने कुशलगढ़ में एक श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया, साथ ही एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में भी भाग लिया। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, लोकसभा में आए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन बिल 2026 पेश। विपक्षरा हंगामा रे कारण संसद रा दोन्यू सदनारी कार्रवाई में आज ही अड़चन आई। राजस्थान हाई कोर्ट रा सगला जज 31 जुलाई और 1 अगस्त ने जयपुर पीठ में मुकदमा री सुनवाई करेला। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण हलकारा विकास सारू फूड पार्क और एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर में नूवी तकनीक काम लेवन माथे जोर। और प्रदेश में आवता एक सप्ताह ताइम बिरखा में बढ़ोतरी रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। संसद रा दोन्यू सदना री कार्रवाई आज ही विपक्षरा सदस्या रा हंगामा रा कारण कई दफा टालनी पड़ी। शोर शराबा बीचे लोकसभा में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन बिल 2026 पेश कीनो। पेपर लीक री रोकथाम सारू लाइचिया इन बिल में दोषिया ने 10 साल ताई री कैद और वहाँ माथे 10 करोड़ रुपया ताई रो जुर्मानो लगावन सागे वारी संपत्ति जब्त करण रो प्रावधान है। इरे अलावा मामला रो बेगो निपटारो ते करण सारू सगला राज्यां और केंद्र रा राजवाड़ा प्रदेशां माए खास फास्ट ट्रैक अदालतां खोली जावेला जठे मामला री रोजीना सुनवाई वेला। बिल के पेश करती बगत विपक्षरा सदस्य नीट परीक्षा पेपर लीक रा मुद्दा माथे विरोध प्रदर्शन रे दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई माथे चर्चा री मांग करता थका हंगामो कीनो। इंपरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण माए मदद करण अरमारो मान बनायो राखण री अरज कीनी।
4: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
3: ध्यान जोग है कि 20 जुलाई उन सरूफिया पावस सत्र री कार्रवाई माए पेपर लीक मुद्दा और विद्यार्थियों रा आंदोलन रा मामला न लेर लगातार अड़चन आ रही है। राजस्थान हाई कोर्ट रा सगला न्यायाधीश 31 जुलाई और 1 अगस्त ने कोटरी जयपुर पीठ माए मुकदमा ने सुनवाई करेला। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा

0: करने वाले देश हैं, इसलिए हम कॉमनवेल्थ के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इन सभी देशों की आज के समय में जो मीडिएशन है, मीडिएशन ड्राइव है, उसके अंदर जब प्रासंगिकता को हमने देखा।
1: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज पाली जिला रासोजत माए शहरी सेवा फॉलो अप शिविरों और दौरों की नो अर पात्र लोगों ने पट्टा दीना। उप मुख्यमंत्री मारवाड़ जंक्शन ओवरब्रिज और सिरियारी सवराड और शिवसागर नदी माथे बनिया पुल और विकास रा दूजा कामारो उद्घाटन ही कीनो। प्रदेश माए खाद्य प्रसंस्करण हलकारा विकास माथे विचार करण सारू आज जयपुर माए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास श्री सदारत माए हितधारकों री मीटिंग राखी जी। इन माए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ए पी दास जोशी मौजूद हा। मीटिंग रे दौरान राज्य माए फूड प्रोसेसिंग री नूवी इकाइयां खोलन पर जोर दियो चियो। इस आगई फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर ने बधावो देवन सारू नूवी तकनीक काम लेवन और कारोबारियां ने बेहतर सुविधा मुहैया करावन रे बारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए मुख्य सचिव कहो के मीटिंग रे दौरान मिलिया सुझावा रे मुजब जरूरी पहल करी जावेला। केंद्रीय सचिव जोशी कहो के राजस्थान माए खेतीबाड़ी और बागवानी रा हलकां रे जरिए नौकरी धंधा रा मौका मुहैया कराया जा सके है। राजस्थान नदी बेसिन और वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग अथॉरिटी रे आज जयपुर माए मीटिंग भी। इन माए प्रदेश माए पानी जुड़िया साधना रा प्रबंधन माथे विचार करी चियो। मीटिंग माए मुख्य सचिव जल सुरक्षा पीवन रा पानी री पूर्ति और पाणत सारू पानी माए बढ़ोतरी जुड़िया 11 महकमा रा अहलकारा सागे चर्चा कीनी। मुख्य सचिव कहो के राज्य माए 1990 पाछे सगली 16 नदी बेसिन परियोजनावां ने जरूरत रे मुताबिक सुधारी जा रही है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। राज्य रा उगनी हलका माए काल और उत्तराद आतुनी हलका माए 29 जुलाई 2 अगस्त ताई बिरखा माए बढ़ोतरी रा आसार है। मौसम विभाग काल 24 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। इन बीचे आज राजधानी जयपुर माए कठे कठे छांटो छिड़को भियो। दूजिकानी सवाई माधोपुर समेत कई ठोणा उमसू लोग परेशान रहा। देश रा पहली वाला राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन रा नाम जाण्या जावण वाला डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने आज मारी बरसी रे मौके श्रद्धा भाव सागर याद करया जा रहा है। डॉक्टर कलाम रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान रा हलका माए देश ने नुवी ऊंचाइयां ताई पुगायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित करी चिया मन की बात कार्यक्रम माए डॉक्टर कलाम ने सीख देवन वाला शिक्षक बताता थका श्रद्धा भाव सागर याद कीना।
2: 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई डॉक्टर कलाम ने नमन करता था का कहो के वहां माए विज्ञान नुआ काम और देश बनावन बाबत जबरदस्त समर्पण हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा डॉक्टर कलाम रा आदर्श और विचार आज ही नौजवाना ने मोटा सपना देख हरवाना साचा करण री सीख देवे है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ रो 88वां स्थापना दिवस आज मनायो जा रियो है। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीआरपीएफ रा कर्मचारियां री जबरदस्त हिम्मत और कर्तव्य निष्ठा री सराहना कीनी है। शुभकामना संदेश माए श्री मोदी माओवाद रो खतरो खत्म करण माए सीआरपीएफ री कोशिशां ने खास बताई। देश माए हिफाजत री व्यवस्था ने मजबूत बनावण और चुनौती वाला हालात माए जनता री सेवा सीआरपीएफ रा कर्मचारियां सारू सबू ऊंचो काम है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: देश रा सबू मोटा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बला माए शुमार सीआरपीएफ गृह मंत्रालय रे अधीन काम करे है। इनरो दायरो राज्य पुलिस ऊ न्यारो वे है। सीआरपीएफ रा जवाना ने कानून व्यवस्था बनाई राखण माए मदद करण, दंगा माथे काबू करण, आतंकवाद और उग्रवाद रे खिलाफ अभियाना और खास प्रतिष्ठाना री हिफाजत रा काम माए लगायो जावे है। स्थापना दिवस रे मौके मुश्किल हलका और हालात माए शांति बनाई राखण, जनता री हिफाजत करण और देश रा एका ने मजबूत करण वाला सीआरपीएफ रा सगला जवाना ने सलाम। समाचार कक्ष

0: صالحہ غازی.
1: संत गुरु रविदास री 650वीं जयंती रे मौके भारतीय जनता पार्टी री ओरु 29 जुलाई आवता साल 20 फरवरी ताई समरसता संकल्प अभियान चलायो चावेला. भाजपा रा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग बतायो के गुरु रविदास रा जन्मस्थान वाराणसी माए काल कलश पूजन सागे शोभा यात्रा रा कार्यक्रम राख्या चावेला.
2: भारतीय जनता पार्टी ने गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष को समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया है. 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 यानी गुरु रविदास जी के जयंती तक लगभग 7 माह तक एक राष्ट्रीय अभियान समरसता संकल्प अभियान के नाम से चलाया जाएगा.
1: इमोकर राज्य में आई समरसता संकल्प अभियान रातेत हरि कीर्तन सत्संग और विचार गोष्ठियां राखी जावेला. गुरु रविदास भक्तिकाल रा संत कवि और समाज सुधारक हा. वे जातिरा आधारों दुभांत और छुआछूत री करडी खिलाफत करता थका बराबरी और सामाजिक न्याय री सीख दीनी. हर साल माघ महीना री पुण्यु ने वानी जयंती मनाई जावे है. झुंझुनू रेलवे स्टेशन माथे आज सेफ्टी संवाद कार्यक्रम राखी चियो. इन दौरान रेलवे रा जयपुर मंडल रा डीआरएम रवि जैन री मौजूदगी माए कर्मचारियां हिफाजती इंतजामात और काम री ठौड़ ने बेहतर बनावण जुड़ी राय ली री जी. इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का डीआरएम बतायो के अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत झुंझुनू स्टेशन माथे नुआ बनाई जा भवन रो काम लगभग पूरो हो गयो है और इनरो बेगोई उद्घाटन करियो चावेला. चूरूरा सरकारी लोहिया कॉलेज में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई री ओर मॉडल करियर केंद्र चलायो जा रियो है. इन जरिए नौजवानों ने बैंकिंग माली सेवावां ई कॉमर्स मेहमान नवाजी और डिजिटल साक्षरता समेत कई हलका माए सीख दी जा रही है. करीब 2 सालों चल रहा इन केंद्र रे जरिए जिला रा 272 गाँव रा करीब 10,000 नौजवानों ने करियर मार्गदर्शन दियो चियो है. आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले राव. लोकसभा माए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन बिल 2026 पेश. विपक्षा हंगामा रा कारण संसद रा दोन्यू सदना री कार्रवाई माए आज ही अड़चन आई. राजस्थान हाई कोर्ट रा सगला जज 31 जुलाई और 1 अगस्त ने जयपुर पीठ माए मुकदमा री सुनवाई करेला. राज्य में खाद्य प्रसंस्करण हलकारा विकास सारू फूड पार्क और एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर में नूवी तकनीक काम लेवण माथे जोर. और प्रदेश में आवता एक सप्ताह ताई बिरखा में बढ़ोतरी रा आसार. इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो. मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला. नमस्कार.
3: क्या बात है बड़े दिनों बाद.
4: हाँ यार. अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा.
3: अरे वही अपना 60 रुपया.
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है.
3: तो देख, दो तरीके हैं. पहला आधी दाढ़ी करा ले.
4: और दूसरा.
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से.
4: ये लो यार यूपीआई ने तो बचा लिया.
3: एक काम कर फेशियल भी करा ले. डिजिटल पेमेंट कर देना.
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान.
6: हर लेन देन अब है आसान.
7: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है. प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल.

चौपाल सुनिए सगळ्या श्रोतावाने, सुनील बाई वर्षो मोकळी मोकळी, राम राम, सगळाने राज्य राखे राम जी। श्रोताओं, आज गए कार्यक्रम की शुरुआत ई सोल ठम करा के हिम्मत कीमत होए।

बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय रद का गज्जू राजिया। श्रोताओं ओ जो को शोर्ट है मायड भाषा का मान कवि कृपा राम खेड़िया को लिखेड़ है, जो को आपा ने बहुत ही मोटी सीख देवे। सच्ची बात है दोस्तों के जीवन में जके की हिम्मत है बिंगी कीमत है। जके मिनक में हिम्मत हुए वो किए जंगल का मां मंगल कर दिए, उजाड़ ने बसा दिए। कई आदमी आपा देखा के बंग कन्ने किए की कोनी हुए, यानी जेब मुंबे किए कमजोर हुए। अरबों किए गुजारो मुश्किल हुए, पर बांग कन्ने की हुए जन्म जात को एक गुण है, वो है हिम्मत गो। बिंगे ताण भी आपको काम चला लिए, अर किए गाड़ा भैंस के नीचे कर गए, अर भैंस आड़ा गा के नीचे करके काम काट लिए, इन्नू मनू करके काम बना लिए। अर कई मिनक हिस्सा आप देखा कि जका कने सो की हुए फिर भी बिके आपको काम कौन बना सके। बिंगो कारण है कि बांगे छाती का माँ हिम्मत को नहीं हुए। सच्ची बात है कि जका बोले नहीं बिंगा ही बोरिया बिके, एर न बोले बिंगा के बिदाम या अपने देखा के पड़े रे। जे छाती में अपने हिम्मत है तो आदमी के एक रे पत्थर शू पानी काट लिया। इनको कहण को मतलब वो है कि शो काम कर दिया जो को मुश्किल हो। आप उदाहरण दिया आपने बीकानेर रियासत का राजा गंगा सिंह जी को, जका नाम आज के टाइम में बागीरथ के रूप में प्रसिद्ध है, एरबा ने कौन कौन जाने। बा आपकी हिम्मत का तान श्रोताओं की है गंगनेर काढ़ी राजस्थान ने हरियो भरियो कर दियो। आज आपने जो गंगानगर को जिलो है वो अन्न को कटोरो बंग कारणी है। जे बे मान लियो हिम्मत न करता एर बैठू पंजाब शू पानी न लियाता नेर न काटता, मीन टाइम में देखो कि तो औखो काम हो। कन्ने कोई मान लियो ये तो पीसो टको भी कोनी हो, पर ही हिम्मत भी हिम्मत का ताण बाहू काम करियो। राज आपनों देखो राजस्थान में जो को गंगानगर है अनंगो कटोरा के रूप में जानो जाए। श्रोताओं धन दौलत छूँ जवानी छूँ रूप छूँ ई छू जस को नहीं हुए, जस हुए अच्छे काम करण छू अच्छी हिम्मत छू। ये दुनिया में हिम्मत की कीमत है। जका आपा मानस देखा योग्य है गुणी है बांगू मान सम्मान जो आजकल होने लग रही है वो किए हिम्मत के कारण है। जे अपने कन्ने हिम्मत रूपी हथियार कोनी तो अपा किए रद्दियाँ, अपनी कोई कीमत कोनी अपनी कोई पूछ कोनी। देखो इन दुनिया में मोटा मोटा गबियाँ किए डेरू बजाए, आपा जका देखा अपने जका सूरवीर होया है मोटा मोटा जोधा होया है बांगू नाम आज तई सिर्फ आपकी हिम्मत के कारण है। बे हिम्मत के कारण ईशा ईशा काम कर दिया जका तीन लोग याद करे। जबांगी छाती में जोर न हो तो अर मन में हिम्मत न होती तो आज माने कुण जानतो, आज मांगा कोई गीत कौन गानता। श्रोताओं मन गए हारे हारे अर मन गए जीते जीत। जे आप मन छू हार जाएंगा तो अपन कोई जीता कौन सके। अर जे आप अपने पर विश्वास रखांगा अपने पर भरोसा रखांगा हिम्मत रखांगा तो जरूर जीतांगा और जरूर अपनी बात बनेगी। बाकी एक रहनी कि डर गा गए जीत है, मन में सिर्फ के एक डर ही हुए वो जो अपने निकल जाए तो अपनों काम बन जाए। तो श्रोताओं आ तो ही हिम्मत की कीमत की बात। थोड़ी सी बात आप करा कृपा राम जी खेड़िया की, जो सोरठा लिखा अंगो पूरो नाम कृपा राम खेड़िया हो, राजियारा सोरठा नाम शू प्रसिद्ध ग्रंथ लिखियो। इस सिकरगार राव राजा लक्ष्मण सिंघा दरबारी कविया अंग सोरठा में जो श्रोताओं नाम आवे राजिया वो कौन हो, वो राजिया हो अंगो नौकर। जो नाम हो मूलतः राजा राम एर बीशू ये बहुत ही प्रेम करता एर वो जो राजा राम हो राजियो वो भी आंगो बहुत मान सम्मान करतो। तो बिंग एक दुख हो राजा राम गए कि बिंग कोई संतान को नहीं, बेउलाद और मी टेम में मालियो बेउलाद हो किए मुँह देखनो भी लोग गुनाह समझता अरे बिंगो वंश किया चाल तो ईशू बहुत दुखी हो। तो कृपा राम जी भी ने एक वचन दियो कह राजा राम तो दुखी ना हो राजिया, मैं तने किए आपकी कलम गए तान अमर कर देशू। और वहाँ जकी भी रचना लिखी जका भी सोरठा लिखा बिंग अंत के अंदर राज्य को नाम दे दियो। तो आप जको भी अपना सोरठो पढ़ा कृपा राम जी को बिंगा देखो हर सोरठे में राज्य को नाम आवे जको आज ते 300 साल बाद भी अमर है। तो देखो मालिक।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं सुनियो, ओ धर्मपाल भगत भारती की आवाज़ में भजन। तो बात करा अब आप खेतीबाड़ी की, तो खेतीबाड़ी के साग आप पशुधन भी पाला और पशुधन को आपने रख रखाव रखना चाहिए। आजकल की आप जिया पॉलीथीन की थैलियां को यूज करा, प्रयोग में लेवा, काम में लेवा, तो भी मैं किए जिया बच्चेड़ो कोई खानो है या कोई सब्जी का छिलका है घात के न फेंकना चाहिए, क्योंकि पशु है बिन तो ध्यान को नहीं है। जिया बेचारा जका बार फिरे पशु बे किए पॉलीथीन खा लिए और वो पॉलीथीन वांग पेट में किए जाके जम जिए, जो बहुत ही घातक हुए। इनका नुकसान की बात करा तो पहलो नुकसान हो ये है कि वो पेट में जमाव करे, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो किए सड़े गले को नहीं, जब पशु इन्हें खा लिए तो इनका पेट जो रूमन हुए में किए गुच्छे गमाओ प्लास्टिक किए गोले के रूप में जमा लाग जिए और पाचन तंत्र सागे की बंद हो जाए। पॉलीथीन जब पशु की अंतता में जावे तो भी कि है भोजन की जकी नाल है बाकी है बंद हो जाए, तो जब वो खाणो पीणो करे तो बिंग अंदर वो जा कौन सके, तो बिन के बाद में भूख लागनी बंद हो जाए और खाणो पीणो बिंगो बंद हो जाए। तो जब खाणो पीणो बंद हो जाए तो की है बिंगा शरीर के अंदर है पोषक तत्वों की कमी आ जाए, कमजोरी रहने लग जाए, क्योंकि टेम वो खावे को नहीं

और जब संतुलित भोजन बिना नहीं मिलेगा तो फिर धीरे धीरे कि आपको दूध घटाने लग जाएगो, कुपोषण को शिकार हो जाएगो, रेक टाइम इश्यू होगा, कमजोर होके बिंगी मौत भी हो सके। सागे सागे कि ये जो ये पोलीथीन हुए ये रसायनों बनेड़ा हुए तो अंगो जो जहरीलो प्रभाव है पशु ऊपर पड़े, तो हमें थैलेट्स और बिस्फेनॉल ए जो रसायन हुए ये पशु के अंदर किया धीरे धीरे घुल गए, अरे खून में घुल जाए, अरे बीस खून किया दूध में भी मिलन लग जाए और पेट गमा संक्रमण करे, सग कैंसर जैसी बीमारियों को पशु शिकार हो जाए और बाद में बिंगी के दर्दनाक मौत भी हो जाए। तो अपन ने ज़्यादा ज़्यादा किया जो अपन बच्चेड़ो खाणो है वो बाहर अगर आप पशुआ ने देवा तो भाई घर गा के कोई ठाण बना लियो और बना लियो भी मना के दियो ताकि वे पशु आगे खा सके। इंगा और लक्षणों की बात करा तो पशु की है धीरे धीरे पानी छोड़ दिए, दूध बिंगो उत्पादन है वो भी गिरन लाग जाए, पेट को देखो तो एक हिस्सो है वो असमान तरीके से क्या फुल्लेड़ो सो दिखन लाग जाए, जहाँ पशु के आ फुरवाइड हुए भी पशु सुस्त रहने लाग जाए, जुगाली बंद कर दिए, बिंगो वजन जो है भार है वो शरीर भार गिरन लाग जाए, देखो प्लास्टिक है वो क्या गोबर के माँ छोटे छोटे टुकड़ा के रूप में दिखाई देने लग जाए। तो इन समस्या से बचने सारू अपन किए एक तो किए पहली बात तो यह कहे कम कम प्लास्टिक जकी थैलियाँ हैं आंगो इस्तेमाल करा, प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनावा जिसमें अपनों जो पशुधन के सुरक्षित रह सके। सागर जियाँ कोई खाद्य सामग्री है तो बा पॉलीथीन में नहीं गाला, बच्चड़ी जियाँ रोटी है सब्जी है फल है तो बे पॉलीथीन में डाल गए सिद्धों की कोई पशु के ठाण में दे दियो या और दे दियो बिना सिद्धि खुआ दियो जो जकी बेचारे गुण करे, या फिर कपड़े का जूट का थैला हुआ अंग वपा प्रयोग कर सका, एर खुले में भी कचरों नहीं डालो तो जै नहीं डालांगा तो किए पशु खावेगा कोनी एर बेके बीमार कोनी होगा। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जकी पशुधन है वो ध्यान रखना चाहिए और जकी पॉलीथीन की थैलियाँ जकी जानलेवा है आंगू कम कम प्रयोग करना चाहिए और देखो बच्चेड़ो खाणो है तो कदे भी इंगमा डाल के प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं और किसान भाइयों के कान माखर काटना चाहूँ कि देखो आजकल आपने खेतों में प्लास्टिक की डिग्गियाँ बन रही है पक्की डिग्गियाँ बन रही है जकी बहुत ही की जानलेवा है, क्योंकि इन पर बचाव का जका साधन है जियाँ कोई रस्सी लटकानी या कोई सांकल घेर देनी या फिर हवा चुंबरेड़ी जी के टूप आप में नाक सका, ताकि कई बार की किसान डिग्गी पर काम करे तो वो की है बिंगो नज़र ध्यान हट जाए तो बिंगे कारण के या पग तिसल जाए और तिसल जाए तो वो डिग्गी में जागी रहे। तो अभी दो एक घटना अपने ही क्षेत्र में हुई है जो कि बहुत ही दुखद है, मान लो दो सगा भाइया बे के डिग्गी पर काम करा कोई तो एक गो पग तिसल गयो तो वो डिग्गी में जा पड़ियो बिना बचाने खातर दूसरों भी बेचारो कूद गयो और दोनों की मौत होगी। तो इन सारों की किसान भाइयों ने जरूर ध्यान देना होना चाहिए भी आप 5 लाख रुपया डिग्गी पर लगा दें पर ये जके साधन आप को नहीं अपनावा जिसमें अपने नुकसान हुए कभी भी अपने सागे घटना हो सके। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिग्गी खेत में बनाओ तो बिंग सागे सागे की है बचाव का भी तरीका अपनाओ ताकि आपनी जो कि जान है वह सुरक्षित रह सके, कहीं सागे भी दुर्घटना न हो। बात आप और भी करांगा पहला सुना हो प्यारो सो लोकगीत।

0: 333 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनियो ओ प्यारो सो लोक गीत। श्रोताओं बात करा अब खाने पीने की, तो हर आदमी की इच्छा यो है कि वो अच्छो पौष्टिक खावे, हरियो भरियो खावे, ताकि वो स्वस्थ है, वो अच्छो रिवे। आजकल जी आप सब्जियां देखा तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा की रासायनिक कीटनाशकों को प्रयोग हुए, कृत्रिम रंग भी आ गए, नकली रंग लगाई जाए, वैक्स करी जाए, आ चीज़ों को बहुत ही इस्तेमाल बढ़ गया है। तो आप जब भी बाजार से सब्जी घरे लियावा तो बांगी शुद्धता बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, और बने आ हानिकारक रसायनों से मुक्त रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो रासायनिक है हानिकारक है रसायन है, ये अपने स्वास्थ्य पर प्रभाव गिरे। सब्जियां ने साफ शुद्ध और सुरक्षित रखने सारों आप कई आसान तरीका अपना सका। जी सारों पहला की है सब्जियां ने कीटनाशक ए रसायन से मुक्त करना चाहिए, तो इन सारों आप किए जी गुणगुणो लूण को पानी है इस आप धोना चाहिए। जब आप बाजार से सब्जी लियावा तो सारों पहला की है साधारण पानी से धोवा, अरिंगे बाद में एक बड़े बर्तन में गुणगुणो पानी ले गए, भी में एक दो चमचिया की है मान लो सादो लूण है या सेंधो नमक है वो मिला दिया, और 10-15 मिनट तक इमें सब्जी ने डुबो के रखा और बाद में किए साफ पानी से फिर धो लिया, तो इन शू किए जका कीटनाशक लागेड़ा ऊपर की तरफ बे के ज़्यादातर धुल के साफ हो जाएगा और भी आपने पेट में कौन जावे। दूसरो तरीको वो है कि जो मीठो सोडो आवे आपने गर्म इस्तेमाल हुआ भी है जिके ने बेकिंग सोडो के वे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच वो मीठो सोडो मिला के और सब्जियां के 10-15 मिनट तक इन गमा डुबो के रखनी चाहिए, भिजो के रखनी चाहिए। तो जो बेकिंग सोडो है वो सब्जियां की सतह पर मौजूद जटिल रसायन है बने तोड़ने में किए बहुत ही काम करे, बने वो तोड़ गए और दूर कर दिए तो भी आपने पेट में कौन जाए। तीसरा तरीको है जो सिरको आवे इनको जो घोल है तो 3 भाग पानी में 1 भाग सिरको सफ़ेद जो सिरको है वो मिला के सब्जी ने 10 मिनट तक भी बेगी रखा आपा तो भी चूंकि है न तो कीटनाशक साफ होगा, कीटनाशक तो साफ होगा ही बल्कि जो कि सब्जी में मौजूद का बैक्टीरिया है फंगस है वे भी खत्म हो जाएगा। बात करा छिलके उतारने की विधि की, तो जका सब्जियां को मान लो छिलकू आसानी से उतर सके जिया लौकी है, तोरू है, आलू है, गाजर खीर है वागो छिलका जरूर उतारना चाहिए। कीटनाशकों का सबसे बड़ा हिस्सा बंग के ऊपरी छिलके पर जमेड़ा हुआ है, छिलको उतार गया पांटा इसका। दूसरा मान लो सब्जी की ताजगी और शुद्धता बनाए सारू आप किए सब्जियां ने पूरी तरह सुखा के प्रयोग में लेनी चाहिए। सब्जियां के धोने के बाद मैंने सूती कपड़े में फैला के हवा लगा के फिर सूखने देनी चाहिए कई देर तक, और नमी जब खत्म हो जाए बिंग बाद में काम में लेनी चाहिए। नमी रहन पर जे आप सब्जियां फ्रिज में रख देंगे तो किए बीशू बे सड़न लग जाए, इन बात को भी आप ध्यान रखना चाहिए। पत्ताली जी सब्जियां जी धनियो है, पालक है, मेथी है, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं बने धोनो चाहिए। इनकी खराब या गलड़ी जकी पत्तियां बने निकाल देनी चाहिए और सूखे पेपर छू या साफ करके और फिर काम में लेनी चाहिए। दूसरी आप जका प्लास्टिक का बैग आवे आंगो कम इस्तेमाल करना चाहिए, पहली बात तो आए जो आप लियावा मान लियाँगे अंदर तो आपने की लंबे टाइम तक नहीं रखनी चाहिए। तो आम बातों को ध्यान रख के आप जी अपनी सब्जी है आने के ज़्यादा ज़्यादा शुद्ध बनाए रख सका और लंबे टाइम तक वागो प्रयोग भी कर सका। बात आप और भी करांगा, पहला सुनाओ प्यारो सो लोक गीत।
3: ओ लड़ली लू

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 22

श्रोताओं सुनियो प्यारो सो लोक गीत। बात करा आपा भोजन की पौष्टिकता जी की आपा कियां बना के रखा और बिंगी पौष्टिकता ने आपा कियां बढ़ावा। आपा की ज़्यादातर

0: ये कई बार गलत तरीकों भोजन बनावा, गलत तरीकों काटा, तो बाहों के भोजन को जो असली पोषक तत्व है वे खत्म हो जाए और आपने बिंगो पूरा फायदो कौन मिले। बात करा जहाँ भोजन की आप पौष्टिकता है इन किया बचावा, तो पहला तो की है जहाँ सब्जी है तो बिना काटन छू पहला दो, आपने आदत तो है कि सब्जी ने बंदार के फिर आत्मा धोआ, तो बी छू की है जका बिंग अंदर पोषक तत्व है वे पानी में घुल गए और बाहर निकल जाए, जहाँ विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, एक ये पानी के सागे घुलन नाला हुआ, तो पानी के सागे घुल के बाहर निकल जाए। तो हमेशा ही बात को ध्यान रखो कि सब्जी ने काटन छू पहला दो, साबत ने दो, काट के बंदार के न धोनी चाहिए। दूसरी आदत आ है कापा की है बहुत ही बारीक बंदारा साग है चाहे कोई और सब्जी है, बिन के जितो बारीक काटांगा तो बीचों बिना जका पोषक तत्व है वे जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सब्जी ने हमेशा की मोटी मोटी कापी काटनी चाहिए ताकि बांगा पोषक तत्व बने रहे, और सब्जियां के छिलके समेत आपने पकाने को प्रयास करना चाहिए, जिया गाजर है, खीरो है, आलू है, भाई लौकी है, अन्य की आप समेत छिलके की पका सका। और जो मान लो कई बार मान लो छिलको करड़ो है तो थोड़ो थोड़ो छोल गए ऊपर मान लो छोल लिया, तो बीसू के जका अंदर छिलके अंदर जका फाइबर हुए, मिनरल हुए, ये कम उतरे तो कम नुकसान हुए। और ज़्यादा पकान से भी बचना चाहिए, कई सब्जियां ऐसी हुए कि मान लो थोड़ी देर में पक गए तैयार हो जाए, और कई मान लो ज़्यादा पकान की जरूरत पड़े, तो जो कि सब्जी है बिंगा हिसाब में पकाना चाहिए, न कि भाई अपना के कई बार बिंगा चूल्हे के ऊपर रख के भूल जावा और वो किया साग बढ़तो रहे तो बिंगा के पोषक तत्व खत्म हो जाए। और सब्जी जको उबालने वालों पानी है इंगो आपने जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, आपा के एक जको मान लो कि सब्जियां उबालनी पड़े या दाल है तो बिन के भी पानी ना आप फेंक देवा, फेंकने की बजाय बिन के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बिंगे अंदर बहुत ही बढ़िया प्रोटीन हुए बंगो, या आप फिर जिया आटो गूंदा भी मैं इस्तेमाल कर सका, तो इस तरह अपनी जकी भोजन की पौष्टिकता बनी रहे। अब बात करा भी इनकी पौष्टिकता पा बढ़ावा किया, तो सारों पहला किए जकी दाल है, चीना है, मूंग है, अन्न किए अंकुरित करके उगा के खानो चाहिए, ईश्वा में किए विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, अंगी मात्रा 300 सैकड़ा तीन बढ़ जाए, और सागे सागे पचाण में भी बहुत आसान हुए। दूसरी विधि है किण्वन की विधि, तो इडली है जिया डोसो है, ढोकलो है, दही है, कांजी है, इसका भोजन है अन्न के अच्छा बैक्टीरिया हुए, ये आपने पेट का स्वास्थ्य खातर बहुत ही बढ़िया हुए और विटामिन बी जिया B12 को निर्माण क्रम में मदद करे, और हमेशा ही किया जो सही मिलान होना चाहिए सब्जी को, बेतुको मिलान नहीं करना चाहिए, वो भी एक बहुत ही बढ़िया तरीको है। आयरन एर इंग सागे विटामिन सी जिया पालक है या दाल है, ये दोनों के आयरन का स्रोत है, तो अंग सागे जी आप नींबू को रस प्रयोग करा या टमाटर को रस प्रयोग करा और बिना खावा तो अपने शरीर के अंदर की है जो आयरन को है अवशोषण वो कई गुना बढ़ जाए, तो जो सही मान लो मिलान हुए वे करना चाहिए। और सब्जियां के जिसो बांगो रंग है लाल, हरियो, पीलो, बैंगनी, बे जिता रंग अपनी थाली में होगा बीतो ही अपने जो स्वास्थ्य है बी खातर बहुत बढ़िया होगा, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो सब्जियां हैं, दाला हैं, बंगा जो पौष्टिक गुण है मन बचा के रखना चाहिए, न कि व्यर्थ पानी बाहर देना चाहिए, जब अपन मन बचा के रखांगा प्रयोग करांगा तो अपने स्वास्थ्य खातर बहुत ही फायदा होगा। बात आप और भी कर सा पहला सुनाओ लोक गीत बीशू पहला सुना ये दो विज्ञापन।
1: ओ लड़ली लूं बाजू बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट

0: पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, समय है बाजार भाव गो। तो आज आपने कने सूरतगढ़ मंडी का बाजार भाव उगता है। कणक के भाव की बात करा तो कणक अठह रही 2625 रुपया, चिणा अठह रहे 5478 रुपया, सरसों का अठ भाव उगड़ा 7563 6301 रुपया, और मूंग अठह रहे 6490 रुपया। बात करा गंगानगर मंडी की, तो गंगानगर मंडी के अंदर जगह भाव है वे ही प्रकार रहा। सरसों का भाव रहा अठ 7750 रुपया, कणक का अठ भाव रहा 2631 2852 रुपया, ग्वार अठ उगड़ियो 5085 5775 रुपया, और मूंग अठ भाव रहा 5271 रुपया, और चिणा अठ बिक्यो 5551 5631 रुपया। तो ए आज का बाजार भाव। अब थारा सुनील भाई ने दियो आ गया। राम राम सा राम राम।

अभी ग्राम श्रोता चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म पापा कहते हैं का ये नगमा।

श्रोताओं आइए सुने फिल्म नायक का ये नगमा, आवाजें कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे संसद समीक्षा।

लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराध

आरोपों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं। युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज

0: पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खड़गे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खड़गे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनते हैं फिल्म लैला मजनू के नगमे। कार्यक्रम का यह पहला नगमा आवाज मोहम्मद रफी की।

अभी आप एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुन रहे थे। आज की फिल्म थी लैला मजनू। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ईशा सिंह ने निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा, मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय बॉक्सर सचिन सिवाच ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप कल से कोयम्बटूर में खेली जाएगी। और भारतीय पुरुष टीम वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टीम कॉम्पिटिशन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से, जहां ईशा सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उनके साथ मनु भाकर ने भी

0: बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है भारतीय निशानेबाजों का। चीन के हांगझोऊ में चल रहे ISSF निशानेबाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। निशानेबाज ईशा सिंह ने आज महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और देश का नाम रोशन किया। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: ईशा ने फाइनल में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पूरे मुकाबले के दौरान जोरदार प्रदर्शन करते हुए 50 शॉट्स में से 40 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। उन्होंने मेजबान चीन की युए झांग को पीछे छोड़ा। झांग ने 37 अंक के साथ रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में मनु का सामना उत्तर कोरिया की योन ग्योंग पाक से हुआ। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन डबल शूटआउट में मनु ने बाजी मारते हुए पदक हासिल किया। ईशा के स्वर्ण और मनु के कांस्य पदक के साथ विश्व कप में भारत के पदकों की संख्या अब तक 3 हो गई है। इससे पहले महिला निशानेबाज संयम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। पदक तालिका में चीन 14 पदकों के साथ शीर्ष पर है और भारत 3 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। शशांक, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीत लिया है। ज्ञानेश्वरी का ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत खेल अवसंरचना का प्रमाण है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। लगातार कल भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया विशेष, और आज भी ज्ञानेश्वरी का कैसा रहा आज का उनका प्रदर्शन?
2: जी प्रशांत, ज्ञानेश्वरी ने मेडल टैली में भारत के लिए एक और पदक जोड़ दिया है। उन्होंने स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो समेत कुल 199 किलो वजन उठाया। ये जो खिलाड़ी हैं, ये छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव भोंडिया से आती हैं, उसके बावजूद उन्होंने रजत पदक जीत कर यह दर्शाया है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, जीतने का जज्बा सब पीछे छोड़ देता है। इसी के साथ साथ ज्ञानेश्वरी एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक विजेता रह चुकी हैं। स्नैच में ज्ञानेश्वरी ने 3 लिफ्ट शानदार किए और क्लीन एंड जर्क में शानदार उनका जो सफर था वो चुनौतीपूर्ण रहा। ज्ञानेश्वरी ने 107 किलो वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ओनोमे ने तुरंत ही 110 किलो वजन उठाकर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज्ञानेश्वरी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, जिन्होंने 111 किलो वजन उठाकर फिर रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि यह रिकॉर्ड 1 मिनट ही उनके नाम रहा और ओनोमे ने 113 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड पर कब्जा कर लिया। भारोत्तोलन में यह भारत का चौथा और कुल 5वां पदक है।
0: विशेष, ज्ञानेश्वरी ने तो बेहतरीन प्रदर्शन किया ही है और पदक देश के नाम किया, लेकिन अन्य खेलों में भी खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। बहुत सारे खेलों में खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, तो कुछ खेलों में निराशा हाथ रही। कैसा रहा उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन आज?
2: जी अगर प्रशांत अन्य खेलों की बात करें तो आज का दिन भारत के लिए काफ़ी मिला जुला रहा है। धावक तेजस सिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में जगह बनाई है और इसके साथ ही उन्होंने भारत के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए एक और उम्मीद जगाई है कि शायद भारत इसमें पदक जीत सके। वहीं ऊंची कूद में मुरली श्रीशंकर ने अपनी पहली छलांग में 8.01 मीटर की दूरी तय करके ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को पूरा करते हुए पुरुषों की लॉन्ग जंप के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने ये सब पहले ही प्रयास में कर लिया।
0: हालांकि अगर हम बात करें विशेष, जो गुरिंदर वीर सिंह है, जिनका रांची में जो इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन आज गुरिंदर वीर सिंह जो है दूसरे स्थान पर है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनसे सभी को उम्मीदें थी।
2: जी, उनके लिए आज बहुत ही निराशा उनको हाथ लगी। 100 मीटर दौड़ में जहां नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुरविंदर सिंह जो है वो आगे ही नहीं बढ़ सके। अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा ले रहे थे वो, और 25 वर्षीय खिलाड़ी जो है 10.39 सेकंड का समय निकालकर जमैका के रोहन वॉटसन से पीछे रह गया और वो सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए काफ़ी नहीं था।
0: और अगर विशेष सचिन सिवाच की भी बात की जाए तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया आज। कैसा रहा उनका खेल प्रदर्शन आज?
2: देखिए, सचिन सिवाच ने आज विलियम हेविट को हराया है और 60 किलोग्राम बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच गए। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड के जो विलियम हेविट हैं उनको 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ सचिन ने पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की मेडल की उम्मीदों को जिंदा रखा और ग्लासगो गेम्स में पोडियम की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया है।
0: बहुत सारे गेमों के बारे में आपने विशेष बताया, लेकिन और कौन से गेम अभी चल रहे हैं और किन पर और निगाहें होंगी?
2: प्रशांत, इस समय महिलाओं के 58 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में बिंदिया रानी देवी का मुकाबला जो है वो जारी है।

0: वहीं आज रात 10:05 पर लॉन बॉल के भी मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स में राउंड 5 में आज पुतुल सोनोवाल प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे, उनका मुकाबला आज अनवर हमादा से होगा। और भी मुकाबलों की अगर आप बात करें तो रात 12:30 से पुरुषों के 79 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में वल्लूरी अजय बाबू जो है वो खेलते दिखेंगे।
1: और विशेष ये तो हुई आज के मुकाबलों की बात, कल जादूमणि और प्रीति ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उन्होंने उम्मीद भारत की जगह रखी है।
0: जी बिल्कुल, पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि ने राउंड ऑफ 16 में पाकिस्तान के रहमान को 5-0 से हराया है। जादूमणि ने पहले राउंड को 3-2 से अपने नाम किया था, दूसरे राउंड में सभी जजों ने उनको 10-10 अंक दिए। इससे पहले राउंड ऑफ 32 में ये जो भारतीय मुक्केबाज हैं उन्होंने स्कॉटलैंड के एरोन कुलेन को 5-0 से हराया था। वहीं प्रीति ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया 54 किलोग्राम में, और वह पूरे मुकाबले में बहुत ही हावी नजर आई अपने प्रतिद्वंदी पर, और ये जो मुकाबला है उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिया।
1: लगातार भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। और अगर हम कल के खेलों की बात करें तो भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई है।
2: Much better than the first, and there it is, locked away. A true star of Commonwealth Games weightlifting.
3: Chanu Mirabai.
2: More records again for Mirabai Chanu. Gold medal. Commonwealth Games.
1: महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने नया कीर्तिमान बनाया। नाइजीरिया की रजत पदक विजेता रुथ असुकुओ नियोंग ने स्नैच में 75 और क्लीन एंड जर्क में 93 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान, और मलेशिया की आइरीन हेनरी ने कुल 167 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
4: बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत इमोशनल भी हूँ, सब कुछ है। और खुश इसलिए कि मैं काफ़ी सेक्रीफाइस और बहुत सारे टेंशन इंजुरी से लेके गेम्स तक आके मैंने मेडल दिया है। पहला इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना एक प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
1: वहीं वेट लिफ्टर राजा मुथुपंडी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए रजत पदक जीता।
5: Raja Muthupandi, what a result this is. So, Commonwealth Championship silver last year, now Commonwealth Games silver in Glasgow.
1: क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 158 किलोग्राम और 160 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया, लेकिन अपनी आखिरी कोशिश में 170 किलोग्राम वजन नहीं उठा सके और दूसरे स्थान पर रहे। राजा ने रजत पदक जीतने का श्रेय अपने परिवार और कोच को दिया।
6: क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसके बाद मैंने टाइम लाइक लास्ट 23-24 नेशनल्स में मैंने गोल्ड लिया। उसके बाद मोदी नगर में 2 साल से ट्रेनिंग किया वेट लिफ्टिंग वॉरियर्स में, इसी के लिए हमने प्रिपरेशन किया। डिसअपॉइंटमेंट तो हूँ, क्योंकि जैसे मेरा ऊपर मेरा कोच भी ट्रस्ट किया था कि हम गोल्ड के लिए हम पूरा एफर्ट लगाएंगे, लेकिन मैंने अच्छा नहीं किया।
1: वेट लिफ्टर ऋषिकांत सिंह चनम्बम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 121 किलोग्राम वजन उठाकर स्नैच में कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा और रजत पदक अपने नाम किया। रजत पदक जीतने के बाद ऋषिकांत सिंह ने अपना अनुभव साझा किया।
7: पहले हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसने हमारे स्पोर्ट के लिए बहुत बेनिफिट दिया, सभी ने तो जानते हैं। इसके बाद वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट श्री संदीप यादव सर एंड वेट लिफ्टिंग चीफ कोच श्री विजय शर्मा एंड स्पेशली फ्रॉम मणिपुर ओलंपिक मेडल सिल्वर मेडलिस्ट मेरा भाई चनू, मेरा जो दीदी है वो, इसको मैं क्रेडिट दूंगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आज 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
8: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुथुपंडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
1: इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कांस्य पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार से मुलाकात की और उन्हें 10 लाख रुपए के नकद इनाम से सम्मानित किया। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स, जो टेबल टेनिस दिल्ली में शुरू हुआ है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शुरू हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक

0: सप्ताह तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न देशों से आए खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि देशों तथा संस्कृतियों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
1: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: इस बीच श्रोताओं, आपको बता दें कि शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने आज इस प्रतियोगिता में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए जिम्बाब्वे और मालदीव को 3-0 से हराया। पुरुष वर्ग के ग्रुप ए के मुकाबले में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता मानव ठक्कर ने ताइना मोमवोमा को 11-3, 11-2, 11-6 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद अनुभवी हरमीत देसाई ने तापीवा मुसारुवा को 11-5, 11-4, 11-5 से शिकस्त दी। युवा खिलाड़ी पायस जैन ने विक्रम सिंह को 11-3, 11-3, 11-8 से पराजित कर भारत की 3-0 की एक तरफा जीत सुनिश्चित की। बात हॉकी पर, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप कल से कोयंबटूर में शुरू हो रही है। 12 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में देश भर की 30 टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। और आप एक नज़र क्रिकेट पर भी डाल लेते हैं। भारत ने कल जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 में हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप की थी। वैभव सूर्यवंशी ने अंतिम मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ श्रृंखला के प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब जीता। उन्होंने इस खिताब को जीतने के बाद अपने अनुभव साझा किए।
2: प्लेयर ऑफ द मैच होना इंडिया के लिए खेल के सीनियर इंडिया में और प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो वो सपना मेरा पूरा हुआ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं थैंक यू भी बोलूँगा जिन्होंने मेरे जर्नी में सपोर्ट किया मुझे। थैंकफुल हूँ कि सीनियर्स इस तरीके के हैं और कोचिंग स्टाफ भी, मैं तरीके से हमारे हेड कोच VVS सर ने, ऋषि सर ने मुझसे मैचेस से पहले बात किया, मुझे बहुत कुछ मेरे से डिस्कस किया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैच सीरीज स्टार्ट होने से पहले मुझे क्या लग रहा है, मैं किस माइंडसेट में हूँ। और उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया था कि तू बस खेल, बिंदास कुछ सोचना नहीं है। और सीनियर भी मेरे आसपास जो है, मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं अकेला सा हूँ या फिर सीनियर टीम में आया हूँ। सब वैसे ही लगता है जैसे मैं सारे मैचेस हर जगह पे खेलता हूँ उस तरीके के। और ईशान भैया जैसे, वो भी हमारे बिहार से ही है, तो थोड़ा सा वाइब मैच कर जाता है।
0: बात स्क्वाश पर, ओंटारियो में भारत ने वर्ल्ड स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारतीय पुरुष टीम ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जबकि महिला टीम ने भी अपने पहले मुकाबले में प्रभावशाली जीत दर्ज की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण

0: ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मींस तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की 1 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी।

0: कर्नाटकी राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा

0: व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा प्रपोजिंग स्ट्रिक्टर एक्शन इन पेपर लीक केसेस। Both houses of parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over NEET issue. Uttar Pradesh government sets up 4-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador lodging strong protest over death of an Indian national in vessel attack. Deep depression over northwest Bay of Bengal triggers widespread torrential rainfall across Orissa. Orange alert for heavy rainfall issued across North India. And in Commonwealth Games, weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches silver medal in women's 53-kilogram category. And now the news in detail. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. Our report.
2: For the 6th consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha.

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। कलाकार थे जगजीत सिंह। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगा हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुँचते हैं। ये वाहक आमतौर पर मच्छर, टिक, सैंडफ्लाई और पिस्सू जैसे कीड़े या ऑर्थोपॉड होते हैं, जो संक्रमित जीव से रोगाणु ग्रहण करते हैं और उन्हें दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमणों के विपरीत मच्छरों से होने वाले रोग संचरण के लिए इन वाहकों पर निर्भर करते हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, जापानी एंसेफेलाइटिस, जीका, स्क्रब टाइफस आदि हैं। बारिश के मौसम में और बारिश के बाद इन बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, पर डेंगू का संक्रमण बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी देखा जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सेंडल @YARNewsAlerts पर भी #AskYAR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन

0: आईआर और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले धारीवाल जी, ये बताइए कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं?
1: देखिए, मच्छर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बात वहाँ से शुरू करना चाहूँगा, और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो समय आपने रखा है वो बड़ा उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं और बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा होता है, और ये जितने मच्छर जनित रोग हैं, मच्छरों की आप लोग देखते होंगे कि संख्या बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसका कारण का अपने को समझना है आज के कार्यक्रम में। और उससे जो होने वाले रोग हैं, वो जैसा बताया गया कि कुछ वायरल डिजीज़ हैं, उसमें मुख्य डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानीज इन्केफेलाइटिस है, और पिछले कुछ सालों से जिका नाम की बीमारी भी जो है वो अपने देश में रिपोर्ट हुई हैं
0: जी।
1: और कुछ ऐसी जो है वो डिजीज़ हैं जो वनवासी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जैसे मलेरिया है।
0: जी,
1: मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है, और फाइलेरिया है, उसका वैसे बारिशों से संबंध नहीं होता, और जो एक नाम लिया गया कालाजार, वो भी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उसका भी बारिशों से कोई ऐसा संबंध नहीं है, वो अलग उसका कीटाणु है, अलग कीट है उसका, सैंड फ्लाई का नाम जैसे आपने लिया, वो उससे जो है वो होता है, और ख़ास करके बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कालाजार, और उसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, और लगभग अच्छी बात है कि भारत ने लगभग लगभग उस पर विजय प्राप्त कर ली है, और उसका जो WHO का सर्टिफिकेशन है हमारा वो हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि मच्छर जो है वो इसमें तीन कैटेगरी में रखना चाहूँगा मैं। एक मच्छर जो दिन के समय काटते हैं,
0: जैसे डेंगू के,
1: जैसे डेंगू का है, डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर का नाम आम बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इसको, जिसको कोई भी व्यक्ति देख करके पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल डॉक्टर ही जो है वो पहचानेंगे, या जो है वो जो विशेषज्ञ हैं वही पहचानेंगे, उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर में स्ट्रिप्स होती हैं, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, इसी तरह की, तो इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है, और वो दिन के समय काटता है, ये इसमें मुख्य बात है
0: जी।
1: और बाकी जो मच्छर होते हैं वो डॉन और डस्क कहा जाता है,
0: जो रात के
1: संध्या के समय पर, या जो है वो प्रातःकाल
0: अर्ली मॉर्निंग
1: का। और तीसरी कैटेगरी होती है जो मिडनाइट में काटने के लिए आते हैं, और खास करके
0: शिफ्ट में आते हैं
1: वो, तो इन लोगों में भी, मच्छरों में, मतलब एक कि उन्होंने अपना समय बांट रखा है, तो ये एक समाज के लिए मैसेज भी है कि देखिए वो अपनी जो है वो प्रजाति को बरकरार रखने के लिए कोई दिन में आता है, क्योंकि ज़रूरत क्यों पड़ती है उनको, मानव के खून की या पशु के खून की ज़रूरत मच्छरों को इसलिए पड़ती है कि उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजाति जो है वो चालू रखने के लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी का खून चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल आदमी का ही, व्यक्ति का ही खून जो है वो काम करेगा, जानवरों में उनको जो है वो जूफिलिक जो है वो मच्छर कहा जाता है, कि वो जानवरों पर ज़्यादा जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखनी है कि मच्छर दिन में काटने वाले डेंगू करेंगे, और जो सुबह और शाम करने वाले हैं वो ज़्यादातर मॉस्किटो न्यूसेंस मॉस्किटो कहलाते हैं, वो नहीं करते हैं, बीमारी नहीं जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, और ख़ास करके जो नालियाँ वगैरह होती हैं, गंदा जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें, उसकी ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। जो डेंगू का मच्छर होगा वो साफ पानी में, और छोटे छोटे से आपके जैसे बॉटल, बिस्लरी की बॉटल है या कप है, उसमें पानी भी इकट्ठा हो गया, तो उसमें भी ब्रीडिंग, तो और 7 दिन लगते हैं उसमें।
0: डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सब में तेज बुखार आता है, लेकिन अलग अलग हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग उनके?
1: देखिए, डेंगू का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा, और उसके साथ उसको

0: बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा, और उसमें एक खास लक्षण होता है कि रिट्रो जो आईज हैं, आई बॉल, उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है, और चकत्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डेंगी में खास करके ये संभावना होती है कि खून वगैरह निकल सकता है।
1: और चिकनगुनिया में
0: चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द जो है वो होता है बुखार के साथ में।
1: और मलेरिया में डॉक्टर पीयूष
2: जी, ये तीनों बुखार जो हैं पोस्ट मानसून सीज़न में पाए जाते हैं। अगर पहला बुखार बहुत तेज़ हो, जैसे बुखार शुरू हुआ और बहुत तेज़ बुखार हुआ और शरीर पे लाल रंग के रैसेस हुए, और जैसा सर ने बताया कि ये तेज़ दर्द के साथ अगर ये होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है, आँखों के पीछे का दर्द इसका ही है। मलेरिया में बुखार पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि थोड़े समय तक बुखार आया, जारा कपकपी के साथ बुखार आया, ठीक हो गया। और अगर चिकनगुनिया में जो जोड़ों में दर्द होता है वो बुखार के बाद के समय में पाया जाता है,
1: मतलब बुखार ठीक होने के बाद
2: के बाद में, ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो दीर्घकालिक जो जटिलताएं के रूप में हम लोग इसे कहते हैं।
1: अच्छा, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, योगेश जांगरे छत्तीसगढ़ से। योगेश जी
3: जी नमस्ते।
1: नमस्ते योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
3: हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न है
1: जी।
3: पहला ये है कि ये मच्छर जनित रोग क्या जानलेवा भी हो सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की साफ सफाई में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है।
0: देखिए, जहाँ तक योगेश जी जानलेवा की बात है तो ये बीमारियाँ, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में खास करके मलेरिया का प्रकोप पहले बहुत होता था, और आपको शायद जानकारी होगी, आप कौन से जिले के हैं छत्तीसगढ़ में?
1: अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, हालांकि वो हमें सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।
0: छत्तीसगढ़ में मलेरिया का जो उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो बेड नेट्स हैं, मच्छरदानी है, और मच्छरदानी में भी ऐसी जिसमें कीट जनक पदार्थ जो है वो लगा रहता है, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा मलेरिया की काफ़ी कमी आई है। लेकिन जो आपका मुख्य प्रश्न है कि जानलेवा ये हो सकती है यदि जो है वो समय पर दवाई जो है वो ना ली जाए,
1: तो
0: इसी तरह से डेंगू में भी जानलेवा हो सकता है। बहुत कम केसेस में इस तरह के जो है वो लक्षण होते हैं, और चिकनगुनिया तो नहीं जो है वो बहुत
2: एक मोटे आंकड़े के तौर पर अगर देखा जाए तो एक एक से लेकर के 3% तक, जी ये डिपेंड करता है कई सारे चीज़ में कौन से स्पीसीज में है, तो मलेरिया और डेंगू जो है वो जानलेवा हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर धारीवाल सर ने भी कहा, इसके लिए ज़रूरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, यानी जल्द से जल्द इसे पहचानें और उपयुक्त इलाज इसका करें।
1: तो क्या जो नियमित रक्त जांच होती है उससे शुरुआत में पता चल जाएगा संक्रमण का?
2: जी हाँ, ये जैसे मूल तौर पे डेंगू और मलेरिया की बात करें तो दोनों में खून के जांच के द्वारा इसका पता चल सकता है। किस दिन बुखार के किस दिन कौन सी जांच कराई जाए, यह जांच अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार हमें पता चल सकता है। और अब तो कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि ये जिसकी कि सेंसिटिविटी जो है 80-90% तक ऐसा रहता है, या इससे भी ज़्यादा कई केसेस में होता है, जिसमें कि हम लोग बफीकोट और जो अगर उसे अगर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में थिक एंड थिन स्मियर के द्वारा देखते हैं, तो ये सारी जांच बड़े प्रमाणिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो बारिश के मौसम के बाद जब कभी भी आपको बुखार और उसके लक्षण, जिसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में आगे करेंगे, अगर आपको वैसा हो तो आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर के सलाह पर ही आप उपयुक्त जांच करवाएं, और जांच के अनुसार जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
0: अभी एक योगेश जी का एक प्रश्न और था कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का, तो उसमें एक संदेश मैं देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के द्वारा कि सप्ताह में एक दिन, ये जो आजकल का मौसम चल रहा है मानसून का, पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में एक बार, चाहे जो भी आपको ठीक लगे, वो नागरिक जो है वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड करके और घर

0: और घर के आसपास जो डेंगू का मच्छर होता है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जो है वो जा सकता, केवल मीटर्स में ही उसकी जो है वो फ्लाइट रेंज होती है, इसको फ्लाइट रेंज बोलते हैं हम। तो घर और घर के आसपास यदि जो है वो हम हफ्ते में एक बार एक नियम बना लें कि परिवार के लोग निकलें और जो है वो ये देखें कि कहीं कोई कंटेनर तो नहीं पड़ा रह गया, कोई बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का कप तो नहीं पड़ा है, कोई प्लास्टिक का सामान तो नहीं पड़ा है, छत पर कोई ट्यूब वगैरह तो
1: टायर
0: नहीं पड़ी है, टायर वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको जो है वो खाली कर दें।
1: और कूलर
0: और
1: की सफाई भी बहुत
0: कूलर
1: जरूरी
0: की
1: है,
0: सफाई में उसमें रगड़ना जरूरी है,
1: सिर्फ पानी सुखाना ही नहीं, रगड़ना भी जरूरी
0: रगड़ना
1: है।
0: जरूरी है। उसके पीछे साइंस ये है कि अंडा जो है वो चिपका रह जाता है दीवार से, और इसमें मच्छरों के जो अंडे होते हैं उसके द्वारा भी एक से दूसरे मच्छर को भी बीमारी जो है वो जा सकती है, जिसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये एक संदेश
1: जी,
0: है।
1: विपिन
0: विपिन
1: है सागर मध्य प्रदेश से।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते विपिन जी।
2: मेरा सवाल ये था कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो तीनों बीमारियां हैं, क्या इनका होने का कारण एकमात्र मच्छर ही होता है या फिर कोई अन्य कारण से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी को बीमारी हुई है तो फिर मच्छर काटने से ही होती है? थैंक यू।
3: देखिए, विज्ञान के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया ये एक वायरस की ये के द्वारा ये होता है, और मलेरिया जो है एक पारासाइट की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कराते हैं, और मच्छर काटने की वजह से यह मूल तौर पर होता है।
1: देशदीप दास है हमारे साथ अब, यह है केंद्रापाड़ा उड़ीसा से। जी
4: नमस्ते जी,
1: नमस्ते। नमस्ते
4: नमस्ते जी,
1: जी, आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं।
4: जी मेरा सवाल है, वेक्टर जनित रोगों का कारण क्या है?
0: देखिए,
1: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो
3: कार्यक्रम के शुरू में हम लोगों ने इसके संबंध
1: हम
3: में
1: अभी तक
3: विस्तृत
1: यही
3: चर्चा
1: चर्चा
3: की
1: कर रहे हैं, तो फिर भी संक्षेप में
3: जी।
1: एक बार फिर से बता दीजिए।
0: देशदीप जी, जो वेक्टर एक शब्द है जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बाकी ये जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स या कीट होते हैं जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, प्लेग का जैसे पिस्सू जो है वो जिसको ये कहा जाता है, जो इसके ऊपर रहता है, चूहे के ऊपर रहता है, और स्क्रब टाइफस का एक माइट्स होता है, छोटा छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाले रोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है।
1: अमित उपाध्याय हैं अब फोन लाइन पर सासाराम बिहार से। अमित जी क्या कहना चाहते हैं आप?
5: जी मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम बिहार से। मैं
1: जी
5: ये मेरा ये सवाल था कि हर एक साल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है, और वैसे भी जो छोटे मोटे जो बरसात के दिनों में और भी जगह होता है, तो हम लोग इसमें कुछ नए नए इतना टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट हो गया है, चाहे बहुत सारा हम लोग उपग्रह वैसा छोड़ते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या कुछ ठोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि इसमें कुछ ठोस हम लोग मच्छर को लेकर एक ऐसा कुछ बना दिया जाए ताकि उस पे उसको कुछ मारा जा सके, या कुछ वैसा कुछ दवाई या प्रयोग करके ताकि उसको कुछ मतलब परमानेंटली कुछ सोल्यूशन हो जाए, खासकर बरसात के मौसम में 4-5 महीने
1: जो।
3: अमित जी, आपका विचार बहुत उत्तम है। शायद अगले कुछ वर्षों में या फिर अगले कुछ दशकों में इस संबंध में भी कुछ नई चीज़ें जो बायोटेक्नोलॉजी इसके माध्यम से हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए जैसा कि कार्यक्रम के दरमियान में डॉक्टर धारीवाल साहब ने आपको बताया है कि सप्ताह में एक बार अपने आसपास 1 किलोमीटर तक, 500 मीटर तक आप जाएं, जहां कहीं भी जल जमाव की समस्या हो तो उसको आप ठीक करें, आसपास सफाई रखें। वर्तमान समय में यह सबसे उचित और कारगर उपाय है, और पोस्ट जो बरसात के समय में जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन करें, यानी कि पूरे बाजू वाले ये कपड़े पहने, घर के बाहर जब कभी भी ये निकले तो मॉस्किटो रिपेलेंट लें, और जिन क्षेत्रों में मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है वहाँ पर आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब तो इंसेक्टिसाइड से जो अप्लाइड जो ये मॉस्किटो नेट रहता है, जो मच्छरदानी रहता है, उसका प्रयोग करें। इन सभी के प्रयोग के माध्यम से हम लोग मच्छर के काटे जाने के कारण जो कोई भी बीमारी होता है उसकी संख्या में को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: ये बात ये भी कर रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ सरकार कुछ करे मच्छरों से
3: जी
1: बचाव के लिए, क्योंकि छोटे स्केल

0: पर तो लोग कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल पर तो सहयोग चाहिए।
1: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें अमित जी का जो कहना है बाढ़ वाला, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूं सामने कि जब बाढ़ आती है तो ये जितने ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो शुरू में तो ये मच्छर जनित रोग जो हैं वो कम होते हैं बाढ़ वाले में, लेकिन उसके बाद जब पानी रिसीड कर जाता है, हाँ, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है, और खास करके छोटे छोटे पोखर जो बन जाते हैं,
0: जो रुक जाता है पानी
1: उसमें यदि 7 दिन से ज़्यादा का होगा तो उसमें मच्छर होगा, और फिर उसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है
0: 7 days।
1: तो लगभग ये 7 days का उसका एडल्ट निकलने का टाइम, और उसको इन्फेक्ट होने का टाइम, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को वो काटेगा तब जो है वो। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरी जो है वो इसमें विज्ञान की तरफ, जो सैटेलाइट की बात की इन्होंने, तो वो सैटेलाइट से वो एरिया इंगित कर लिए जाते हैं, और उसमें फिर विशेष खास करके इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह किया जाता है, जैसे पहले DDT का होता था। आजकल DDT क्योंकि बैन हो गई है, और उसकी जगह दूसरे केमिकल जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के वो हैं उनका स्प्रे होता है, और उसका प्रभाव काफ़ी समय के लिए रहता है। तो सरकार की तरफ से ये सुविधा की जाती है।
0: हमारे अगले श्रोता हैं चौधरी महेंद्र सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी चौधरी जी, आप जी अपना सवाल पूछिए।
2: जी आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय, नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: नमस्कार जी।
2: सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये डेंगू की बीमारी है, ये नर के काटने से फैलती है या मादा के से, और इसके लक्षण क्या है जब ये काट लेता है मच्छर?
0: डेंगू के लक्षण तो हम बता ही चुके हैं।
3: डेंगू के लक्षण, ये मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है। तेज बुखार होना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं।
0: चलिए, डेंगू के प्रिवेंशन के लिए ड्राई डे का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और बताइए।
1: देखिए, इसमें इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जो मच्छर का लाइफ साइकिल है वो, यदि पकड़े अपन एडल्ट यदि पकड़ते हैं तो एडल्ट अंडे देता है और वो पानी में देता है, वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, और फिर वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा से वो इमर्ज होकर के फिर एडल्ट होता है जो काटता है। तो ये सारी प्रक्रिया में अंडे से लेकर के और एडल्ट बनने तक लगभग 7 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आज अंडा दिया और वो एडल्ट बन जाएगा। तो इसलिए यह 7 दिन का कंसेप्ट आया है कि यदि पानी आपका 7 दिन से ज़्यादा खड़ा रहा है किसी भी जगह पर, चाहे वो आजकल जैसे प्लास्टिक ये चाय के कप्स वगैरह जो है वो मैं देखता हूँ जगह जगह जो है वो छोड़ देते हैं, और उसका फिर कलेक्शन नहीं होता, तो बारिश हो जाती है, तो उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें खास करके ये डेंगू के जो मच्छर हैं, एडीज मॉस्किटो जिसको बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटोज, वो जो है वो, तो इसलिए वो 7 दिन वाला कंसेप्ट जो है वो आया है।
0: हमारे अगले श्रोता हैं राकेश शिमला से।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोचखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: जी
4: जी, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे डेंगू मलेरिया जो है, अगर आप बच्चों को काटा है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा बुखार से नहीं कर पाते हैं,
1: राकेश जी, बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए ये जो है वो एक तरीका ये होता है कि दिन के समय में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, तो छोटी जो मच्छरदानी आती है उसमें बच्चे को सुलाएं, और बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएं कि उसमें मच्छर के खुला शरीर जो है वो ना रहे, और तीसरी बात ये कि जो है वो जालियों का, घरों में जालियों खिड़कियां खुली नहीं होनी चाहिए, और ख़ास करके शिमला के क्योंकि आप हैं, और क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है वो अछूता है।
0: कई पहाड़ी जगहों पर भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, नागालैंड में भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: पीयूष जी, ये बताइए कि डेंगू को लेकर बहुत सारे

0: भ्रांतियां हैं वो क्या क्या है, जैसे प्लेटलेट्स को लेकर ही काफी बातें
1: जी
0: की जाती है कि इसे बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार करो, कितना सच है, कितना कारगर है ये?
1: देखिए, डेंगू को लेकर के 3-4 मुख्य भ्रांतियाँ हैं। सबसे पहले ये कि डेंगू के इलाज में सिर्फ प्लेटलेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहता। किसी भी मरीज को या डेंगू के सीजन में हर कोई प्लेटलेट को लेकर के बड़ा जब बहुत ज़्यादा पैनिकी होता
0: रोज
1: है,
0: उसकी संख्या देखी जाती है,
1: रोज़
0: आज
1: उसकी
0: कितना
1: संख्या
0: हुआ,
1: देखी
0: कल कितना
1: जाती है।
0: हुआ।
1: तो सबसे पहले प्लेटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसकी संख्या बुखार ठीक होने पर यानी 5 से 7 दिन या उसके बाद में यह महत्वपूर्ण रहता है। शुरुआती समय में बुखार का नियंत्रण करना यह ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और इस दौरान हाइड्रेशन का अप्रोप्रिएट होना यह ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और इस दौरान अगर ब्लड की जांच भी कराई जाती है तो ब्लड में जो है पैक्ड सेल वैल्यू यानी हिमेटोक्रिट की जो वैल्यू देखी जाती है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले जब कभी भी डेंगू या इसकी संभावना अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल नाम की ही दवा लेनी चाहिए। डिक्लोफिनैक या निमोसुलाइड या ऐसे दूसरी कोई भी और दवाई जो लेना लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बाद में प्लेटलेट की संख्या कम होती है, पहली बात।

0: में जो है पैक्ड सेल वैल्यू यानी हिमेटोक्रिट की जो वैल्यू देखी जाती है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले जब कभी भी डेंगू या इसकी संभावना अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल नाम की ही दवा लेनी चाहिए। डिक्लोफिनैक या निमोसिलाइड या ऐसे दूसरी कोई भी और दवाई जो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बाद में प्लेटलेट की संख्या कम होती है। पहली बात, शुरू के समय में जब बुखार बहुत तेज हो तो पैरासीटामोल भी एक डेफिनेट डोज तक दिया जा सकता है,
1: जैसे
0: कि 500 से लेकर के 1 ग्राम, एक दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम तक एडल्ट आदमी को दिया जा सकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये रेडियो पर सुन करके लोग खुद का इलाज ना करें, ये सिर्फ एक बताने के लिए डॉक्टर के पास जा करके करें। और अगर बुखार उस समय ठीक ना हो तो फिर वो टेपिड वाटर से स्पॉन्जिंग करें, नंबर एक। नंबर दो ये हुआ कि प्लेटलेट की संख्या को लेकर के बहुत ज़्यादा ना घबराएं। ऑल्दो 1 लाख से कम की संख्या को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, लेकिन सीवियर टाइप ऑफ ब्लीडिंग की संख्या, ये ब्लीडिंग की संभावना बढ़ने के लिए 10,000 या उससे कम के लेवल पर ही प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट को चढ़ाने की ये के इंडिकेशन बनते हैं।
1: 10,000 से ऊपर हो तो जरूरत
0: बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हॉस्पिटल के में सेटअप में अगर आपको कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो वो और ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर टू ये बात हो गया। नंबर तीन, किसी भी भोज्य पदार्थ के खाने से, जैसे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बकरी का दूध या फिर पपीते के पत्ते या छाला, ये पीने की वजह से, पीने से जो है प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल पुरजोर ढंग से कहना चाहूँगा कि यह एक भ्रम है। किसी भी तरह के भोजन के पदार्थ को, चाहे वो कोई तरह का फल हो, कई लोग कीवी हो गया या पपीता हो गया, ये सब के खाने से किसी भी तरह से नहीं होता। पपीते के छाले को पीने के वजह से जो है कई बार गैस्ट्राइटिस या फिर लीवर इंजाइम के बढ़ने की या हल्के तरह से लीवर में सूजन की आने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोगों में मैं ये इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बताना चाहूँगा कि यह बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग एक दूसरे को जो है वो शिक्षा जो है
1: हर आदमी
0: डॉक्टर बनने, तो यह नुकसान ज़्यादा करता है। तो जब कभी भी डेंगू होने, डेंगू में 95% बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाता है, सिर्फ 3-4% लोग हैं जिनको कि अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें कि डेंगू के जो सीवियर साइन जो होते हैं वो अगर उसको आप देखते रहें, आप अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के संपर्क में रहें तो ये आपका ठीक रहेगा।
1: विजय कुमार कोल्हापुर से हमारे एक और श्रोता। विजय जी।
2: जी कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: विशेषज्ञ को नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
2: हाँ, विजय कुमार महालिंगा, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवर, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
1: जी।
2: मेरा सवाल यह है कि मच्छर कट गए तो, समझो मच्छर कटे तो कौन सी क्या सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए?
0: अगर मच्छर काट ले तो फिर उसके बाद उस जगह को हल्का सा रब कर दें और बस, ताकि वो आपको जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। मच्छर काटने से बचने के लिए ये आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जी।
1: मच्छर काटने के बाद बीमारी के लक्षण, रोग बुखार हो जाए, दर्द हो,
0: तब हो,
1: उल्टियाँ हो, तब आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। धारीवाल जी, 21 जुलाई को सरकार ने डेंगू की नई वैक्सीन क्यूडेंगा को स्वीकृति दे दी है। कहा जा रहा है कि डेंगू नियंत्रण उपायों में ये मददगार साबित होगा, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करें।
3: ये बिल्कुल आपने ठीक जानकारी दी कि भारत सरकार ने ये क्यूडेंगा नाम की एक वैक्सीन है जो डेवलप हुई है, और इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इशू कर दिया है। और ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो इसकी टेस्टिंग होती है, और पहले भी ये बात चली थी और डेंगू की वैक्सीन जो है वो आई थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं जो है वो किया था। इस बार वाली जो वैक्सीन आई है ये क्यूडेंगा, ये अभी लाइसेंस हुई है मार्केटिंग करने के लिए। अभी इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, जैसे और दूसरी टीके लगते हैं बच्चों को, चाहे वो DPT का हो, पोलियो का हो, या आजकल पेंटावेलेंट जो है वो दिया जा रहा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा रही है, तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी ये क्यूडेंगा वैक्सीन उस स्थिति में नहीं है,
1: भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं।
3: भविष्य में इस पर जो अपना भारत सरकार का एक नियम है उसके द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जो है वो, कि जब मासेस में यूज होगी
1: जी,
3: मतलब इसमें आपके

0: प्रोग्राम के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डेंगू बुखार होता है वो चार तरह के है वायरल, लेकिन चार तरह के अलग अलग इसके वायरसेस होते हैं, जिसको डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 ऐसा नाम जो है वो दिया गया है। डेंगू 1 और डेंगू 3 माइल्ड होता है
1: जी,
0: और डेंगू 2 और डेंगू 4 ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि ब्लीडिंग की जो है वो टेंडेंसी हो सकती है। तो वो जो है वो आपस में कैसी रिएक्ट करेंगे
1: जी,
0: तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जब यूज होंगे मासेस में तब उसका।
1: पीयूष जी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो म्यूनिसिपल एजेंसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए, संक्षेप में?
2: जी, इन बीमारियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी हर व्यक्ति और RWA की है। अपने आसपास जहां कहीं भी पानी अगर जमा हो रहा हो तो सप्ताह में एक दिन सभी लोग बाहर निकलें और उसके बाद ये करें। यह बीमारी जो है वो ठहरे हुए पानी में फैलता है। अगर ठहरे हुए पानी में आसपास अगर सफाई रखेंगे तो सरकार को और हम सभी स्वास्थ्यकर्मी को नियंत्रण करने में काफ़ी मदद मिलेगी।
1: अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSGtalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
4: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 10 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत।

0: नमस्कार श्रोताओं, खेल जगत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनेंगे पैरा स्विमर और कोच जगदीश तेली से बातचीत।
1: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि पानी हर बाधा को अपने रास्ते से काटता हुआ आगे बढ़ता रहता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही खिलाड़ी है जिन्होंने ना सिर्फ पानी की लहरों को बल्कि जीवन में आई हुई सभी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए सफलता के नए आयाम कायम किए हैं। आइए स्वागत करते हैं जगदीश तेली जी का। जगदीश जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी नमस्कार सर।
1: जगदीश जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
2: सर, मेरा नाम जगदीश तेली है, मैं राजसमंद का निवासी हूँ और पैरा में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ।
1: जैसे कहा, आप पैरा स्विमर हो
2: जी,
1: तो ये जो आपके साथ जो घटना हुई है इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, ये कैसे हुई और किस उम्र में हुई?
2: सर, ये घटना मैं जब 7 साल का था तब हुई है। उस समय मतलब छोटा था मैं उस समय, लेकिन ये 7 साल की उम्र मेरे साथ घटना हुई थी।
1: अचानक से हो गई थी ये?
2: अचानक मतलब ऐसे मेरे माता पिता बताते हैं कि अचानक मतलब पैर जो है पैरालिसिस हो गया, मैं चल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो वापस थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था।
1: जैसे आपने कहा आपको 7 साल की उम्र में ये हुआ, तो उसके पहले तो आप एक नॉर्मल किड थे
2: जी,
1: लेकिन जब ये घटना हुई तो फिर आप
2: एक
1: पैरल वो हो गए, आप डिसेबल।
2: हाँ,
1: वो हो गए।
2: जो चलने में भी सहारे की जरूरत होती थी उस समय
1: जी। तो जो समाज है उसका रवैया आपके लिए बिल्कुल बदल गया या वो ही रहा?
2: नहीं, बहुत नेगेटिव था सर।
1: जैसे कि
2: जैसे हीन भावना से या फिर कोई बोल देना, जैसे डायरेक्ट ही बोल देते थे, मतलब एक ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन अब ऐसे शब्द है कि जैसे लंगड़ा है ऐसे बोल
1: जी, जी।
2: इस तरह की सुनने को मिलता था, अब कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा,
1: मतलब वो समझते थे कि आप बोझ बन जाओगे।
2: जी, बोझ बन जाओगे जी।
1: और आपके माँ बाप क्या सोचते थे?
2: नहीं, उनका मतलब बहुत पॉजिटिव था भाई, जो भी है वैसा है, क्योंकि माँ का एक मतलब कैसा भी बच्चा हो, माँ बाप का तो लाडला होता है
1: जी
2: जी। तो वो उसमें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई उनके सपोर्ट से।
1: आपको कब ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करना है, खासकर स्विमिंग को लेकर?
2: ये सर एक मतलब एक खेल खेल में हुआ है। मैं जब ऐसे स्विमिंग खाली सीखने जा रहा था और जब मैंने भक्ति शर्मा का देखा, उदयपुर की जलपुरी नाम से फेमस है
1: जी,
2: और उनकी माता जी के अंदर में मैंने स्विमिंग सीखी थी बाद में, तो उनका मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें वो इंग्लिश चैनल पार किया था 2016 में, तब से मेरे भी मन में आया कि लड़की होके कर

0: सकती है, तो मैं खाली रासमन झील क्यों, मैं नहीं सोचा कि मैं रासमन झील में भी पार करूँ। तो मैंने ऐसे सोचा था और किसी को बोला मैंने, भाई मैंने ऐसे रासमन झील पार करनी, तो मुझे बोला कि नहीं नहीं तू तो दिव्यांग नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने दिमाग से आने की अब तो करना ही है, मतलब एकदम तरह का मैंने पॉजिटिव लिया कि नहीं नहीं अब तो मुझे करना है, उन्होंने मना किया इसका मतलब, तो क्योंकि मुझे स्विमिंग आ गई थी और मुझे पता है कि मैं डूबूंगा तो नहीं, कम से कम कैसा भी हो जाए, मौसम कैसा हो जाए भले, या फिर कुछ भी हो जाए।
1: स्विमिंग में सबसे ज़रूरी होती है कि आपके हाथों के साथ साथ पैरों का भी इस्तेमाल हो
0: जी,
1: ठीक है। तो आपको शुरुआती दौर में किन बाधाओं का सामना करना पड़ा?
0: सर एक भगवान, मतलब एक लोग कहते हैं कि भगवान कुछ लेता है तो देता भी है, तो मेरे में एक चीज़ थी कि मेरे जब कोच भी बोलते सब कि मेरे जो पैर में जो पोलियो है उसकी वजह, मतलब पता नहीं मतलब, लेकिन मेरे हाथ में जो हाथ है आम स्विमर जो होते हैं उनसे थोड़े लंबे हैं।
1: अच्छा।
0: तो मेरे वो मुझे फ़ायदा मिला उसका,
1: उस चीज़ का फ़ायदा मिला
0: जी।
1: और फिर जब आपने शुरुआत की तो फिर कहाँ से, नॉर्मल स्विमिंग से ही की कि जैसे आप गांव में तो लोग तालाबों से शुरुआत करते हैं?
0: तालाबों से सर, वही नॉर्मल स्विमिंग जो देसी गांव में होती है, क्योंकि मुझे फ्री स्टाइल का स्ट्रोक भी उदयपुर में आया तब पता चला कि भाई एक्यूरेट स्विमिंग ये भी होती है।
1: अच्छा। और फिर उसके बाद फिर आप कैसे कैसे धीरे धीरे अप्रोच करते गए?
0: मैं फर्स्ट टाइम सर यहाँ यूपी में एक रिवर स्विमिंग थी नेशनल इवेंट, उसमें गया और ब्रॉन्ज मेडल लगा। तो एक तरह का होता है जैसे एक मेडल लग गया तो आपके पंख लग गए हो।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी, तो उस टाइप का मेरा वहाँ हुआ। फिर मेरा मतलब एक अब खुद में भी सर पॉजिटिव सोच ये सब जागृत हो जाती है कि एक मेडल लग गया तो मतलब आपको फिर धीरे धीरे सब रास्ते भी खुल जाते हैं, कहाँ से कहाँ आगे क्या बढ़ना है, आगे के जो भी स्ट्रोक है कैसे सीखने हैं ये चीज़ें सब।
1: एज अ पैरा स्विमर और नॉर्मल स्विमर जब सीखते हैं तो इन दोनों में ट्रेनिंग को लेके क्या अलग अलग रवैया रहता है,
0: बहुत
1: या फिर मतलब टेक्निक वगैरह कुछ अलग रहती है दोनों में?
0: नहीं तकनीक तो सर सेम होती है, लेकिन समझाने का तरीका जो होता है
1: जी,
0: जिसे आम स्विमर है उनको कोच समझा सकता है उनके तरीके से, क्योंकि उनको पता है वो। और आज हमें पूरे भारत में कई बहुत कम देखने को मिलते हैं दिव्यांग के लिए स्पेशल कोई कोच हो।
1: बिल्कुल।
0: तो अब कोच दिव्यांग अगर के लिए, दिव्यांग के लिए होगा तो वो उसकी तरफ से समझा सकता है, क्योंकि उन्होंने वो फेस किया है। अब जैसे मैं हूँ, मैं दिव्यांग हूँ और मेरे जो स्टूडेंट है, मैं मुझे पता है ये अगर पैर नहीं है तो क्या तरीका अपनाएंगे तो जाके वो मेडल लाएगा। तो उस तरीके से वो अब धीरे धीरे होने लगा है। पहले ये नहीं था कि दिव्यांग के लिए वो समझाने वाला हो। जैसे मुझे बहुत सारी जगह ऐसे भी थे कि नॉर्मल स्विमर जो स्विमर स्विमिंग कर रहे हैं उससे अलग रखा जाता है, भाई ये तू अलग यहाँ पर कर ले। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई कि मैं उनके पास में, हालांकि उनके साथ नहीं कर रहा हूँ लेकिन पास में करके मैं उनके तरह के कॉपी करने की कोशिश करता था, तो उससे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ ज़्यादा।
1: तो ये स्विमिंग करने के लिए कुछ जैसे स्पेशल इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है
0: जी,
1: पैरा स्विमर्स के लिए, कि वही इक्विपमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल स्विमर्स के लिए रहते हैं?
0: पैरा में कुछ अब आने लगे हैं, पहले नहीं होते थे इतने,
1: पहले नहीं होते थे
0: जी।
1: अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है,
0: अब अपग्रेड होते जा रही है, जैसे अभी डाइविंग के लिए भी आ रहे हैं, सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई अब।
1: अच्छा, जब आपने अपना पहला मेडल जीता था जैसे कि आपने बताया ब्रॉन्ज मेडल था
0: जी,
1: है ना, उसके बाद जो समाज का रवैया था वो किस कितना चेंज हुआ आपके प्रति?
0: जो लोग सर मुझे बोलते थे पहले, जैसे मैंने रासमन झील पार करी उस समय मुझे जो बोलते थे भाई तू नहीं कर पाएगा ऐसा वैसा, वही लोग जैसे माला लेके आए फिर वही लोग तारीफ करते थे, तो वो फिर एक अलग ही खुशी देता था।
1: आपने इंटरनेशनल भी कम्पीट किया है
0: जी,
1: तो जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें आप कंपटीशन में जा रहे थे, उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? कभी आपने सोचा था कि मैं एज अ पैरा स्विमर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाऊंगा?
0: सर सोचा तो नहीं था, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो इतना बड़ा सोचना मेरे लिए बहुत बड़े एक सपने की तरह था
1: जी।
0: लेकिन जब समाज का सपोर्ट, अपने घर वालों का सपोर्ट, सबका जो कोच का जो रवैया है या भी उनका जो तरीका है अपने बताने का, फेस करने का, उससे सर मुझे बहुत मतलब फ़ायदा हुआ है। और समाज जब एक होता है ना, जब मेरा आप बोला ब्रॉन्ज मेडल लाया, उसके बाद से मेरा लाइफ एक तरह का जैसे चेंज होने लगी थी। तो उससे मतलब अब जब इंटरनेशनल जा रहे हो आप तो उसमें तो होता ही सर एक प्रेशर तो होता है, हालांकि वो वाले खेलने का, लेकिन एक खुशी भी होती है कि चलो एक गांव से निकल के यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी
1: जी। बिल्कुल। आपकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी चीज़ है इंग्लिश चैनल और कैटालिना चैनल की
0: जी जी,
1: इन दोनों चैनलों के बारे में आपके मन में सबसे पहले विचार क्या आया
0: सर? मेरा
1: और कहाँ से आया, मतलब आपने कैसे सोचा कि मैं इन दोनों चैनलों में उतरूँ और इनको पार करूँ?
0: मैं सर है मतलब जब स्विमिंग की मेरी शुरुआत हुई थी मेन, तब मैं निकला ही इसलिए था कि इंग्लिश चैनल करना, 2009 में 10 में हमारा प्लान था कि इंग्लिश।
1: अच्छा, आपने उनसे जो उदयपुर की जो भक्ति जी थी, हाँ, उनसे प्रेरणा लेके,
0: उनसे प्रेरणा ली कि भाई मुझे भी इंग्लिश चैनल करना है।
1: हाँ।
0: लेकिन क्या हुआ कि ऐसे जैसे सर फंड की भी जरूरत होती है
1: जी, बिल्कुल।
0: जैसे मैंने पहले बताया कि परिवार में किसान परिवार से हूँ तो इतना वहाँ से तो होना नहीं, मतलब

0: बाहर तक जाना मतलब सोचने से भी, और ट्रेनिंग के लिए भी नहीं हो रहा तो वहाँ तो क्या होगा सर। तो फिर पैसे नहीं हुए थे, तो मतलब 2010 तक मेरे बजट नहीं हुआ था, तो फिर नहीं कर पाया मैं। लेकिन जब मेरे स्टेट लेवल पे नेशनल पे मेडल लगने शुरू हो गए और लोगों का जैसे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, तो अलग अलग बहुत सारी कंपनियों भी हमें सपोर्ट किया, जैसे हमारे केलवा से भी कुछ संस्थाएँ हैं, राजसमंद से, उदयपुर से हैं, मुंबई से हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था। और उससे हम इंग्लिश चैनल करके आए, और इंग्लिश चैनल में हमारा सर एक पैरा ग्रुप बना, जैसे हम नेशनल लेवल पर मिलते रहते खिलाड़ी लोग, तो उसमें हमारा एक ग्रुप बना, उसमें बोला सबको करना था इंग्लिश चैनल। तो हमने वहीं से एक प्लान करके 2018 में प्लान किया कि अब करना है। तो फिर हम रोहन, हमारे जो कोच थे रोहन मौर्य जो पुणे के हैं, उनके दिशा निर्देशन में हमने ट्रेनिंग करी वहाँ, और फिर 2018 में करके आए हम।
1: तो जब आप इंग्लिश चैनल पार कर रहे थे, तो उस समय आपको क्या रियलाइज हुआ कितनी बड़ी चुनौती है, और ये उस समय क्या क्या बाधाएं आई?
0: सर एक तो इंग्लिश चैनल अपन बोलते हैं यहाँ, यहाँ खाली खाली बोलना देखना मतलब करना ऐसा सोचना आसान है, लेकिन जब हम वहाँ हम गए ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ जो लगा जैसे एक हाथ पैर सुन्न हो जाना,
1: बिल्कुल
0: ये चीजें हमारी,
1: पानी का बहाव भी ज्यादा होता है,
0: तो दिमाग में कभी ऐसा हमारे भी दिमाग में आया था कि यार इसकी जगह कोई दूसरा गेम चूज करते तो अच्छा था, क्योंकि इतना ठंडा पानी और खाली यहाँ मतलब ये दूसरा गेम करते तो ठंड तो ठंड से बचाते हैं, लेकिन वहाँ चलो गए हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग करी वहीं पे, तो हम उसी लेवल मतलब जहाँ पे हम देखते थे वहाँ के लोग एकदम ओपन, जैसे हम कट में घूम रहे हैं कट कपड़े पहन के, और हम ऐसे जो अपने सर्दियों में पहनते हैं वो कपड़े पहन के घूम रहे थे। तो वहाँ पे फिर लगा कि सर ये मतलब इसके ये अब हम कैसे कर पाएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम 1.5 महीना वहाँ प्रैक्टिस करी, उसके बाद में हमने उसी उनकी तरह आराम से कर लिया जैसे।
1: और फिर उसके बाद कैटेलिना चैनल का नंबर आया
0: जी।
1: जो चुनौतियां इंग्लिश चैनल के समय थी, क्या वही चुनौतियां कैटेलिना चैनल के समय थी कि वहां पे कुछ विपरीत वो माहौल था?
0: वो विपरीत माहौल था वहाँ, इंग्लिश चैनल बहुत टफ है,
1: हाँ,
0: कैटेलिना चैनल थोड़ा सा लाइट, मतलब थोड़ा सा मतलब आप एकदम ईजी भी नहीं मान सकते उसको, लेकिन थोड़ा लाइट है, जो ठंडे जो कम ठंडा है जैसे, और चैलेंजिंग नहीं। इंग्लिश चैनल में बहुत करंट आते हैं, जैसे करंट वेव आते हैं अंदर के जो आपको पीछे खींचते हैं, तो केरला चैनल में इतना नहीं था। और प्लान था हमारा कि जैसे इंग्लिश चैनल करना, फिर केरला चैनल करना, 7C का टारगेट था, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए थे।
1: अच्छा सर, आप एक ट्रेनर भी हैं
0: जी,
1: आपके पास जब कोई बच्चा स्विमिंग के लिए आता है, खासकर पैरा स्विमर, उसमें आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हैं कि वो पानी में उतर के स्विमिंग कर ही पाएगा?
0: नहीं, उनको विश्वास में लेते सर, प्यार से भी बच्चे मतलब कर लेते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ते हैं हालांकि।
1: अच्छा,
0: लेकिन पहले जो होता है प्यार से समझाना जैसे करना ना कर लेते हैं, हालांकि ज्यादातर स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं होती है। मैंने अब तक जो सीखा है जितने भी पैरा हैं, मुझे जो नॉर्मल लोगों को सिखाना और उनको सिखाना बहुत आसान लगा, मतलब पैरा को सिखाना मुझे बहुत आसान लगा।
1: ऐसा क्यों
0: पता नहीं, ये अलग ही उनके अंदर एक सर अलग ही होता है, वो जुनून होता है थोड़ा सा, क्योंकि वहां तक आना
1: साबित करने का जुनून रहता है।
0: हाँ, साबित करने का जुनून होता है।
1: अच्छा जगदीप जी, जाते जाते हमारे जो श्रोता है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हमारा उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति को अपने बचाव इतना स्विमिंग आनी चाहिए। अगर आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बचाव जितने तो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, और माता पिता को भी अपने बच्चों को अपने बचाव जितने सिखानी चाहिए।
1: तो श्रोता, ये थे श्री जगदीश तेली जी। आपने अपनी कहानी से ये बताया, ये साबित किया कि शारीरिक बाधाएं सिर्फ नाम की होती है, अगर आपका मानसिक ताकत हो और आपके पास कर जाने का जुनून हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, भले वो इंग्लिश चैनल हो या कैटेलिन चैनल हो। और हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में सातों के सातों चैनल पार करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद सर।
2: इस प्रेरणापूर्ण बातचीत के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और कार्यक्रम के अगले क्रम में हम आपको सुनवाते हैं पैरा एथलीट सुदर्शन मीणा से राजेश महावर की बातचीत।
3: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, खेलों के बारे में बहुत सी प्रतियोगिताओं का जिक्र आपने सुना होगा, जिन्हें हम ये कहते हैं कि शारीरिक रूप से जो पूर्ण नहीं है, पैरा उनके लिए भी एथलेटिक्स होती है। और आज हमारे साथ में हमारे आज के अतिथि हैं सुदर्शन मीणा, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। सुदर्शन जी नमस्कार।
4: नमस्ते सर।
3: सुदर्शन जी, आपसे बहुत कुछ हम जानेंगे आज, हमारे श्रोताओं के लिए प्रेरणा की बात होगी, उत्साह की बात होगी। और सुदर्शन जी, आप छपाऊदा बूंदी के रहने वाले
4: जी? सर
3: जी, ये एक बहुत बड़ा इलाका नहीं है, छोटा सा गांव है, दूरस्थ गांव है ना, वो ऐसी स्थिति है कि इंटरनेट के अलावा
4: जी,
3: अब तो वहां की पहुंच का कोई खास साधन नहीं था पहले
4: जी सर,
3: लेकिन उसमें भी वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा
4: जी, जी।
3: या फिर गांव में भी एक सुंदर फूल खिला करता है
4: जी सर।
3: तो आज हम यही आपका परिचय दे रहे हैं हमारे श्रोताओं को कि दूर दराज आप खिले हुए फूल की तरह हैं।

0: जी सर,
1: जिन्हें अवसर मिला तो सुगंध भी अब चहुं ओर फैल रही है। तो सुदर्शन जी, आपसे हम बात करें उससे पहले अपने श्रोताओं को हम आपके बारे में बता दें।
0: जी सर,
1: खेलो इंडिया की टी शर्ट आपने पहन रखी है
0: जी सर,
1: और आपसे हम खेलों की ही बातें करेंगे। तो
0: जी सर,
1: पहले तो इस टी शर्ट के बारे में आप बताओ जिस पर खेलो इंडिया लिखा हुआ है।
0: जी सर, मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं सभी श्रोताओं का नमस्ते बोलूंगा कि आज मैं खेलो इंडिया की टी शर्ट पहन रखी है, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा योगदान है, जिसने मेरे को सपोर्ट किया उनका योगदान है। और पैरा खेलो इंडिया गेम होते हैं, अभी 2023 से स्टार्ट हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम, उसमें मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था उसमें। तो वहाँ पर हम जब खेलने जाते हैं तो हमें एक किट उपलब्ध करवाया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसमें किट उपकरण के तौर पे टी शर्ट वगैरह, सॉक्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो ये टी शर्ट मैंने वहाँ से उनके द्वारा पहन रखी है केंद्र सरकार के द्वारा। तो और मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा, खेलों से अपनी बहुत सारी गतिविधियाँ ऐसी है कि अपन बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति सुधार सकते हैं व्यक्ति की, क्योंकि ग्राउंड से जुड़े रहते हैं ना, तो वो एक अलग सी एक्टिविटी इंसान की बन जाती है
1: जब
0: उससे।
1: हम ग्राउंड पर रहते हैं और एक्टिविटी करते हैं तो हमारी रगों में जो खून है वो तेजी से दौड़ता है।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपना काम करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: एक एथलीट, एक खिलाड़ी जो होता है वो सुबह 4 बजे उठता है, एक नॉर्मल इंसान है 7 या 8 बजे उठता है। तो
1: सही है,
0: वो मैं ये मानता हूँ कि खिलाड़ी उससे कितने घंटे पहले है,
1: बिल्कुल।
0: ये भाई चीज़ होती है कि 2 या 3 या 4 घंटे उससे पहले है, तो उसका वर्कआउट करके 9 या 10 बजे तो वापिस सो ही जाता है। और
1: जी
0: दूसरा जो इंसान है नॉर्मल, वो 7 बजे उठेगा, कंप्लीट होगा अपना ऑफिस वर्क जो भी हो। अब दिनचर्या सबकी अलग अलग होती है, तो खिलाड़ियों की बहुत अलग सी दिनचर्या होती है मेरे हिसाब से तो।
1: बिल्कुल। तो सुदर्शन, आपने ये जो बातें बताई कि औरों से आप बहुत पहले हैं, ये बातों का संचय आपके पास कैसे आया? ये बातें आई कहाँ से आपके पास?
0: ये मैंने इसमें उसका प्रैक्टिकल करके देखा है ना, और मेरे कोच साहब हमेशा बोलते हैं कि तुम जल्दी 4 बजे उठते हो ना, तो वो अपन 4 घंटे पहले उनसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैंने कोच साहब से बहुत कुछ सीखा, मेरे कोच साहब समरजीत सिंह मल्लिया
1: जी, तो कोच जो कि आपके गुरु हैं
0: जी सर,
1: उनसे आपने खेलने की प्रेरणा ली। अब
0: जी
1: ये बताओ, आपकी खेल की इस मैदान में आप कैसे उतरे?
0: जी ये बहुत अलग सी बात हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैं पहले क्रिकेट में था,
1: जी,
0: इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूं, तो उसमें मेरे को कुछ ज़्यादा,
1: पैरा क्रिकेट आप इंटरनेशनल
0: जी
1: रूप
0: मैं
1: से खेल
0: इंटरनेशनल
1: चुके
0: खेला हूं,
1: हैं।
0: पर जो डिसेबल क्रिकेट है उसको बीसीसीआई ने मान्यता नहीं दी, मतलब सीधे तौर पे गवर्नमेंट ने उसको मान्यता नहीं दी। तो मेरा एक दोस्त महेंद्र गुजर, तो उसने मेरे को बोला कि मैं तेरे को एथलेटिक्स में लाना चाहता हूँ, अगर तेरी हो तो। अपन शुरू से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना कुछ है नहीं, तो मैंने उसको पूरा जो क्लियर होता है मेडिकल मिडिल जो क्लास है मैंने पूरा बता दिया। मैंने कहा भाई अपने पास सभी दिक्कत है, सभी प्रॉब्लम भी है, पैसों की प्रॉब्लम है सब। तो उसने मेरे को बोला एक बार तो आ, तो से फिर करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरे कोच साहब से वहाँ मिला था, तो कोच साहब भी अच्छा लगता मेरा, वो अच्छे मिले, उन्होंने सपोर्ट किया। और थोड़ा तो गुड़ते गुड़ते गुड़ते गुड़ते धीरे धीरे मतलब करते करते, और मेरे को फर्स्ट मेडल 2023 में लगा
1: तो आप क्रिकेट से
0: पैरा एथलेटिक्स
1: पर
0: में।
1: एथलेटिक्स
0: जी
1: में आ गए।
0: जी सर, 2023 में मेरे को पहला नेशनल मेडल मिला,
1: वाह।
0: पहला नेशनल मेडल लगा सर, तो मेरे मतलब इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे पहले मैं 2 बार नेशनल पार्टिसिपेट रह चुका था। और
1: जी
0: मेरे को मतलब भुवनेश्वर की तो अभी तक मेरे को पता है, उड़ीसा में खेलने गया था, अच्छी तैयारी थी, सब कुछ बढ़िया था, पर मेरे वहाँ मेडल नहीं लगा, तो मेरे को आज भी वो दिन याद है कि मैं वहाँ बैठ कर रोया था ग्राउंड
1: यानी कि आपकी जो
0: में।
1: मेहनत थी, आपने ये माना कि मेरी मेहनत सफल नहीं हुई,
0: हाँ मेरी
1: लेकिन
0: मेहनत,
1: फिर भी सुदर्शन, वो ऐसा कहते हैं ना कि मेहनत करते रहो, अगर हार भी जाओ तो थको नहीं, फिर से शुरू
0: फिर
1: करो।
0: से
1: तो
0: शुरू
1: आपने
0: हुआ।
1: यही किया।
0: हाँ तो फिर मैंने उसी टाइम मैंने सर को फोन किया, कोच साहब को, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे दिक्कत होगी, मेडल नहीं लगा। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, हो सकता है सामने वाला अपन से बेस्ट करके आया हो,
1: जी
0: तो तू वापिस आ जा, तो फिर अपन 2 बार वापिस स्टार्ट करेंगे। फिर वापिस सर ने बढ़िया मेहनत करवाई, और फिर 2023 में पुणे में मेरे सिल्वर मेडल लगा, पुणे
1: वाह, पुणे में।
0: में
1: जी
0: वहाँ पे। तो उससे मैंने थोड़ा सा और भी ज़्यादा उम्मीद जगी, क्योंकि राजस्थान सरकार की आउट ऑफ टर्न एक ऐसी पॉलिसी है जो नेशनल मेडल पे राजस्थान के खिलाड़ियों को सीधी ज्वाइनिंग देती है,
1: जॉब देती है।
0: सीधी जॉब देती है, गवर्नमेंट जॉब, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो नेशनल मेडलिस्ट होना चाहिए,
1: उनके लिए वो कोटा होता
0: कोटा
1: है।
0: होता है, स्पेशल कोटा होता है जो राजस्थान सरकार कई है अभी तक ऑल इंडिया में, तो मैं राजस्थान सरकार का बहुत शुक्रगुजार।

0: कि वह अपने राजस्थान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ये जॉब का बहुत अच्छा उन्होंने वो कर रखा है।
1: बिल्कुल। तो सुदर्शन, ये जॉब आपको मिले ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, और वैसे आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो ही।
0: जी सर।
1: अच्छा, अब जैसे पैरा क्रिकेट से आपने दौड़ लगाई और
0: जी
1: फिर दौड़ना शुरू किया और उसी कंपटीशन में आप आ गए और आपने 2023 में
0: जी
1: पहला नेशनल मेडल
0: जी
1: जीता
0: जी
1: पुणे
0: सर,
1: में।
0: पुणे में।
1: जी, और ये जो खेलो इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को और बताओ कि जो खेलो इंडिया है वो खिलाड़ियों को किस तरह से प्रोत्साहित कर रहा है।
0: जी, खेलो इंडिया में जो टॉप्स में आते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड मेडलिस्ट होते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने 10,000 रुपये मिलते हैं। वो स्पॉन्सर करती एक तरह से, उनको अच्छा सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो खेलो इंडिया मतलब पहले था नहीं, अभी 2023 से स्टार्ट हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: पहले नॉर्मल होता था एबल बॉडी वाला, पैरा खेलो इंडिया अभी से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें राजस्थान मतलब जैसे हर इससे राज्य से खिलाड़ी आते हैं, तो इसमें टॉप 4 लेते हैं, वो टॉप 6 टॉप 4 खिलाड़ी वो लेते हैं टोटल ऑल इंडिया से,
1: बिल्कुल।
0: तो उस हिसाब से वो खिलाते हैं।
1: अच्छा, अब ये कि पैरा एथलीट किसी हम बात करते हैं, आपने किस खेल में ज्वाइन किया।
0: जी, मैंने स्टार्टिंग तो जेवलिन से स्टार्ट किया था।
1: अच्छा,
0: हाँ, जेवलिन थ्रो बार,
1: तो किससे प्रोत्साहित हुए थे आप जेवलिन के
0: वो
1: लिए।
0: मेरा दोस्त जेवलिन थ्रो ही करता था, अभी उसका
1: अच्छा,
0: वर्ल्ड रिकॉर्ड है, महेंद्र गुजर नाम है उसका,
1: वाह,
0: तो वही मैंने स्टार्ट किया
1: मतलब
0: था।
1: दोस्त भी वो जो आप ही के
0: हाँ
1: क्षेत्र से
0: हाँ
1: हैं।
0: वो भी
1: जी
0: पैरा, तो मैंने पहले वो स्टार्ट किया था। तो फिर मेरे को लगा यार, मैंने कहा इसमें तो नहीं बैठ पा रहा, टेक्निक वगैरह बहुत सारी चीज़ें, और वो करता भी था। पर मेरे को तो फिर सर ने बोला कि तेरी हाइट वाइट थोड़ी बॉडी ठीक है, तो शॉट पुट ट्राई कर। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर उसके बाद मैंने शॉट पुट ट्राई किया, शॉट पुट में बेस्ट हुआ, तो फिर सर ने एक ही गेम रखा।
1: क्या बात है, मतलब आपका दोस्त भाला फेंक और आप
0: हाँ,
1: गोला फेंक,
0: गोला फेंक।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सुदर्शन, आपने खेल खेल में ये खेल प्रतियोगिता ज्वाइन कर ली
0: जी
1: और आपके चेहरे पर जो हंसी है, आपने बहुत सारे मेडल जीते
0: जी
1: हैं।
0: सर,
1: हम चाहते हैं कि आपकी सफलता की ये कहानी, जिसमें उतार चढ़ाव बहुत आए,
0: जी बहुत।
1: हमारे श्रोताओं को आप बताओ कि कितनी मेहनत आपने की, किस तरह से पुरस्कारों के लिए आपने दौड़ लगाई,
0: जी
1: गोले फेंके, और आपकी बातें सुनकर हमारे और जो युवा हैं वो भी प्रोत्साहित हों।
0: देखो सर, मैं आपको बताऊं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलना और गेम में जाना बहुत बड़ी बात होती है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि इसमें इतने खर्चे,
1: अंतर्राष्ट्रीय
0: हाँ,
1: स्थिति तक
0: नेशनल
1: पहुंचना।
0: अंतर्राष्ट्रीय पहुंचने के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। मिडिल क्लास से निकलते हैं तो अपन सबसे पहले चीज आती है पैसा,
1: बिल्कुल,
0: वो कहाँ से आएगा। और घर से भी सपोर्ट थे, घर वालों का खुद का सपोर्ट था, पर घर पे अपने पास उतना वो नहीं है, तो वो अपने को कहाँ से करेंगे। आज एक प्रोटीन का डब्बा 6,000-7,000 रुपये का आता है, जो 1 या 2 महीना चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। कई सारे वो सप्लीमेंट लेने पड़ते
1: सप्लीमेंट्स
0: हैं,
1: आपको
0: तो
1: लेने
0: अपने
1: पड़ते
0: को वो
1: हैं।
0: सारी चीज़ें, अपने शॉट पुट वगैरह उसके लिए किट वगैरह सारी, और एक्टिविटी भी करनी पड़ती है, शूज़ भी महंगे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मिडिल क्लास के लिए मेरे हिसाब से तो बहुत कठिन चीज़ें हैं। पर फिर भी मैंने इस कंडीशन में निकल के, जब मेरा फर्स्ट मेडल आया था स्टेट में, तो फिर
1: वो
0: मेरे
1: कब
0: को
1: आया था।
0: वो मेरे सर 2019 में आया था।
1: अच्छा, मतलब खेल आपके तब
0: खेल
1: से शुरू
0: पहले
1: है।
0: था मैं, पर वो एक प्रोफेशनली जो होता है ना, कि नहीं अपने को पूरा इसमें जाना है। पहले मैं क्रिकेट में था तो ठीक है, हाँ भाई पर एथलेटिक्स होता है,
1: ठीक,
0: तो ऐसे जाते थे, दोस्तों से मिल भी लेंगे और खेल भी लेंगे। मतलब इतना प्रोफेशनली नहीं था कि मैं तैयारी से गया हूँ वहाँ पे।
1: लेकिन सकारात्मक दिशा आपको मिल गई
0: बिल्कुल
1: थी।
0: बिल्कुल शुरू। तो फिर वहाँ गए, तो वहाँ पे मेरे को 2019 में ब्रॉन्ज मेडल लगा था,
1: ब्रॉन्ज मेडल
0: ब्रॉन्ज
1: लगा
0: मेडल लगा था
1: 2019 में।
0: 2019। तो
1: जी,
0: फिर उसके बाद
1: तो उस मेडल ने आपको एक दिशा दिखाई होगी, एक रोशनी दिखाई है
0: उसमें
1: आपने।
0: दिशा सर ऐसे दिखाई ना, कि 2019 में मेरे ब्रॉन्ज मेडल आया ना, तो मेरे को 30,000 रुपये मिले उसके,
1: वाह,
0: जो राज्य सरकार अपने को गोल्ड में 1,00,000 रुपये और सिल्वर में 50 और ब्रॉन्ज में 30, तो उसके 30,000 रुपये मेरे को दिखे, तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था उस चीज़ को लेकर। मैंने कहा
1: मेडल मेडल होता है और
0: मेडल होता
1: ब्रॉन्ज
0: है,
1: से उसकी आपकी
0: हाँ, तो
1: शुरुआत
0: मैंने
1: हुई।
0: कहा पैसे भी हैं और गेम में कुछ अच्छी पहचान भी है अपनी। तो फिर उसके बाद क्रिकेट के पीछे बढ़ा रहा, क्रिकेट चलता रहा चलता रहा, फिर क्रिकेट में मेरे को लगा नहीं कि इसका कुछ आगे होने वाला है।
1: आप कुछ मंजिल हासिल करना चाहते
0: जी,
1: थे,
0: मैं
1: इसलिए
0: कुछ
1: आपने
0: एक
1: क्रिकेट छोड़ दिया।
0: पर्सनली कुछ अपने एक पहचान होती है ना, क्योंकि पहचान तो सर ऐसा होता है ना कि मेरा ये मतलब फिजिकली चैलेंज मेरे लिए खुद के लिए था,
1: बिल्कुल।
0: सबसे पहले तो मेरे लिए था।

0: आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर इतना तो है कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में सर ऐसा कोई भी इंसान
1: आपकी
0: नहीं
1: नजरों में नहीं है।
0: होगा जो पैरा का या फिर दूसरा मेरे को नहीं जानता होगा।
1: वाह,
0: एक पहचान जो होती है कि आज मैं कहीं भी उच्च अधिकारी उसे भी मिलता है ना, तो एक मेरे पास पीछे लगाने के लिए है कि मैं सुदर्शन मीणा, नेशनल पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट।
1: क्या बात है,
0: तो
1: क्या
0: सर
1: बात
0: एक वो
1: है।
0: मेरी एक पहचान है, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है
1: ये योग्यता आपने अपनी मेहनत के बलबूते
0: जी।
1: बनाई है। तो
0: तो
1: हम ये बात कर रहे थे कि आपके मेडल्स का हमारे श्रोताओं को बताओ कि कौन कौन से मेडल कब कब आपने लिए और उनके पीछे की मेहनत आप बताओ।
0: जी स्टेट में मैंने बताया सही, मैं 2019 में मेरा फर्स्ट मेडल था, उसके बाद सिल्वर, पर नेशनल भी, नेशनल तो मैं गया था दो या एक, मतलब 23, 22, 21 में गए थे, पर उनमें मेडल नहीं थे। मेरा फर्स्ट मेडल आया पुणे नेशनल,
1: 2023 में।
0: नेशनल चैंपियनशिप है, नेशनल चैंपियनशिप, तो उसमें सिल्वर मेडल आया। तो मैं एक अलग से उत्साहित था कि नौकरी भी अपनी पक्की होगी और जो भी
1: एक
0: थोड़ी बहुत
1: आधार मिल गया।
0: आधार मिल गया मन का, ठीक है। उसके बाद मैंने और अच्छे से मेहनत की। उसके बाद फिर मेरे को 2024 में गोवा में नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लगा,
1: वाह, क्या
0: गोल्ड
1: बात है।
0: मेडल। और उसके बाद फिर पैरा गेम्स हुए तो उसमें भी सिल्वर।
1: वाह,
0: हाँ, और अभी 2025 का मैं आपको बताऊं कि अभी चेन्नई में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वापस, तो उसमें सिल्वर। और अभी दिल्ली में 2025 में ही खेलो इंडिया पैरा गेम हुआ था, उसमें मेरे सर गोल्ड मेडल है। ऐसे टोटल मिला के मेरे पास 5 मेडल है, 2 गोल्ड 3 सिल्वर।
1: क्या बात है। तो हम चंबल चैनल की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे दें और अग्रिम शुभकामनाएं भी ये हैं कि आप अपनी मेहनत
0: जी
1: करते
0: सर,
1: रहें।
0: मेरा पहला टारगेट है 2028 में पैरा ओलंपिक, तो मैं
1: वाह,
0: उसके लिए भरपूर मेहनत कर रहा हूँ।
1: तो अब इस मेहनत में आप क्या क्या शुमार है आपके, किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं?
0: जी सर, वही अपना उठने का, पूरा उठने से मैं आपको बताऊं, मैं अभी
1: समय का
0: भी
1: प्रबंधन
0: समय का
1: बराबर है।
0: बिल्कुल 3:50 मैं अभी भी उठ जाता हूं। मैं कंप्लीट होके 4:30 ग्राउंड
1: अब
0: पहुंचता
1: आपको
0: हूं।
1: अलार्मिंग की जरूरत नहीं होती
0: नहीं नहीं
1: होगी
0: नहीं नहीं वो
1: अब।
0: उल्टा उल्टे से
1: हाँ
0: मैं बंद करता हूं उसको,
1: क्या
0: उससे 2 या 5 मिनट पहले उठ जाता हूं
1: बात है, क्या
0: कभी,
1: बात
0: पर फिर भी वो लगा के रखना पड़ता है कि
1: है।
0: एक
1: कहीं
0: कभी
1: छूट ना
0: ऐसा हो
1: जाए।
0: जाए कि, और मैं 10 10 बजे फिक्स सो जाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: अच्छा,
0: और जैसे कि अब मॉर्निंग, मतलब मेरा दिनचर्या मैं आपको बता दूं सर, 3:50 पे उठना, कंप्लीट होकर 4:30 ग्राउंड जाना, फिर उसके बाद मैं 7 साढ़े 7 तक प्रैक्टिस करके वापस आना, जो भी अपनी डाइट हो, खाना पीना जो भी है, उसके बाद में मैं 10 साढ़े 10 वापस सो जाता हूँ।
1: अच्छा,
0: 10
1: तो इस रूटीन के दरमियान
0: जी
1: आप वो जो सोशल मीडिया जैसी एक नाम है जो बहुत
0: हाँ,
1: फैला हुआ है, उसमें कितना वक्त गुजारते हैं?
0: सोशल मीडिया में सर मैं जैसे कि 10 बजे आपको सोने का बताया मैंने, 10 बजे फिर मैं उठता हूँ 12 साढ़े 12 1 बजे, 1 बजे के बाद मैं फिर मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी फोन का है, मतलब मेरे हिसाब से जुड़ना जरूरी है, अपडेट होना जरूरी है इंसान की। ये मैं नहीं बोल रहा कि तुम लंबे समय तक उससे जुड़ो, फिर मैं 1 या 1.5 घंटा उसमें जो भी अपडेट, जो भी देखना है मेरे को, जो भी सीखना है, टेक्निक भी अगर सीखनी है यूट्यूब से तो माध्यम से उसको देखता हूँ। उसके बाद में 2 या 2:30 बजे जो भी खाना मेरे को और भी दिन का करना होता है वो खा पी के मैं 4 साढ़े 3 या 4 बजे वापस ग्राउंड चल जाता हूँ कंप्लीट हो गया।
1: मतलब इंटरनेट जैसी सुविधाओं के कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं और समय को बर्बाद कर देते
0: जी
1: हैं, आप उस समय का सदुपयोग करते हैं।
0: करना भी चाहिए सर
1: वाकई, तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं।
0: जी।
1: और अपने शरीर के सौष्ठव के लिए आप क्या करते हैं?
0: अच्छी डाइट लेना सबसे पहले, तो अच्छा व्यायाम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, और जैसे जैसे वर्कआउट होता है तो वीकली हमारा वर्कआउट अलग अलग होता है, वर्कआउट
1: हाँ,
0: जैसे मंडे को अलग, ट्यूजडे, सब अलग अलग होता है। तो वीक में हमारा 2 टाइम वेट ट्रेनिंग होता है जिसे अपन जिम बोलते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो उससे भी और बहुत सारी एक्टिविटी होती है वीक में पूरा, और संडे का पूरा रेस्ट होता है।
1: अलग अलग वर्कआउट का ये मतलब है कि आप एक ही तरह के वर्कआउट से हो सकता है बोर हो जाएं या?
0: नहीं वो सर अलग अलग करना पड़ता है, वो जैसे कि मंडे को थ्रो होते हैं तो सुबह नॉर्मली एक्सरसाइज करके शाम को बॉडी थ्रो के लिए कंप्लीट रखें, अगर सुबह ज़्यादा कर देंगे तो शाम को थ्रो नहीं हो पाएंगे, बॉडी फटीग हो जाएगी, टूटने
1: अच्छा,
0: लगेगी।
1: बिल्कुल।
0: वैसे तो अलग अलग वर्कआउट होता है
1: तो
0: एक्टिविटी।
1: आपको आपके वर्कआउट के लिए आपके कोच सजेस्ट करते हैं कि
0: जी
1: आपको
0: जी
1: क्या करना
0: वर्कआउट
1: होता है?
0: वही वही
1: जी,
0: बेस्ट हैं,
1: कोच की बातें कितनी मानते हैं आप?
0: कोच की बातें 90%।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: 10% छोड़ दिया आपने
0: हाँ
1: अपने
0: मतलब ऐसी कुछ चीज़ें
1: लिए।
0: होती है, मतलब बाकी 90% तो अपन ले सकते हैं भाई ये।
1: बिल्कुल। सुदर्शन, आपने अपने खेल के बारे में बहुत कुछ बताया और

0: आपने जो जानकारियां दी उससे ऐसा लगता है कि सफलता आपकी राह का इंतजार कर रही
1: जी
0: है
1: सर,
0: और मंजिल आपके बिल्कुल आंखों के सामने है। बस यूं कि आप इसी गति से चलते जाएंगे तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो आकाशवाणी के स्टूडियो में आपने अपनी बातें बताई और कुछ अगर युवाओं को प्रेरणा देना चाहते हैं तो वो जरूर बताएं।
1: मैं युवाओं को तो ये बोलना चाहूंगा कि देखो, सबसे पहले तो मैं पैरा वालों के लिए बोलना चाहूंगा जो डिसेबल है, और मैं तो एक बात जानता हूँ कि वो ग्राउंड से जुड़े ना, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक जो हैंडीकेप होता है उसको रोड पे या फिर ग्राउंड में जाना उसके लिए आसान नहीं होता, घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक उसके लिए कई सारी फिजिकल चैलेंज होते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं मतलब जो उसको देख के हंसते हैं, उसको आगे मतलब मोटिवेट नहीं कर सकते पर उसको डिमोटिवेट ज़रूर करेंगे। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि पैरा एथलेटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी बहुत अच्छी पहचान बना सकते हो, और दूसरे से भी यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो सोशल मीडिया को इतना भी उसमें मत लो, और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बात मैं बोलूँगा कि नशे से दूर रहो
0: क्या
1: युवा।
0: बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बातें बताई सुदर्शन आपने। बहुत अच्छा लगा सुदर्शन आप स्टूडियो में आए, युवाओं को जानकारियां दी और आपने अपनी गौरव गाथा से और उनको प्रेरित करने का काम किया।
1: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे पैरा एथलीट सुदर्शन मीणा से राजेश महावर की बातचीत। इसके साथ ही कार्यक्रम का समय हो चला है, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म उमराव जान का ये नगमा। गीत रचना शहरयार की और संगीत खय्याम का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हसरत जयपुरी की रचना को संगीत से सुवारा है शंकर जयकिशन ने, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है पगला कहीं का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लता मंगेशकर और आशा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया फिल्म सहरा से, आवाज लता मंगेशकर की, गीत रचना हसरत जयपुर की और संगीत रामलाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म दिल एक मंदिर में। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV Amorphy पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर $89 और $0.74 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश